श्रोताओं सुप्रभात। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलो हर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 मई सन 2026। सुबह के 5:58 हुए हैं। आज की पहली सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। सुबह के 6 बजने को है। समाचार कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के

0: ये निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय सहमति तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 6:05 हुए हैं। विचार मंथन। महात्मा गांधी का कथन है, पुस्तकों का मूल्य रत्नों से भी अधिक है, क्योंकि रत्न बाहरी चमक दमक दिखाते हैं, जबकि पुस्तकें अंतःकरण को उज्ज्वल करती हैं।

आकाशवाणी जबलपुर से अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं डॉक्टर रामवल्लभ आचार्य का लिखा ये देशभक्ति गीत, जिसे स्वर दिया है प्रकाश तिवारी ने।

0: के नाम प्यारे हिंदुस्तान का जिसमें मन चित्र बनवा
1: आपने सुनी मातृवंदना और आइए अब सुनते हैं सुभाष जैन अजल का लिखा यह भक्ति गीत जिसे स्वर दिया है अनूप जलोटा ने।

अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज़ में योगेश का लिखा ये भजन अभी आपने सुना, और कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं बेदम जलालाबादी की लिखी भक्ति रचना, जिसे स्वर दिया है विपिन सचदेवा ने।

0: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 6:30 हुए हैं। अब सुनिए चिंतन। आलेख श्रीमती आशा दुबे का है और वाचक हैं शैलेंद्र जोगी।
1: आत्मनिर्भरता व्यक्ति के गुणों में से एक सर्वश्रेष्ठ गुण है। पर निर्भर व्यक्ति जीवन में सुख की कामना तो कर सकता है, पर सुख उसे प्राप्त होता नहीं। आत्मविश्वासी व्यक्ति जिस गौरव भाव से भरा होता है, वो आत्मनिर्भरता की अनिवार्य शर्त के रूप में प्रकट होता है। बात बात में दूसरों का मुखापेक्षी होना आज के मानव का चरण बन गया है। यही कारण है कि आज का नवयुवक हवाई किले तो बनाता है, कल्पनाओं के महल खड़े करता है, किंतु मन के मोदकों से कभी पेट नहीं भरता। इस सत्य को भूल जाता है। मन के लड्डू खाने वाले सोम शर्मा के पिता की कथा जग विख्यात है। शेख चिल्ली प्रकृति के लोग केवल ख्वाब देखते हैं, किंतु अपने बूते कुछ कर गुजरने का मादा उनमें नहीं होता। एक बड़ी विख्यात कथा आती है कि एक खेत में झाड़ झंकाड़ उग आए थे, जहां एक जंगली वृक्ष पर एक पक्षी परिवार रहता था। एक दिन उस खेत का मालिक आया और अपने बच्चे से कहने लगा, एक दिन इस खेत के कचरे की सफाई करना है और इस वृक्ष को काटना है। उसकी बात सुनकर नन्हे पक्षी व्याकुल हो गए। शाम को उन्होंने ये बात अपने मुखिया बुजुर्ग पक्षी से बताई। बच्चों की माता ने भी और ठौर ठिकाना ढूंढने की बात कही। उस बुजुर्ग पक्षी ने सबको आश्वस्त करते हुए कहा, तुम निश्चिंत रहो, कुछ ना होगा। कुछ दिन बाद फिर वही किसान अपने 3 बच्चों के साथ आया और वही बात दोहराई। बूढ़े पक्षी ने तब भी अपने बच्चों को आश्वस्त किया कि कुछ ना होगा, और ऐसा हुआ भी। एक दिन अचानक उस बूढ़े पक्षी ने कहा, जल्दी से इस वृक्ष को खाली कर दो, अब हम यहां न रह पाएंगे। सबको आश्चर्य हुआ। उन्होंने कारण पूछा तो उस वृद्ध पक्षी ने उन्हें समझाते हुए कहा, आज उस किसान का बेटा जो बाहर रहता है आया था और अपने कुल्हाड़े पर धार बना रहा था। इससे मैं समझ गया हूं कि अब ये वृक्ष ना बचेगा। अपने बच्चों के आश्चर्य को भांप कर उन्हें समझाते हुए बूढ़े पक्षी ने कहा कि बेटा, अब तक वो किसान व उसके बेटे केवल बातें किया करते थे, किंतु उनमें आत्मनिर्भरता का अभाव था। किंतु अब ये जो बेटा गाँव में आया है, वो आत्मविश्वास से भरा है और उसके आत्मविश्वास का कारण उसकी आत्मनिर्भर वृत्ति है। किसान के इस बेटे को न बाहर से कहीं मदद की अपेक्षा है, न डींग मारने की आदत है, बल्कि वह अपने बाहुबल पर विश्वास करता है। कहा जाता है कि जो अपने पर विश्वास करते हैं, ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं। आलसी निकम्मे कामचोर लोग खुद कुछ करना नहीं चाहते, कहीं भाग्य को, कहीं काल को, कहीं कर्म को और कहीं देव को मिथ्या दोष लगाते रहते हैं। एक ऐसे भक्त की कथा आती है जो बैलगाड़ी में सामान लाद कर चले आ रहे थे और अंधेरा होने के पहले अपने घर पहुंचना चाहते थे। तभी गड्ढे में उनकी गाड़ी का पहिया धंस गया। वो हनुमान जी पुकारने लगे। बड़ी देर होने पर कोई मदद न मिली तो स्वयं गाड़ी के नीचे उतरकर पहिए को हाथ से धक्का देकर बाहर निकालने लगे। पहिया बाहर निकला तो देखा स्वयं हनुमान जी महाराज सामने से गाड़ी खींच रहे थे। वो कुछ पूछना चाह रहे थे तो हनुमान जी अदृश्य हो गए। घर आए तो गुरु ने उन्हें समझाते हुए कहा, ईश्वर ये कभी नहीं चाहता कि तुम कर्म से विमुख होकर उसके नाम को बदनाम करो। ईश्वर तभी आपकी मदद करता है जब आप खुद मदद पाने के लिए प्रस्तुत हो। हम विचार करें पर निर्भरता हमें कायर भी बनाती है और भय से भी भरती है। जब हम पराश्रित होते हैं तो अपना आत्मविश्वास ही नहीं आत्मसम्मान भी खो देते हैं। इसलिए सुभाषित का भी यूं ही मानना है कि सोते हुए शेर के मुख में शिकार अपने आप नहीं चला आता। इसी भांति आत्मनिर्भर हुए बिना, उद्यमशील हुए बिना हम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते।
0: आपने सुना चिंतन। आलेख श्रीमती आशा दुबे का था और वाचक थे शैलेंद्र जोगी।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, स्वर है भूपेंद्र सिंह का।

दिखावन भी अनिवार्य है कि यदि वो अपना और पति का कल्याण चाहती हैं, तो उन्हें श्री राम की आज्ञा मानकर घर पर ही रहकर सास की सेवा करनी चाहिए। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। पत्नी से श्री राम का कहना है, हे सुमुखी, जब जब प्रेम से व्याकुल होकर माता मुझे याद करें, तब तब उन्हें पुरानी कथाएं सुनाकर धीरज बंधाना। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु तथा वेदवाणी द्वारा सम्मत आचरण का फल बिना किसी क्लेश के तुम्हें मिल जाएगा। हठ करने के कारण गालव ऋषि तथा राजा नहुष जैसों ने केवल कष्ट ही सहे हैं, किंतु वन प्रवास में होने वाले घोर कष्टों का वर्णन सुनकर भी सीता ने अपना निश्चय नहीं बदला। वन मार्ग में नंगे पैरों में चुभने वाले कुश कांटे और कंकड़, दुर्गम पर्वत और खो, रीच बाघ भेड़िये सिंह आदि के डरावनी गर्जन तर्जन की आशंका उन्हें तनिक भी विचलित नहीं कर सकी। वन के भीषण सर्पों, भयानक पशु पक्षियों तथा स्त्री पुरुषों को उठा ले जाने वाले राक्षसों के झुंड का वर्णन भी सीता को उनके निर्णय से नहीं डिगा पाए।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आज की कड़ी में स्वर था भूपेंद्र सिंह का। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए कृषि समय की, विषय है प्रमाणित बीज।
1: किसान बहनों भाइयों, अक्सर हम आपको बताते हैं कि प्रमाणित बीज का प्रयोग करें। प्रमाणित बीज वह है जो किसी भी फसल का वह बीज जो राज्य के बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणित किया गया हो। किसी भी फसल का प्रमाणित बीज उत्तम गुणवत्ता वाला बीज होता है। इसके उपयोग से फसल की उत्पादन और उत्पादकता दोनों ही बढ़ती है। बीज की उच्च गुणवत्ता का अर्थ ये होता है कि बीज का अंकुरण का प्रतिशत कम से कम 85 हो, आर्द्रता का प्रतिशत 9 से 11% हो, बीज खरपतवार के बीजों से मुक्त हो और उसमें अन्य फसलों के बीज या अन्य प्रजाति के बीज या बीमारी युक्त बीज नहीं होने चाहिए। इसके लिए संस्था के साथ साथ बीज सहकारी समिति का पंजीकरण कराना भी जरूरी होता है, जिसमें अपना पूरा पता, कुल रकबा इत्यादि जानकारी देनी होती है। किसी भी फसल बीज का प्रमाणीकरण में खेत का 1 या 2 बार या 3 बार निरीक्षण किया जाता है। बीज प्रमाणीकरण संस्था के निरीक्षक या अधिकारी करते हैं। निरीक्षण में बीज के स्रोत की जानकारी, बोने की तिथि, पूर्ववर्ती फसल की जानकारी, एक ही फसल के 2 किस्मों के बीच उचित पृथक्करण या दूरी, इनकी जांच की जाती है। खेतों का खरपतवार मुक्त होना जरूरी होता है। फसल की कटाई और गहाई के वक्त सावधानी रखना भी जरूरी होता है, ताकि एक किस्म का बीज दूसरे किस्म में

0: साथ न मिल पाए। फसलों की गहाई, उड़ावनी और उपयुक्त आर्द्रता प्रतिशत तक सुखाने के बाद बीज को भूमि से 9 इंच ऊपर लकड़ी की फ्रेम पर भंडारित किया जाता है। भंडारित बीज से परखी द्वारा विभिन्न बोरियों से बीज का सैंपल लिया जाता है। इस सैंपल को बीज परीक्षण प्रयोगशाला में अंकुरण प्रतिशत, आर्द्रता प्रतिशत, अनुवांशिक और भौतिक शुद्धता प्रतिशत और खरपतवारों की बीजों की संख्या के प्रतिशत के लिए भेजा जाता है। फसल बीजों को न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण के मानकों के अनुरूप पाए जाने पर ही प्रमाणित किया जाता है। किसान बहनों भाइयों, प्रमाणित बीज को आप कैसे पहचान सकते हैं? हम बताते हैं आपको कि प्रमाणित बीज के बोरों पर हरे रंग का एक लेबल लगा होता है, जिसमें फसल का नाम, किस्म का नाम, अंकुरण का प्रतिशत, अनुवांशिक शुद्धता का प्रतिशत, निष्क्रिय पदार्थ का प्रतिशत, आर्द्रता का प्रतिशत, ये सब अंकित होता है। बीज परीक्षण की तिथि भी अंकित इसमें होती है। लेबल पर प्रमाणीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। जो बीज की उच्च अनुवांशिक शुद्धता होती है, यानी फसल के उसी किस्म के बीज कम से कम 100 में से 98 होने चाहिए। 2% मिट्टी, डंठल, भूसा इत्यादि इसमें हो सकता है। किसी भी फसल की अनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए ऐसे खेत का चयन करें जिसमें पहले से उसी फसल की अन्य किस्म ना बोई गई हो। एक ही फसल के दो किस्मों के मध्य स्वयं परागित फसलों के लिए 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए और यदि परपरागित फसल है तो 200 मीटर की दूरी होनी चाहिए। बोने के पहले सीड ड्रिल को अच्छी तरह से साफ कर लें। फसल अवधि में खेत का निरीक्षण करें और अवांछनीय जो पौधे हैं, जो कि उस किस्म के नहीं है या उस प्रजाति के नहीं है या फिर कोई अन्य फसल के हैं या खरपतवार के हैं, उनको निकाल के नष्ट कर दें। फसल की कटाई, गहाई, उड़ावनी और बीज संस्करण के दौरान ध्यान रखें कि एक किस्म का बीज दूसरी किस्म में बिल्कुल ना मिल पाए। थ्रेशर, उड़ावनी यंत्र, बीज संस्करण यंत्रों को उपयोग के पहले अच्छी तरह से साफ करें ताकि अन्य बीज उसमें ना मिलने पाए। ध्यान रखें, जहां से प्रमाणित बीज आप क्रय कर रहे हो उसका नमूना या सैंपल पहले देख लें। बीज के बोरे पर हरे रंग का लेबल लगा होना चाहिए, ये अवश्य देख लें। लेबल पर अनुवांशिकता, शुद्धता, अंकुरण प्रतिशत, आर्द्रता, बीज परीक्षण की तारीख और बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर अवश्य देख लें। क्रय किए गए बीज की रसीद, सर्टिफिकेशन टैग और मॉनिटरिंग रिपोर्ट को संभाल कर रखें। प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए आधार बीज या जिसे हम फाउंडेशन सीड भी कहते हैं या प्रमाणित बीज का ही उपयोग होता है। आधार बीज या प्रमाणित बीज कृषि विश्वविद्यालय, राज्य बीज संस्थाएं, बीज निगम या सहकारी समितियों से आप प्राप्त कर सकते हैं।
1: प्रमाणित बीज कृषि सामयिकी में आप सुन रहे थे। इस विषय पर जानकारी प्रस्तुति थी विपिन यादव की।

मीडिया व्यू पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण। सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। 8:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। 9:00 आप सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसथार। इस कार्यक्रम में सुनिएगा रेवाराम विश्वकर्मा और रविशंकर श्रीवास्तव के गाए बुंदेली लोकगीत।

सुबह 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे संजीव अभ्यंकर का गायन। दस बजकर 5 मिनट पर सुनिए वंदे मातरम गौरव गान की 150वीं। 10:10 पर समाचार बुलेटिन विश्व दर्पण हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और 10:20 से आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्य।

रंग सारंगा। ग्यारह बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे, जो कि आप सुनेंगे दिन में तीन बजे यानी समापन तक। दूसरी सभा में शाम 5:02 पर कार्यक्रम युववाणी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। पांच बजकर 30 मिनट से आनंद उठाइए फिल्म संगीत का। शाम 6 बजे हमारे केंद्र से आप सुन सकते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: रविकांत जैन के गाए मुंदरी लोकी गीत सुने जा सकते हैं शाम 6:30 से शाम 6:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में। आज कलाकार हैं श्रीधर नागराज। शाम 7:21 पर कृषि जगत कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इस कार्यक्रम में लू से फसलों को कैसे बचाएं, यह जानकारी देंगे श्री एपी सुमन। रात 8:00 सुर्खियों में यह कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे। रात 8:15 से आनंद उठाइए फिल्म संगीत का, और फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 से। रात 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। उस्ताद विलायत खान का सितार वादन आप सुन सकते हैं रात 10:00 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में, और रात 10:30 से सुनिएगा फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
0: मीडियम व्यू पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 6:55 होने को है। संस्कृत में समाचार कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। पश्चिमैशियायाः संघर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु संकटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमंत्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरा नगरे सरदार धाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां संबोधयन् आसीत्।
3: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकट।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकट में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। वडोदरा में कल सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह किया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे

0: कहूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडप्पडी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
2: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
1: खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया है। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। माधव तिवारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduce consumption of petrol and diesel, stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis. Prime Minister said there's a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
0: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मेरी देश

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। भोपाल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आज जुटेंगे फ्रांस की प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि, मध्य प्रदेश में निवेश पर होगा मंथन। राज्य मंत्री परिषद ने प्रदेश के समग्र विकास और जन कल्याण के लिए 29,540 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। और प्रदेश में योग को घर घर तक पहुंचाने के लिए आज से शुरू हो रहा है हर घर योग अभियान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। कल वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी नागरिकों से राष्ट्रहित में प्रधानमंत्री के सुझावों को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक संकट और सप्लाई चेन की चुनौतियों को देखते हुए प्रधानमंत्री के सुझावों को अपनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किसानों से डीजल पंप के स्थान पर सोलर पंप के उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाकर प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह भी किया। इससे पेट्रोलियम पदार्थ और उर्वरक के आयात में कमी आएगी। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 4 मंत्री भी शपथ लेंगे, जिनमें से 2 भाजपा और 1 सहयोगी दल असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के होंगे। ये असम में एनडीए की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में इसका नेतृत्व करेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हेमंत बिस्व शर्मा और उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं।
2: गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में और हेमंता जी के कुशल नेतृत्व में यह तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। एक नया कीर्तिमान, एक नया युग अगले 5 साल का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हेमंता जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कल स्थापित होने जा रही है। दिल की गहराइयों से हेमंता जी और उनकी पूरी टीम, जो 5 लोगों का शपथ भी दिया जा रहा है, और उसी के साथ प्रदेश की जनता को मेरे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं।
0: भोपाल में आज इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निवेश संभावनाओं को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विदेशी निवेशकों से संवाद करेंगे। इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री और मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से कुशाभाऊ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में फ्रांस के राजदूत, फ्रांसीसी उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैश्विक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और प्रदेश के उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे। कॉन्क्लेव से मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच दीर्घकालिक औद्योगिक, तकनीकी और संस्थागत साझेदारी होगी। इससे राज्य सरकार फ्रांसीसी कंपनियों को मध्य प्रदेश के औद्योगिक वातावरण, निवेश संभावनाओं, नीति समर्थन और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक इकोसिस्टम से अवगत कराएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में आज से हर

घर योग अभियान शुरू हो रहा है। अभियान में 800 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और सभी चिकित्सालयों में पदस्थ योग शिक्षक 10-15 नागरिकों के छोटे समूह में योग अभ्यास करवाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल एक बयान में कहा कि प्रदेशवासियों को योग से जोड़ने के लिए 21 जून तक यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत पंडित होशीलाल आयुर्वेद कॉलेज भोपाल के मास्टर ट्रेनर स्टूडियो से 45 मिनट के लाइव योग सेशन आयोजित करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से घर घर और जन जन तक योग को पहुंचाने के लिए मिलकर योग अभ्यास करने और निरोग रहने की अपील की है। राज्य मंत्री परिषद ने प्रदेश के समग्र विकास और जन कल्याण के लिए 29,540 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लोक वित्त पोषित कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं के परीक्षण के लिए 15,598 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। शहरी और नगरीय मार्गों के नवनिर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 6,900 करोड़ रुपए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों की पेंशन के लिए 6,116 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा बुधनी में MBBS, नर्सिंग और पैरामेडिकल महाविद्यालय की स्थापना के लिए 763 करोड़ 40 लाख रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। नीमच जिले की खुमान सिंह शिवाजी जलाशय सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 163 करोड़ 95 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। इंदौर जिले में फार्मर रजिस्ट्री सैचुरेशन अभियान को 20 मई तक पूरा करने के लिए डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। फार्मर रजिस्ट्री के अंतर्गत फार्मर आईडी बनाए जाने का कार्य केंद्र शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। फार्मर आईडी के अंतर्गत प्रत्येक कृषक भूमि स्वामी को यूनिक आईडी प्रदान की जाती है, जिससे किसानों को सभी शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। भोपाल में 15 मई से आयोजित होने जा रही भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर 18 हॉकी सीरीज के लिए भारतीय और ऑस्ट्रेलिया जूनियर टीमें कल भोपाल पहुंची। राजा भोज एयरपोर्ट पर दोनों देशों के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ का खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों ने स्वागत किया। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 20 मई 2026 तक भोपाल स्थित उद्धव दास मेहता सेंट्रल सेंटर में आयोजित की जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव आज। इंदौर के 10,537 अधिवक्ता मताधिकार का करेंगे प्रयोग। सतना जिले के नगर परिषद नागौद के वार्ड 13 में होने वाले उपचुनाव को लेकर आचार संहिता के पालन के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए। संस्कृति राज्य मंत्री और खंडवा जिले के प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी आज खंडवा दौरे पर रहेंगे। वे जिले में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सिवनी जिले में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण और संबंधित प्रारंभिक सर्वे कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। आगरमालवा जिले की नलखेड़ा तहसील के ग्राम डोकरपुरा में कल प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लगभग 35 बीघा बहुमूल्य शासकीय गोचर भूमि को मुक्त कराया गया। विदिशा जिले में उर्वरक वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए 50% की जरूरत वाली पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब किसान ई पोर्टल के माध्यम से अपनी जरूरत का 100% खाद एक बार में उठा सकेंगे। मंडला पुलिस द्वारा जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नैनपुर में बस संचालकों की बैठक आयोजित की गई। राजगढ़ में आयोजित समय सीमा बैठक में सीएम हेल्पलाइन, जल गंगा संवर्धन अभियान, ई ऑफिस, आधार निर्माण, ई KYC, सार्थक अटेंडेंस और समय सीमा के प्रकरणों की स्थिति पर विभागवार चर्चा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत रायसेन में कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। और ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आगरमालवा जिले में 31 मई तक जिला मुख्यालय सहित सभी विकासखंडों में किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जबलपुर है। 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को चमन सालवार का नमस्कार। देखिए कौन आया है और आज इन्हीं का दिन है।

दोस्तों, इस धरती पर दीन दुखियों की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हकीकत है कि आंसुओं का कोई मजहब नहीं होता, और जो इंसान के आंसू पोंछे वो सबसे बड़ा मजहब है। बच्चों से हमेशा कहा जाता है कि सुदूर आसमान में दयालु परियां रहती हैं, जिन्हें सच्चे दिल से पुकारा जाए तो वे ज़रूरतमंदों की सहायता करने ज़रूर पहुंचती हैं। दोस्तों, आसमां की परियों को बच्चों ने अगर देखा भी है तो सपनों और टेलीविज़न में, धवल पोशाकों में सजी, हाथों में झिलमिल सितारे लिए मुस्कुराती परियां बच्चों के सपनों में पहले भी आती थीं और आज भी आती हैं। पर हम चाहें तो इन्हें देख भी सकते हैं और इनसे मिल भी सकते हैं। हमें से ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनकी तीमारदारी इन परियों ने की है। ये भी धवल पोशाक पहनती हैं, बीमारों की सेवा करती हैं, उनके घावों पर प्यार का मरहम लगाती हैं और कई बार बीमारों की दुत्कार भी सुनती हैं और सहती हैं। तब भी ये निर्विकार भाव से अपने काम में जुटी रहती हैं। दोस्तों, इंसानियत और सेवा की मिसाल ये परियां हैं। अस्पतालों में काम करने वाली नर्सें, जिन्हें हम सम्मान और प्यार से सिस्टर कह के पुकारते हैं, और आज इन परियों यानी इन महान सेवाभावी नर्सों का दिन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस।

दोस्तों, 1820 में आज ही के दिन इटली में पैदाइश हुई थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, जिन्होंने सेवा के इस मिशन की नींव रखी थी। 1854 में क्रीमिया युद्ध के दौरान हजारों सैनिक संक्रमण और दूसरी परेशानियों से मर रहे थे। ये खबर फ्लोरेंस को भी मिली और उन्होंने अपनी 38 नर्सों के साथ एक शुरुआत की। वे अस्पताल पहुंची और अस्पताल की सुविधाओं को उन्होंने एक सही दिशा दी, उसे सुधारा संवारा, और उनके प्रयास से मृत्यु दर 40% से घटकर मात्र 2% रह गई। 1860 में दुनिया के पहले पेशेवर नर्सिंग स्कूल की उन्होंने स्थापना की और आज नर्सिंग का ये पेशा मानवता की मिसाल बन चुका है।

जीवन होता है और वो बहुत सारी अनुभूतियों को महसूस भी करते हैं। और मानव की जो मंशा रहती है, अगर कोई मानव कुल्हाड़ी लेकर उनके पास जाता है तो वो सहमते हैं, डरते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। और पौधों में भी बीमारियां होती हैं, रोग लगते हैं और उनकी सेहत भी बिगड़ती है। और ये जिम्मेदारी हमारी है, और ख़ासकर हमारे जो किसान श्रोता हैं बेहतर जानते हैं कि पौधे जब बीमार होते हैं तो उनकी भी सेहत पर कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि किसान की तो ज़िंदगी ही पेड़ पौधों के स्वास्थ्य पर यानी फसल के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। किसान अन्नदाता हैं और किसान अगर खुशहाल होंगे तो सब खुशहाल होंगे, देश खुशहाल होगा। और आज का ये जो दिन है, इसका जो उद्देश्य है पौधों की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और पर्यावरण की रक्षा करना है। हम जो भोजन करते हैं उसका 80% और जो हम ऑक्सीजन सांस के रूप में लेते हैं उसका 98% पौधों से आता है। और कोविड के दौरान इस ऑक्सीजन के महत्व को हम बेहतर समझ चुके हैं। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित दिवस है जो कीड़ों और बीमारियों से फसलों की सुरक्षा के लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण पर जोर देता है।

दोस्तों, पेड़ पौधों से ही पर्यावरण बनता है, और अगर हमारे आप पर्यावरण सेहतमंद है तो ये मान के चलें सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और धरती पर पेड़ पौधों का आवरण जितना ज़्यादा होता है, बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी परेशानियों से हम बचे रहते हैं, और इससे ही ओजोन कवच का निर्माण होता है। और ये गंभीर चिंता की बात है कि ओजोन का जो कवच है उसमें बहुत सारे छेद होते जा रहे हैं, छिन्न भिन्न होता जा रहा है। उसको सुधारने के लिए बस जो काम हम कर सकते हैं कि पेड़ पौधों को अच्छा जीवन दें, और धरती पर हरियाली की चादर जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा हमारा पर्यावरण होगा। एक बात तो आपने महसूस की होगी कि चिलचिलाती धूप में भी किसी पेड़ की छाँव में हम जब खड़े होते हैं तो हमें राहत मिलती है, और ये हकीकत भी है कि जहाँ हम खड़े होते हैं पेड़ के साए तले, वहाँ का तापमान धूप की तुलना में कम से कम 4-5 डिग्री कम होता है।

दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी हकीकत हमारा वर्तमान, हमारा आज है। इसलिए जीने को कभी भी कल पर ना टाला जाए।

दोस्तों, आईने में तो हम रोज़ खुद को देखते हैं। कभी ज़िंदगी की आंखों में आंखें डालकर देखिए और मुस्करा कर कहिए कि हर रोज़ गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ऐ ज़िंदगी देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं।

बिल्कुल दोस्तों, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ऑल इज़ वेल रहे। और अब आपके अपने इस कार्यक्रम से अपने दोस्त चमन सालवार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 8 बजने को है समाचार प्रभात। कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि LPG वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।

0: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर हेमंत बिस्व सरमा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
4: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
3: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
7: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
8: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
1: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
9: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
1: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
10: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गयी है। एक रिपोर्ट।
11: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई टी20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया। हालांकि आईसीसी ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने बीसीबी को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवलसन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
10: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. 4 ministers, 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF to also take oath. EDRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel. Stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis, Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
13: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दे। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होता है। जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाए और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
12: Prime Minister said that India spends lakhs of crores of rupees in foreign exchange to import many products from abroad, and the crisis has led to steep rise in imported goods and severely disrupted global supply chains. Mr. Modi said that his government is working to ensure the impact of the crisis on Indians is minimal.
13: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
12: Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma will be sworn in as the Chief Minister of Assam in Guwahati today. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya will administer him the oath of office and secrecy at a ceremony to be held at the Veterinary College Playground in Khanapara area of the city. Four ministers, including two from BJP and one each from AGP and BPF, will also take oath along with Chief Minister. We have more from a correspondent.
2: Along with Dr. Himanta Biswa Sarma as Chief Minister, four other members of the Council of Ministers will also be sworn in today. The four cabinet ministers are Rameshwar Teli, Atul Bora, Charan Boro and Ajanta Nayok. The swearing-in ceremony will be witnessed by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers of BJP-ruled states. The Veterinary College ground at Khanapara in Guwahati has been fully decorated to host the swearing-in ceremony. Elaborate arrangements have been made at the venue in view of the large gathering expected for the event. The Kamrup Metro District Administration has also issued traffic advisories in several parts of the city to avoid congestion and ensure smooth movement of vehicles. Rakesh Dole, Akashwani News, Guwahati.
12: Enforcement Directorate ED has arrested former Fire and Emergency Services Minister of the Government of West Bengal, Sujit Basu, in Kolkata, in connection with the South Domdom Municipality recruitment scam. We have more from a correspondent.
14: After more than 10 hours of interrogation, he is the first former minister to be arrested since the BJP government took charge in Bengal. ED officials say the alleged irregularities took place between 2014 and 2016. According to ED sources, across 17 municipalities, about 1,000 employees were recruited unlawfully. In the recent assembly poll, Bose lost to BJP by over 37,000 votes. According to Enforcement Directorate, the arrest was made under provisions of the Prevention of Money Laundering Act. Investigators have alleged that Bose recommended appointments of several candidates in the South Domdom municipality in exchange for financial benefits. The agency has also reported suspicious financial transactions during the course of the investigation. Sandeep Andashgupta, Akashvani News, Kolkata.
12: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy from Friday. The visit will further deepen India's partnership with Europe across sectors, particularly trade and investment ties, in light of the recently concluded India-EU FTA. We have more from a correspondent.
15: On the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach UAE on Friday, where he will meet the President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. Then the Prime Minister will reach Netherlands on Friday and call on King William Alexander and Queen Maxima. He will also hold talks with Prime Minister Rob Jetten. For the third leg of the visit, Mr. Modi will travel to Gothenburg, Sweden on Sunday and hold bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. In the fourth leg of his visit, the Prime Minister will reach Norway on Monday for the third India-Nordic summit and bilateral engagements. As part of the final leg of his visit, the Prime Minister will undertake an official visit to Italy on Tuesday. During the visit, Mr. Modi will call on the Italian President Sergio Mattarella and hold talks with Prime Minister Giorgia Meloni. With Anupam Mishra, Rishu Jaiswal, Akashvani News, Delhi.
12: US President Donald Trump has said the ceasefire with Iran was at its weakest and on massive life support a day after he rejected Tehran's proposal to end the months-long war as totally unacceptable. In response to a question on the ceasefire with Iran in the wake of the rejection of the peace proposal, Trump told reporters at the Oval Office that it is at its weakest. After reading that piece of garbage they sent, it's on life support, massive life support, he added.
16: It's unbelievable.

0: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण की लिखी ये गजल अभी आपने सुनी। आवाज़ थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम अदालत। दोस्तों, अगर आप गजलें रूबरू सुनने के ख्वाहिशमंद हैं तो आज शाम आप आमंत्रित हैं आकाशवाणी जबलपुर के कार्यक्रम सुर संध्या में, जिसका आयोजन शहीद स्मारक के सभागार में किया जा रहा है। समय शाम 7:30 से ये सुर संध्या आरंभ होगी, जिसमें डॉक्टर तापसी नागराज और श्री अमित दुबे गीत और गजलें पेश करेंगे। आमंत्रण पत्र आकाशवाणी जबलपुर के कटंगा स्थित कार्यालय से आप प्राप्त कर सकते हैं, तो इंतज़ार रहेगा आपका। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, इसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और अमित कुमार ने, गीत अमित खन्ना का, संगीत राजेश रोशन का, फिल्म का नाम है बातों बातों में।
1: उठे सबके कदम, देखो रम पम।

0: देखो रम पम पम आज ऐसे गीत गाया करो
1: कभी खुशी कभी

मोहब्बतें फिल्म का यह नगमा आपने सुना, मिली जुली आवाजें थी उदित नारायण, जसपिंदर नरूला, ईशान, श्वेता, सोनाली और प्रिथा की। कार्यक्रम का अगला गीत अंकित तिवारी की आवाज में है, फिल्म का नाम है बागी 2।

पल पल दिल के पास। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना सचेत टंडन की आवाज़ में, और इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 8:58 होने को है। इस घंटे की खास खबरें कुछ ही पलों में हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी नागरिकों से प्रधानमंत्री के सात सुझावों को अपनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इसके अलावा श्री मोदी ने किसानों से डीजल पंप के स्थान पर सोलर पंप का उपयोग करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर भी जोर दिया है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्वा सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ चार मंत्री भी शपथ लेंगे, जिनमें से दो भाजपा के और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के होंगे। भोपाल के कुशाभाऊ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आज इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यहां विदेशी निवेशकों से संवाद करेंगे। कॉन्क्लेव में फ्रांस के राजदूत, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैश्विक कंपनियों और प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कल प्रदेश के समग्र विकास और जन कल्याण के लिए 29,540 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी गई है। और आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली ने पंजाब को 3 विकेट से हराया। आज शाम गुजरात और हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। सुबह के 9 बजे हैं। अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार। इस कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं रेवाराम विश्वकर्मा के गाए बुंदेली लोकगीत।

आप सुन रहे थे रेवाराम विश्वकर्मा के गाए बुंदेली लोकगीत। आकाशवाणी जबलपुर से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसथार। इस कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए रविशंकर श्रीवास्तव और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत।

0: रविशंकर श्रीवास्तव और साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ ही आज का लोक रसधार कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
0: मीडियम व्यू पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए संजीव अभ्यंकर का गाया राग भैरव में ख्याल। आपके साथ तबला संगत केदार पंडित की है और हारमोनियम पर संगत की है प्रमोद मराठे ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे संजीव अभ्यंकर का गाया राग भैरव में ख्याल। तबला संगत थी केदार पंडित की और हारमोनियम पर संगत की थी प्रमोद मराठे ने। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 10 बजने को है जिले की चिट्ठी। कुछ ही पलों में हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी। आलेख महेश शर्मा, वाचन स्वर शरद बाघेला। इन दिनों मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। आगर मालवा जिले में भी पड़ रही तेज गर्मी से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शादी विवाह का सीजन होने के कारण बाजारों में भीषण गर्मी के बावजूद चहल पहल दिखाई दे रही है। दिन के समय बाजारों सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है, वहीं लोग अपने जरूरी बाजारों के कार्य सुबह शाम करते नजर आ रहे हैं। प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री और आगर मालवा जिले के प्रभारी नागर सिंह चौहान ने गत दिनों सर्किट हाउस में आयोजित हुई विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन कल्याण से जुड़े सभी कार्यों को अधिकारी प्राथमिकता से पूरा करें। प्रदेश के नगरी विकास एवं आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्री नागर सिंह चौहान ने आगर मालवा प्रवास के दौरान बड़ोद चौराहे से पाल रोड तक 98.34 लाख रुपए की लागत से बनने वाली डामरीकृत सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन किया। इस अवसर पर श्री विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों के समग्र विकास के लिए सतत प्रयासरत है। अपने प्रवास के दौरान मंत्रीद्वय ने जिले के सुसनेर में नगर परिषद के नवीन भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया। आगर मालवा जिला दंडाधिकारी व कलेक्टर प्रीति यादव द्वारा भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में रबी फसल विशेष रूप से गेहूं कटाई के बाद खेतों में फसल अवशेष यानी कि नरवाई जलवाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि भी निर्धारित की गई है। इसके तहत 2 एकड़ से कम भूमि पर अवशेष जलाने पर 2500 रूपए, 2 से 5 एकड़ भूमि पर 5000 रूपए और 5 एकड़ से ज्यादा भूमि पर 15000 रूपए प्रति घटना के दर से राशि वसूली जाएगी। जनगणना प्रक्रिया के अंतर्गत मकानों की गणना और स्वगणना कार्य को 100% पूर्ण करने वाले प्रगणकों का गत दिनों आगर मालवा SDM कार्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में SDM व तहसीलदार व जनगणना चार्ज अधिकारी ग्रामीण द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगणकों आशा पालीवाल, किरण नागले, सोना सोनगरा, कालूराम मेहर और प्रेम सिंह यादव को सम्मानित कर उनके कार्य की सराहना की। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में आगर मालवा जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 42 केंद्रों पर की जा रही है, जहां 20,843 कृषकों से 13,617 मैट्रिक

0: टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। साथ ही कृषकों को निर्धारित समय अवधि में भुगतान भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आगरमालवा में 69.42 हेक्टेयर क्षेत्र में नवीन दो औद्योगिक क्षेत्रों में 394 औद्योगिक प्लॉट विकसित किए गए हैं, जिसमें 175 निवेशकों ने अपनी रुचि दिखाई है। औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से विकसित होने पर जिले में लगभग 550 करोड़ रुपए के निवेश और 3,500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। इससे स्थानीय युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार उपलब्ध होगा और बड़े शहरों की ओर पलायन में कमी आएगी और साथ ही परिवहन, होटल, खानपान, मरम्मत व अन्य सेवा क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। आगरमालवा जिले में 24 करोड़ की लागत से बनने वाले हडाई डैम का भूमि पूजन पिछले दिनों क्षेत्रीय विधायक मधु गहलोत ने किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विकास की कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसका लाभ सभी को मिल रहा है। आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में पिछले दिनों कृषि विभाग द्वारा आयोजित की गई मिट्टी प्रशिक्षण कार्यशाला में विद्यार्थियों को मिट्टी के परीक्षण के बारे में विस्तार से समझाते हुए प्रयोग करके दिखाया गया कि किसान अपने कृषि योग्य भूमि की मिट्टी का परीक्षण स्वयं करके उसकी उर्वरकता क्षमता के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना अंतर्गत विभिन्न राज्यों की संस्कृति, परंपराओं, जीवन शैली और भौगोलिक विविधताओं को समझने के लिए राष्ट्रीय एकता और आपसी भाईचारे को मजबूत करने के उद्देश्य से आगरमालवा जिले की चयनित छात्रा ख्वाहिश गवली ने नागालैंड का भ्रमण कर परंपराओं, जीवन शैली और भौगोलिक विविधताओं को समझा और मध्य प्रदेश की संस्कृति का भी परिचय कराया। 8वें पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत कुपोषण के कारण पहचान एवं रोकथाम विषय पर आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में आयोजित हुए जागरूकता व्याख्यान में वक्ताओं ने कुपोषण के प्रमुख कारणों, उसके लक्षणों की पहचान और उससे बचाव के प्रभावी उपायों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए संतुलित आहार, स्वच्छता और जन जागरूकता को कुपोषण से निपटने के प्रमुख उपाय बताए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे आगरमालवा जिले की चिट्ठी। आलेख महेश शर्मा का था और वाचन स्वर शरद बाघेला का। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है।
2: मीडियम व्यू पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए कार्यक्रम वंदे मातरम, गौरव गान की डेढ़ सदी।

मातरम। एक उद्घोष जो आजादी के संग्राम का जय घोष बन गया, इसका अर्थ है माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। बंकिम चंद चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को ये मातृवंदना रची थी। बाद में से 1882 में प्रकाशित उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इस गीत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया था। 1905 के बंग भंग आंदोलन में ये गीत देशभक्ति, एकता, त्याग और बलिदान की भावना जगाने वाला प्रतीक बन गया। स्वतंत्र भारत में इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति दी गई। इस तरह से ये मातृवंदना अब तक 1.5 सदी का सफर तय कर चुकी है।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम गौरव गान की डेढ़ सदी। ये आकाशवाणी जबलपुर है। समाचार बुलेटिन विश्व दर्पण अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, भारत और श्रीलंका सदियों से विकसित सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों से जुड़े हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि LPG वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है।
4: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
5: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
6: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत और श्रीलंका सदियों से विकसित सभ्यतागत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों से जुड़े हैं। संसद भवन में श्रीलंका की महिला सांसदों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों की साझा बौद्ध विरासत आपसी संबंधों की मजबूत नींव है। ये प्रतिनिधिमंडल श्रीलंका की महिला और बाल मामलों की मंत्री सरोजा सावित्री पॉलराज के नेतृत्व में भारत आया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। ईरान ने शांति प्रस्ताव में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज पर संपत्तियां खुलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है।
5: ईरान की मांगें मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही हैं, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2,800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेही तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: पाकिस्तान ने अमरीका के हवाई हमलों से बचाने के लिए ईरान के सैन्य विमानों को अपने हवाई अड्डों पर उतरने की अनुमति दे दी है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने 28 फरवरी को शुरू हुए अमेरिका ईरान संघर्ष समाप्त करने में पाकिस्तान की मध्यस्थता भूमिका के मूल्यांकन की मांग की है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अप्रैल में संघर्ष विराम घोषणा के तुरंत बाद ईरान ने एक खुफिया विमान सहित कई विमान पाकिस्तान के नूर खान हवाई अड्डे पर भेजे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ताइवान और ऊर्जा सुरक्षा उनकी आगामी चीन यात्रा के दौरान बातचीत के प्रमुख मुद्दे रहेंगे। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ अपने संबंधों की सराहना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि ताइवान को लेकर तनाव नहीं बढ़ेगा।
7: व्हाइट हाउस में कल मात्र स्वास्थ्य कार्यक्रम में श्री ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन चीन के साथ बेहतर तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने पूर्व अमेरिकी प्रशासन पर चीन को अमेरिका का फायदा उठाने देने का भी आरोप लगाया। श्री ट्रंप ने चीन से संबंधित अपनी टिप्पणियों को पश्चिम एशिया में व्यापक तनाव और होर्मुज जलडमरू मध्य बंद किए जाने की चिंताओं से जोड़ा। उन्होंने कहा कि चीन को अपने तेल भंडार का लगभग 40% हिस्सा होर्मुज से प्राप्त होता है। श्री ट्रंप ने कहा कि शी चिनफिंग के साथ शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ताओं में ऊर्जा और ईरान प्रमुख विषय होंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: बांग्लादेश में क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
8: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, विश्व समाचार, ढाका।
1: आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। स्वास्थ्य सेवा में नर्सों के योगदान को मान्यता देने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 मई को ये दिवस मनाया जाता है। फ्रेंच रिवेरा में स्वतंत्र सिनेमा का वार्षिक उत्सव कांस फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। जॉन ट्रिवोल्टा, एडम ड्राइवर और बारबरा स्ट्रीसैंड सहित कई सुपरस्टार रेड कारपेट पर नजर आएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, भारत और श्रीलंका सदियों से विकसित सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों से जुड़े हैं और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: गुड मॉर्निंग।
0: मीडियम व्यू पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा।

दोस्तों, जिस तरह से सेहतमंद शरीर के लिए संतुलित भोजन की ज़रूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही दिलो दिमाग की सेहत के लिए मनोरंजन आवश्यक होता है, और मनोरंजन का एक अहम माध्यम है संगीत। और सुर जहाँ पर बिखरते हैं, सुरों की फुहार जहाँ पर होती है, उस कार्यक्रम का नाम है सारंगा। तो स्वीकार करें अपने दोस्त चमन सालवार का नमस्कार। हम हाजिर हैं आपकी पसंदीदा चिट्ठियों के साथ और फरमाइशी गानों के साथ। आगाज कर रहे हैं इस गाने से, जिसे पसंद किया है कुंदनगर खरगोन से ध्रुवा, सोनमणि, सुनीता, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा और शुभम सोनमणि। प्रणाम सिटी खंडवा से यथार्थ कुमार खंडाले, सुभाष खंडाले, मंदा संदीप कुमार, माधुरी पिंटू कुमार और जयश्री खंडाले। पुणे से पंकज बाडोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी बाडोदे, चंद्रप्रभा बाडोदे। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन समती धर्मेंद्र और सन्मति पंचोलिया। पुरानी टोली जशपुर नगर छत्तीसगढ़ से परमानंद नागदेव, मालती नागदेव, कुमारी सोनाली, मयंक, अनिमेश और मास्टर अंसल नागदेव। हर्रे जागीर से अब्बास खान संगदिल, अयान, जिशान, रेहान, मिनहास, पिंकी, चिंकी, रिंकी और हनी। हिरण छापर यमुनानगर हरियाणा से जयपाल धीमान, यशपाल, विनोद और जय भगवान धीमान। और ये चिट्ठी कटकहा पन्ना से प्रताप सेन, सविता सेन, प्रशांत, नेहा, अम्बेश, कृष्णा और प्रांशी सेन की है। ये गाना रूना लैला की आवाज़ में है, गीतकार है इंदिवर और अनजान, और संगीतकार बप्पी लहरी। फिल्म का नाम है यादगार।

छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। गड़िया मौजे उस्तू से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी और सुनीता देवी। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अक्रम आसमा और उल्लाह आसमा बेलदार। सरगुजा मेन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, शरफुद्दीन डोम, कुमारी बली डोम, कुमारी डब्लू डोम। और बेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमड़े, वैष्णवी, चंचल ढोमड़े, अर्जुन गवनेकर और धीरज सबाशेरे। गोरखपुर जबलपुर से प्रेमनाथ मिश्रा, कल्याणी मिश्रा,

शलभ, रक्षा, वैष्णवी, रुद्रांश मिश्रा, आशीष चौबे, ऋचा चौबे, शानवी चौबे और पीएन मिश्रा साथ में हैं, योगेश मेहता। ये गीत सईद कादरी ने लिखा है, संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने, आवाज़ है जवाद अहमद की, फिल्म का नाम है वो लम्हे।

साजिद वाजिद के संगीत निर्देशन में आइए सुनते हैं गुलजार का लिखा ये नगमा, जिसे आवाज़ दी है राहत फतेह अली खान और सुजैन डी मेलो ने। फिल्म का नाम है वीर। पसंदगी हमारे इन श्रोताओं की है। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। बेमेतरा छत्तीसगढ़ से

महिमा सारथी, पूजा आरती भाविया और सुषमा सारथी, अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर, इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया, ग्राम लोहारी खंडवा से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरव और शाइना शर्मा।

0: खिड़कियों से कभी मेरे।
1: गांव फ्रांसी से राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी। नर्मदा कॉलोनी मंडला से सिया शरण ज्योतिषी, पुष्पा ज्योतिषी, गोल्डी रोली लकी, श्वेता और परु। क्रिश्चियन कॉलोनी सागर से डैनी मार्टिन, अर्चना मार्टिन, अश्मिका, अंशिका और विमला मार्टिन। मेहरनगर उमरखेड़ से अभिजीत गवाड़कर, सरिता, प्रिंस एकांश। बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश, श्वेता सुमित और कुमारी ध्वनी गवाड़कर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणिता और टुकटुक गवाड़कर। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक। ये गाना सुनिधि चौहान और सोनू निगम की आवाज़ में है। गीत जावेद अख्तर का, संगीत शंकर एहसान लॉय का, फिल्म का नाम है अरमान।

सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से ये चिट्ठी है। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप और अनिल शर्मा की, साथ में है कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी जोशी और लोकेश जोशी। सिंहपुर बड़ा से राजेश निमा, संगीता भावना और प्राची निमा। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। पोलीपाथर लालकुआ जबलपुर से दिलीप रजक, सुमन रजक, सागर रजक और बेबी परी रजक। असालतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी और मोहम्मद जुबेर अंसारी। बिलहरी बड़खेरा कटनी से संतोष ठाकुर, अवधेश दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल, लालू, गोलू, सोनी, टिंकू, नीलेश, सोनी, शेख जमील और मुनीर पिसरता आदिवासी। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबेहा नेवादा, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। ये गाना शबकत अमानत अली और साथियों के आवाज़ों में है। गीत और संगीत आर को प्रावो मुखर्जी का, फिल्म का नाम है यारियां।

शिवाजी चौक, राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और प्रिय श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव, बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दिलीप, दीक्षा और परी मूड़त, हर्री जागीर से अब्बास खान, संगदिल, आयान, जीशान, रेहान, मिनहास, पिंकी, चिंकी, रिंकी, अनी और संगदिल परिवार के लोग, जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज प्रवीण, ग्राम बगबड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम, बर्गीनगर जबलपुर से रविन्द्र गदरे, सुभाष गदरे, दिगंबर, राजेश, शिवम, शुभांग और सृष्टि गदरे, राजपुर से घीसु दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे। ये गाना अलका याग्निक और जावेद अली की आवाज़ में है, युवराज माफ कीजिएगा गुलजार के बोल और ए आर रहमान का संगीत। फिल्म का नाम है युवराज।

दोस्तों, ये थी कार्यक्रम सारंगा की आखिरी पेशकश, और अब आपके अपने इस कार्यक्रम से अपने दोस्त चमन सालवार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

पेश है इस घंटे की खास खबरें। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्वा सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ चार मंत्री भी शपथ लेंगे, जिनमें से दो भाजपा के और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल फ्रंट से होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किश्त जारी करेंगे। इस दौरान 1,25,22,542 हितग्राहियों के बैंक खातों में 1,835,68,29,250 रुपये की राशि अंतरित होगी। प्रदेश में 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत जी रामजी अधिनियम पूरी तरह से लागू हो जाएगा। अधिनियम के लागू होने से अब वर्ष भर 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इससे न सिर्फ ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा मिलेगा बल्कि अधो संरचनात्मक विकास को भी गति मिलेगी। विश्व योग दिवस के लिए मध्य प्रदेश आयुष विभाग एक विशेष अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। आज से शुरू हो रहे हर घर योग अभियान में 800 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र और सभी चिकित्सालयों में पदस्थ योग शिक्षक 10 से 15 नागरिकों के छोटे समूह में योग अभ्यास करवाएंगे। आंधी बारिश का दौर थमते ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया।

0: है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में तेज गर्मी और लू का असर बना रहेगा। इन इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। और आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे, प्रस्तुति सुनीता सिंह की है।
2: नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, मैं सुनीता सिंह। दोस्तों, जिंदगी हर सुबह हमारे हाथों में एक नया दिन रख देती है, लेकिन उसे शिकायतों से भरना है या शुक्रिया की रोशनी से सजाना है, ये चुनाव कहीं न कहीं हमारा अपना होता है। कभी हम उन चीजों के बारे में सोचकर उदास हो जाते हैं जो हमारे पास नहीं है, और कभी एक छोटी सी खुशी भी मन को इतने संतोष से भर देती है कि जीवन सुंदर लगने लगता है। सच तो ये है कि सुख केवल परिस्थितियों में नहीं बल्कि उस दृष्टि में छिपा होता है जिससे हम अपने जीवन को देखते हैं। शिकायतें धीरे धीरे मन की मिठास छीन लेती हैं, रिश्तों में अनकही दूरियां भर देती हैं, और फिर घर परिवार दोस्त सबका साथ होते हुए भी हम अकेलापन महसूस करने लगते हैं। लेकिन उसी जीवन को जब हम शुक्रिया कहकर स्वीकारते हैं, जब हम आभार के भाव से भरते हैं, तो साधारण दिन भी उत्सव जैसा लगने लगता है। सच तो ये है कि जिसे जो मिला उसने उसी से अपना संसार बना लिया, किसी ने कमी गिनी और किसी ने कृपा। तो आइए आज इसी विषय पर कुछ दिल की बातें करते हैं। आज का विषय, शिकायतें या शुक्रिया, आप किसके साथ हैं? आप अपनी जिंदगी में किन बातों के लिए ईश्वर, समय, अपनों या जीवन को शुक्रिया कहना चाहेंगे? क्या है आपके संतोष का आधार? कौन सी छोटी सी बात, कौन सा रिश्ता, कौन सी याद या कौन सा अनुभव आपको भीतर से संतोष से भर देता है? और क्या आपको लगता है कि जीवन का सुख वास्तव में हमारे नजरिए में छिपा होता है? तो आज इस कार्यक्रम में अपने अनुभव, अपने एहसास और अपने मन की बात साझा कीजिए हमसे। नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना परिचय दीजिए।
3: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, ग्राम सिरवा बांधा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से।
2: योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, कैसे हैं?
3: बढ़िया हैं, अच्छे हैं।
2: और बिल्कुल समय का ध्यान रखकर आपने फोन किया है।
3: हाँ जी, हाँ जी।
2: ये बहुत जरूरी है, हमारे सभी श्रोताओं को ये चाहिए कि वो समय का ध्यान रखकर एक हफ्ते के बाद फोन करें। तो योगेश जी,
3: शिकायत करने का मौका ही नहीं देंगे।
2: बहुत अच्छी बात। तो योगेश जी, हम आज का विषय बता दें, आज हम बात कर रहे हैं कि जीवन में आप किसके साथ हैं, शिकायतों के साथ या शुक्रिया के साथ। अक्सर मन में लोगों की शिकायत होती है कि हमारे पास ये नहीं है, ये उपलब्धि नहीं है, अपने अभावों को, अपनी कमियों को हम बहुत देखते हैं, लेकिन हर जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसके लिए इंसान शुक्रिया कह सके। तो हम जानना चाहते हैं कि आप किसके साथ हैं और किस बात के लिए शुक्रिया कहना चाहेंगे आप?
3: हमारा जीवन ज़्यादातर शुक्रिया पर ही मतलब अभी तक गुजरा है। अक्सर लोगों को हम शिकायत करते सुनते हैं कि हमें ये परेशानी है, हमें वो परेशानी है, लेकिन वो सारी चीजें हमारे नजरिए पर निर्भर करता है कि हम किस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं। जितना सकारात्मक सोचेंगे उतनी सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलेगी और उस तरह से हमारा मानसिक स्थिति होगा। तो जो चीजें नकारात्मक होती है या जो हमारे से थोड़ी दूर होती है उनके बारे में उतना ना सोचे।
2: बिल्कुल,
3: जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इस खूबसूरत जिंदगी को शुक्रिया में गुजारे तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शुक्रिया कहने का मतलब तभी आता है कि जब हम या तो सामने वाले का मदद कर दे या सामने वाला हमारा मदद कर दे, तो ये सबसे अच्छी चीजें होती है।
2: बिल्कुल, जो कुछ हमें जिंदगी में नहीं मिला है उसकी शिकायत करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि जो मिला है वो किसी आशीर्वाद से कम नहीं है, है ना?
3: बिल्कुल, मानव जीवन जैसे हमें मिला है तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है है, माता पिता है, पूरा परिवार है, इससे बड़ा एक इंसान के लिए कोई सौभाग्य की मतलब बात नहीं हो
2: नहीं हो सकती बिल्कुल। तो आज हम जानना चाहते हैं योगेश जी की एक कोई ऐसी बात आप बताएं जिसके लिए आप, या जितनी बातें आप कहना चाहें, किस बात के लिए आप दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं जिंदगी को?
3: जिंदगी को दिल से शुक्रिया तो इसी बात के लिए कहना चाहेंगे कि हमारा पूरा भरा परिवार है और अभी तक के 35 साल के जीवन में हमें कभी मतलब दुखद या फिर कह सकते हैं जिंदगी से उस तरह से कोई शिकायत नहीं है।
2: क्या बात है। देखिए आज जबकि बहुत से इंसान ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें हर पल शिकायत होती है और इसकी वजह से उनके घर का पूरा वातावरण भी खराब होता है, ज़िंदगी भी खराब होती है, कई बार शारीरिक परेशानियां हो जाती हैं, बीमारियां आ घेरती हैं इस नकारात्मक भाव में रहते रहते। लेकिन आप कह रहे हैं
3: जी जी जिंदगी से जितना चाहे है उनसे दोगुना ही मिला है।
2: क्या बात है। तो सोचना चाहिए कि जो कुछ मिला है उसको भी हम सेलिब्रेट करें, है ना। जो कुछ मिला है वो कम नहीं है, बहुत कुछ मिला है और का हम प्रयास कर सकते हैं खुशी के साथ, मेहनत के साथ, लेकिन जो मिला है उसे सेलिब्रेट करना ना भूलें।
3: जी।
2: तो योगेश जी बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप तक भेजते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।

0: हेलो,
1: हेलो
0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम नमस्कार।
1: जी। नमस्कार दीदी, मैं दादू भाई कपूरवा तिंदवारा जिला बांदा उत्तर प्रदेश से रोशन सिंह बात कर रहा हूँ दीदी।
0: रोशन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज इस
1: जी
0: कार्यक्रम में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि शिकायतें या शुक्रिया, आप किसके साथ हैं?
1: जी दीदी, शुक्रिया के साथ रहूंगा मैं।
0: अच्छा, तो किन बातों का शुक्रिया कहेंगे?
1: जी मैं तो भगवान को, मतलब ईश्वर को यही शुक्रिया कहूंगा कि हमें, मतलब, इंसान के रूप में जन्म दिया है। मतलब इंसान का जन्म बहुत यूनिक के बात कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मिलता
0: बिल्कुल,
1: है। जी
0: बड़े भाग मानुष तन पावा, है ना?
1: जी जी जी
0: तो पहला धन्यवाद तो इसलिए कि मनुष्य के रूप में आपको ईश्वर ने जन्म
1: जी
0: दिया। और
1: जी
0: किन-किन
1: जी
0: बातों
1: जी
0: का संतोष है जीवन में आपको? अक्सर हम
1: और दीदी मुझे सारी बातों का संतोष है, लेकिन एक चीज से मैं कहना चाहूंगा कि मैं, मतलब, पढ़ाई नहीं कर पाया।
0: अफसोस है
1: जो
0: आपको कि आप पढ़ाई नहीं कर सके,
1: जी जी
0: लेकिन
1: अफसोस भी
0: देखिए।
1: है। जब 2 साल का था तब मुझे माइंड वाला, दीदी जी, बुखार हो गया था, तो डॉक्टरों ने, मतलब, पढ़ाई के लिए मना किया था कि पढ़ाई न करो, ना नहीं आंखों की रोशनी चली जाएगी।
0: अब तो ठीक हैं आप?
1: जी अभी तो दीदी ठीक है, अब, मतलब, पूरा साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन,
0: हाँ,
1: मतलब, पढ़ाई करने में दिक्कत होती तो पढ़ाई नहीं इसलिए करते दीदी।
0: लेकिन आजकल देखिए, पढ़ने के भी बहुत तरीके हैं, सीखने के बहुत
1: जी
0: तरीके
1: जी
0: हैं, है ना?
1: जी
0: सुनकर
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: कुछ आप सीख सकते हैं, है ना?
1: जी
0: तो
1: जी जी जी
0: आप जो कुछ जानना चाहते हैं वो सुनकर कीजिए, ऐसे बहुत से
1: जी
0: साधन
1: और
0: हैं।
1: अभी रविवार को हमने मदर्स डे मनाया है, तो मैं इस बात के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपनी माँ को कि हमें, मतलब, जीवन, इतना अच्छा जीवन दिया है उन्होंने।
0: देखिए,
1: जी
0: यही एक बात कि माँ साथ है, माँ ने इतनी अच्छी
1: जी
0: परवरिश दी, इस
1: जी
0: बात का भी
1: जी जी
0: शुक्रिया
1: जी
0: हो
1: जी
0: सकता
1: जी
0: है ना?
1: जी
0: बिल्कुल, होना ही चाहिए।
1: किसी किसी की तो दीदी माँ भी नहीं होती साथ, तो उनको भी बहुत दुख होता है और हमें भी।
0: जी, तो रोशन सिंह जी, कहने का अर्थ यही है कि जीवन जो है वो नजरिए की बात है,
1: जी
0: वस्तुओं
1: जी
0: में,
1: जी जी
0: उपलब्धियों में, चीजों में सुख नहीं है। आपका
1: जी
0: नजरिया ही जो है वो आपको सुखी या
1: जी
0: दुखी करता है, संतुष्ट
1: जी
0: या
1: सुखी और
0: असंतुष्ट
1: दुखी में
0: करता है।
1: नजरिए नजरिए का बहुत अंतर है दीदी जी,
0: जी,
1: पूरा ही, मतलब।
0: तो शिकायतों के साथ नहीं, आप जीवन को शुक्रिया कहते हुए आगे बढ़ें, हमारा
1: जी
0: यही
1: जी
0: आज आपसे कहना है। और बहुत
1: जी
0: अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए, एक
1: जी
0: प्यारा सा
1: दीदी
0: गीत आप तक
1: जी
0: भेजते
1: दी
0: हैं।
1: जी दीदी नमस्कार, मैं सुनीता दीदी बोल रही हूँ, अपना नाम जान सकता हूँ थोड़ा।
0: जी जी जी जी सुनीता बोल रही हूँ।
1: जी जी दीदी नमस्कार, मैं आपको
0: नमस्कार,
1: वतन का राग में सुनता रहता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से
1: नमस्ते
0: रेडियो से जुड़े रहिए और
1: जी
0: हमें
1: जी
0: फ़ोन करते रहिए। बहुत
1: जी जी
0: शुक्रिया।

0: बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले श्रोता का। नाम बताइए
1: जी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के सारण सेवा में आदरणीय मैडम सुनीता सिंह जी को प्यार भरा अभिवादन करता हूँ। संतोष कुमार राव फ्रॉम उमरिया मध्य प्रदेश जी।
0: संतोष कुमार राव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हम आज ये जानना चाहते हैं जो विषय है वो आपके नाम से जुड़ा हुआ सा है। हम ये जानना चाहते हैं कि जीवन में कई बार हम बहुत सी बातों को लेकर असंतुष्ट होते हैं और शिकायतों से भर जाते हैं, तो ऐसी कौन सी बात है जो आपको संतोष देती है? आप शिकायतों के साथ हैं जिंदगी में या शुक्रिया के साथ हैं?
1: जी हमें हर बातों का मतलब शुक्रिया अदा करना चाहिए। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है इसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। माँ ने जन्म दिया है इसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। पेड़ हमें छांव देते हैं उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। हवाएं हमें वायु देती है इसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। जल हमें नीर देता है उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। जीवन को शुक्रिया अदा करते ही अगर जाएंगे तो जीवन में संतुष्टि पाएंगे और संतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख होता है, संतोष का कारण होता है। तो विनम्र बनेंगे तो सहजता ही सरलता का भाव आता है, मन में ख्याल आता है और विचारों को भी आप आदान प्रदान कर सकते हैं।
0: क्या बात है। तो दृष्टिकोण बदल जाए तो जीवन बोझ नहीं सुंदर लगने लगता है ना। और आपने बहुत अच्छी बात की कि कितनी बातों का हम शुक्रिया कह सकते हैं। एक स्वस्थ शरीर हमारे पास है, माँ ने जन्म दिया, परिवार ने हमें पाला पोसा, इतने अच्छे हमारे दोस्त हैं, हम चलने के काबिल हैं, बोलने के काबिल हैं, हम सुन सकते हैं, बहुत से उपहार हमें ईश्वर ने दिए हैं, है ना। और आपने प्रकृति की भी बात की है। बहुत अच्छा लगा संतोष जी। और इस तरह की जब एक दृष्टि होती है तो हमारा जीवन जो है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाती है। फिर हम शिकायतों से नहीं भरते, हम हर बात के लिए आभार करते हैं, शुक्रिया करते हैं और कृतज्ञता से भरे हुए होते हैं। और जो कृतज्ञ जीवन होता है वो हमेशा आनंदित होता है।
1: जी बिल्कुल मैम। और बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम होता है कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश के। सभी प्रसारण सेवा के जो कार्यक्रम आते हैं बहुत ही लाजवाब होते हैं और आपकी प्रस्तुतियां बहुत खास होती हैं। जितने भी पुराने हमारे अनाउंसर रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम देते हैं। आप सभी की योगदान के लिए हम आपका भी शुक्रिया अदा बहुत बहुत करते हैं मैडम, क्योंकि इतनी अमूल्य समय निकाल करके आप हमसे बातें करते हैं और इतने कार्यक्रमों को आप प्रसार करते हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा।
0: क्या बात है, आप हमारे प्रसारण के लिए हमें शुक्रिया कह रहे हैं। कि ये भी एक बात हो सकती है, एक नया ही दृष्टिकोण आपने दिया। बहुत अच्छा लगा संतोष जी आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद
1: जी मैम। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो, बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है हमारे अगले श्रोता का। अपना परिचय दीजिए।
1: जी जी नमस्कार। जी
0: नमस्कार।
1: जी जी मैं तो आज धन्य हो गया मैम जी कि आप उपस्थित हैं और ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हैं कि अभी मेरे विचारों की बात इस कार्यक्रम के माध्यम से रेडियो तक पहुंचे और श्रोताओं तक पहुंचे।
0: क्या बात
1: है। मैम जी मैं अपना परिचय दे देता हूँ सबसे पहले। नियमित श्रोता जय नरसिंह एफएम रेडियो ग्रुप ग्राम करकबेल तहसील रोटेगांव जिला नरसिंहपुर के से कमलेश कहार बोल रहा हूँ। जी
0: कमलेश जी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं, लगातार रेडियो सुनते हैं और बिल्कुल ध्यान से पूरे 7 दिन के बाद फोन करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपका हम आभार करते हैं और जानना चाहते हैं कि आज के विषय पर आप क्या कहेंगे।
1: थोड़ी सी मैम बस एक बात और रख लूं, जैसे तो मैं सुन लूंगा मैम जी, वो तो सुनना जरूरी है, जैसे के अनुकूल ही बोलूंगा। यही कि श्रोताओं से निवेदन है, आग्रह, हाथ जोड़ का निवेदन है कि कम से कम 8 या 9 दिन के पश्चात ही आप फोन लगाएं।
0: क्या बात है। तो कमलेश जी, आपके संदेश से हमारा मन खुश हो गया है, आपका आभार करते हैं कि हमारी तरफ से आपने ये बात कह दी है, बहुत शुक्रिया। आज का विषय जो है वो ये है कि हम जानना चाहते हैं कि जीवन में आप शिकायतों के साथ हैं या शुक्रिया के साथ, किन बातों का आभार करना चाहेंगे आप।
1: ये भी अनुकूल बात है मैम जी कि हमें शुक्रिया का अपनी जगह करने चाहिए जो हमारे पास है। जैसे मैं मान लूँ कि मेरे पास एसी नहीं है तो बहुत से लोग एसी के लिए आतुर हैं आज, तो ये अच्छी बात नहीं है। जो है जितना है, कैसे है ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।
0: क्या बात है, क्या बात है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो बहुत अधिक शिकायत से भरना ये जीवन को खराब कर देता है। तो कमलेश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा रिश्ता है, ऐसी कौन सी याद है जिसके लिए आप शुक्रिया कहना चाहेंगे, आपको ऐसी कौन सी बात है जो संतोष से भरती है।
1: देखिए मैम जी, मुझे अपनों का साथ रोजी है, उसके लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ। और दूसरी बात, सबसे बड़ा अपनापन जो है, मैं रेडियो के माध्यम से अपनापन समझता हूँ, तो रेडियो मेरे साथ है, मैं रेडियो के रोजाना उसके साथ हूँ। और आप जैसे उद्घोषक हमारे बीच हैं, तो ये भी एक शुक्रिया का या धन्यवाद का या आभार का, आभार की स्थिति बनती है। अपनों का साथ यदि रोजीना आपके साथ है, इससे बड़ा धन्यवाद है, इससे बड़ा आभार किसी के लिए हो ही नहीं सकता।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके पास जीवन की बहुत सी उपलब्धियां हो लेकिन कोई अपना ना हो उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसका उत्सव मनाने के लिए, तो सारी खुशियां बेमानी हो जाती हैं, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये मन की बात कह दी, मैं यही कहने वाला था कि यदि हम उत्साह, उमंग या खुशी मनाते हैं और ये अपना साथ ना हो तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें तीस पहुँचती है। मन में हृदय जरूर यह बात खलती है कि अपना कोई होना था तब हम उसके साथ अपनी बात रख पाते या खुशियाँ मना पाते।
0: जी जी,
1: तो
0: जी
1: मैं समझता हूँ कि जीवन हमारा है या रिश्तेदार है या जो भी अपनेपन है, सभी के साथ उत्साह उमंग के साथ रहें और आभार रोज ही ना उनका करते रहें।
0: जी, और कहा जाता है कि जो हर बात के लिए आभार करता जाता है, जीवन में जो कुछ उसको प्राप्त है उसके लिए जो आभार करता जाता है, उसको प्रकृति की ओर से और बहुत कुछ मिलता जाता है। आप जितना संतुष्ट होते जाते हैं उतनी प्राप्ति और होती जाती है, तो इस वजह से भी आपको बहुत संतुष्ट होना चाहिए।
1: जी जी, जैसे मैं सुबह उठता हूँ रोजीना, मेरा स्वभाव बन चुका है कि धरती माँ को शरण स्पर्श करना, जलवायु अग्नि आकाश पृथ्वी माता की जय हो, आभार करता हूँ उनका रोजीना, ऐसा नाम लेकर के चंद्र देवता, सूर्य भगवान, जो हमारी संस्कृति कहती है, उन सभी का आभार करता हूँ कि मुझे आज के लिए आपने तैयार किया, मैं अब रोजी रोटी से लग जाऊँ।
0: क्या बात है। जी। बहुत सुंदर बात कही आपने कमलेश जी कि आप प्रकृति का आभार करते हैं, सूरज चांद धरती आसमान का आभार करते हैं कि एक और नया दिन हमें मिला है जीने के लिए और हम अपने काम को आगे बढ़ाएं, रोजी रोटी के लिए आगे बढ़ें, इस बात का शुक्रिया करते हैं। क्या बात है, मन खुश हो गया ये बात सुनकर।
1: बहन जी, ये शब्दों तक सीमित नहीं है, मैं सुबह में ही लाया हूँ।
0: जी जी जी,
1: शायद सुना पड़ी हो, कोयल मेरे बीच में है।
0: जी जी जी, कोयल ने आपके स्वर से स्वर मिलाया है और उसने सहमति दी है कि कमलेश जी सही कह रहे हैं।

0: और आतंक पेड़ लगे हैं आम के, नंदी अमिया लगी हैं, आम भी हो गए हैं, आंधी तूफान सबका आनंद ले रहे हैं
1: क्या
0: लोग।
1: बात है। तो चलिए कमलेश जी, इसी तरह संतोष के साथ जीवन को खुशी खुशी आप बिताइए और आकाशवाणी का साथ बनाकर रखिए। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी अंततः यह कहूंगा कि पूरी टीम को आभार धन्यवाद जो अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ रहते हैं, मैं हर बार यही कह देता हूँ क्योंकि उनको आभार करना हमारा दायित्व बनता है, सभी का श्रोताओं का दायित्व बनता है जो हमें आवाज के माध्यम सुनाई नहीं पड़ते, लेकिन उनके माध्यम से आवाज जरूर हमारे तक आ रही
1: है। जी जी जी बिल्कुल। तो हमारी पूरी टीम तक आपका आभार पहुंच रहा है, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। एक प्यारा सा गीत आप तक भेजते हैं। नमस्कार।
0: जी जी धन्यवाद जी।

0: बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में अपने अगले श्रोता का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, नाम बताइए।
1: जी नमस्कार, मैं दशरथ सेन बोल रहा हूँ, बस स्टैंड नाटाराम, जिला मंदसौर से।
0: दशरथ जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि आपने हमें फोन किया है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज के विषय पर आप बहुत अच्छा एक कोई विचार रखेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, जिंदगी में किन बातों के लिए शुक्रिया कहना चाहते हैं? आप शिकायतों के साथ हैं या शुक्रिया के साथ हैं? आपको क्या लगता है कि जीवन का सुख वास्तव में हमारे नजरिए में छिपा होता है या वस्तुओं में, चीजों में छिपा होता है?
1: जी बिल्कुल, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सुख का, और शिकायत तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी से भी शिकायत नहीं है। हमारे पास अपना जो शरीर है वो बिल्कुल स्वस्थ है, यानी हाथ पैर पांव सब ठीक है, और मम्मी पापा हमारे साथ हैं। शाम का खाना, सुबह का खाना, दोपहर की चाय हम सब साथ में बैठकर पीते हैं, इससे सुख और क्या हो सकता है।
0: क्या बात है, परिवार का साथ है, माता पिता का आशीर्वाद है, भोजन की व्यवस्था है।
1: गरीबी और अमीरी ये दुनिया का और संसार का नियम भी है, परिवर्तन का नियम है, लेकिन अपने पास स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य नहीं, अपना जो शरीर है उसका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, हाथ पैर बिल्कुल स्वस्थ है, सलामत है, और मम्मी पापा साथ में है, बच्चे बच्चियां हैं, मिसेज हैं, परिवार है, दुकान चल रही है, बढ़िया चल रही है, सभी कस्टमर आते हैं, वो सब सब कुछ चल रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात और मेरे हिसाब से और कुछ नहीं हो सकती है।
0: बहुत सुंदर संदेश आपने दिया है दशरथ जी, के परिवार का साथ है, भोजन की व्यवस्था है, माता पिता का आशीर्वाद है, और आपका जो रोजगार है, रोजी रोटी, उसका काम बढ़िया चलता है, तो ये जरूर है कि आप और अच्छे का प्रयास करते होंगे, लेकिन जो है उसका संतोष जरूर है। जी
1: जी जी, हमने ये बात भी देखी है कि बहुत सारे के पास अथा पैसा है, लेकिन उनके पास बिल्कुल शांति नहीं है, वो खाना नहीं खा सकते हैं, किसी से बात करने का टाइम ही नहीं है, कोई गरीब आदमी आएगा तो उनको ऐसे ही टाल देते हैं कि इससे क्या बात करेंगे, अपना समय ऐसे ही जाया करा जाएगा, तो एक काम करते हैं, पैसे में लगे रहते हैं, हम पैसों के पीछे नहीं भागते हैं, हम व्यवहार के पीछे भागते हैं।
0: बिल्कुल, तो देखिए संतोष का बहुत सा अवसर और बहुत सी चीजें जीवन में उपलब्ध हैं, देखने के लिए एक दृष्टि चाहिए, है ना? हमारे जीवन में ईश्वर ने हमको ऐसा बहुत कुछ दिया है, ऐसी अनेक परिस्थितियां जिसके लिए हम आभार कर सकते हैं, जिसका कि आपने जिक्र भी किया, तो हमें बहुत अच्छा लगा दशरथ जी कि आपने एक बहुत सुंदर संदेश दिया इस कार्यक्रम के जरिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण निरंतर ऐसे ही दिन रात हम तक तो पहुँचता रहे, जैसे कि आकाशवाणी को सुनते हुए एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है, तो ये मेरे हिसाब से कि जो कस्टमर और सुन रहे हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, जो श्रोता बंधु हैं, मैं चाहता हूँ कि ये 90 साल का जो हमारा आकाशवाणी का सफर रहा है, हमारे से पहले भी चलता आ रहा था, तो आने वाली पीढ़ी को भी इसको समझना चाहिए कि आकाशवाणी क्या हो रही है,
0: बिल्कुल
1: क्या होती है।
0: बहुत अच्छी बात, तो आकाशवाणी से ये प्रेम बनाकर रखिए, आपके जरिए ये भी संदेश पहुंच रहा है कि आकाशवाणी, आप जो आने वाली पीढ़ी है वो भी रेडियो से जुड़े। बहुत अच्छा लगा दशरथ जी,
1: और कहते हैं कि जहां ना पहुंचे प्राणी वहां पहुंच गई आकाशवाणी।
0: बहुत अच्छी बात, तो दशरथ जी आपने हमें आज फोन किया, आपका हम आभार करते हैं, शुक्रिया कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, एक प्यारा सा गीत आप तक भेजते हैं।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्ते खमागणी।
0: नमस्ते खमागणी, कौन बोल रहा है?
1: हाँ, मैं जिला बालोतरा राजस्थान से आपका नियमित श्रोता मोहनलाल प्रजापति।
0: मोहनलाल प्रजापति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में। कैसे
1: धन्यवाद।
0: हैं?
1: बहुत बढ़िया हूँ मैडम। और हमारे यहाँ तो गर्मी का मौसम बहुत खतरनाक है।
0: गर्मी खतरनाक है ही इस साल, तो बहुत बचकर रहना होगा और पूरी सावधानियां बरत कर ही गर्मी के मौसम में बाहर निकलिएगा। फिलहाल जो हमारा विषय है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम जानना चाह रहे हैं कि जीवन में ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप शुक्रिया कहना चाहेंगे, ऐसी कौन सी बात है जिसका आपको संतोष होता है। बहुत से लोग जीवन में शिकायतों के साथ रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये

0: उपलब्धि नहीं है, मेरे जीवन में ये कमी है। तो हम आज जानना चाहते हैं कि जो है आपकी जिंदगी में, किस बात के लिए आप शुक्रिया कहना चाहेंगे जिंदगी को?
1: हाँ, भगवान की मेहरबानी से एक लड़का है, तो वो मेरी मतलब मुराद पूरी हो गई, और दो बच्चियां हैं, जो एक शादीशुदा है और एक छोटी है, तो मेरी मुराद पूरी हो गई है। और वो एक भगवान की मेहरबानी से एक बच्चा है, तो वो भी अपने काम पर व्यस्त है, तो मतलब मेरे मन की मुराद पूरी हो गई और मैं संतुष्ट हूँ।
0: संतुष्ट हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी बातें हैं, आपको ये लगता है कि आपके जो बच्चे हैं वो योग्य हैं और एस्टेब्लिश्ड हैं, इसलिए आप संतोष करते हैं और आभार करना चाहते हैं ईश्वर का? और कौन सी बात है जिसका आप शुक्रिया कहना चाहेंगे? कई बार शिकायतें होती हैं लोगों को बहुत कि जिंदगी में ये नहीं है, अभावों पर बहुत हमारा ध्यान जाता है, लेकिन जो हमारे पास
1: मैं मेरे शरीर से संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं नशा करता नहीं हूँ और मैं स्वस्थ हूँ। भगवान की मेहरबानी से खुद धंधा कर लेता हूँ और संतुष्ट हूँ। भगवान की मेहरबानी से धंधा भी अच्छा है।
0: जी, तो आप स्वस्थ हैं, इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं, और ये बड़ी बात है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन कहा गया है स्वास्थ्य को, है ना? तो सबसे बड़ा धन जब आपके पास है, आप स्वस्थ हैं, तो जीवन का सारा आनंद आपके पास है। तो इस तरह से भी सोचा जा सकता है जिंदगी को, है ना? तो मोहनलाल जी, आज आपने हमें फोन किया, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नाम बताइए।
1: मैं नीरज उपाध्याय बोल रहा हूँ, मैं अनूपपुर से।
0: आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप, शिकायतों के साथ हैं या शुक्रिया के साथ? ऐसा कौन सा विषय है, ऐसी कौन सी बात है जिसका आपको बहुत संतोष है, खुशी है और आप शुक्रिया कहना चाहते हैं?
1: देखो मैम, शुक्रिया जरूर हमें किसी की, अगर कोई हमारी मदद कर रहा है, कोई हमें अच्छा कोई कर रहा है, तो हम जरूर भी उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी
0: जिंदगी आपके साथ जो व्यवहार कर रही है, जिंदगी ने आपको जो दिया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ऐसी कौन कौन सी बात जिंदगी से आपको मिली है जिसका आप शुक्रिया कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, मेरे हमारे जीवन में जरूर ऐसे कई ऐसे बातें आए हैं जिसको हम लोगों को शुक्रिया अदा किए हैं, ऐसे बात नहीं है। जी
0: आप क्या करते हैं?
1: मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ।
0: अच्छा, तो देखिए आपके पास एक नौकरी है, इस बात का शुक्रिया कर सकते हैं आप, है ना?
1: जी
0: बहुत से
1: बिल्कुल।
0: लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है,
1: जी जी
0: है ना? इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। घर में, घर परिवार में कौन है आपके?
1: घर पर मेरी फैमिली है, मेरी मम्मी है।
0: और सभी लोग
1: जी
0: स्वस्थ हैं,
1: जी बिल्कुल
0: सभी
1: स्वस्थ है
0: लोग
1: सब।
0: खुश हैं, इस बात का
1: जी
0: शुक्रिया हो सकता है ना?
1: बिल्कुल हो सकता है।
0: तो
1: और एक शुक्रिया एक अदा है, एक और होता है शुक्रिया, जैसे मैं नौकरी के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करके मेरे को मतलब नौकरी पे रखा, तो मैंने उनको शुक्रिया अदा किया अपने बॉस को।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जी
0: दोस्त को भी शुक्रिया, ईश्वर को भी शुक्रिया। तो इस तरह से एक नज़रिया जब हमारा होता है ज़िंदगी में कि जो कुछ हमें प्राप्त है उसको भी हम कभी सेलिब्रेट करें, है ना?
1: जी जी बिल्कुल
0: अच्छे
1: बिल्कुल
0: के लिए हम प्रयास ज़रूर करें, जो कुछ कम है उस कमी को पूरा करने की कोशिश करें। किसकी ज़िंदगी में कमियां नहीं हैं? हर इंसान की ज़िंदगी में किसी न किसी बात की कमी है। जिसके पास बहुत पैसा है उसके पास हो सकता है कि समय की कमी हो सकता है कि परिवार की कमी हो, है ना?
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो चलिए, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके पास एक अच्छी सी नौकरी है, घर परिवार है और सभी स्वस्थ हैं। तो इसी तरह से ज़िंदगी को सकारात्मक भाव के साथ देखिए और बहुत खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। बहुत अच्छा लगा नीरज जी आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। आप तक भेजते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: बात आपकी, गीत हमारे कार्यक्रम है ये, हमारे कौन से श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं?
1: मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह शाक्य है, मैं टैक्सेशन असिस्टेंट हूँ मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत SGST डिपार्टमेंट में।
0: चंद्रशेखर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। पहले भी फोन किया है आपने?
1: नहीं मैम,
0: पहली बार फोन किया है। तो इस तरह से आप हमारे नए श्रोता हुए, तो विशेष स्वागत है आपका। और अब हम जानना चाहते हैं कि आज के विषय पर आप क्या कहेंगे।
1: मैडम, मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स रहते हैं वो ऐसा मानिए कि अगर वो नहीं होंगे तो हमें छोटी छोटी खुशियों का कभी पता नहीं चलेगा।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: बिल्कुल,
1: थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल होना या नेगेटिव फेस आना बहुत जरूरी होता है। उससे आदमी बूस्ट भी करता है
0: जी,
1: परिवार के साथ में उसकी बॉन्डिंग भी बनती है, बहुत सारी चीजें अच्छी है।
0: जी जी, तो ऐसी कौन सी बात है जिसका आपको बहुत संतोष है, जिसके लिए आप जिंदगी को शुक्रिया कहना चाहेंगे?
1: मैडम, मुझे इस बात का संतोष है कि मैं अपने परिवार के प्रति काफी संतोषजनक हूँ, उनकी बहुत केयर करता हूँ, वो मेरी बहुत केयर करते हैं।
0: एक अच्छा परिवार है आपके पास, है ना?
1: जी मैम।
0: जी जी, तो देखिए, जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। एक दृष्टिकोण की बात होती है, जो संतोष और सुख है वो वास्तव में हमारे नजरिए की बात है। तो चंद्रशेखर जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आप हमारे नए श्रोता हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे नियमित श्रोता रहें, लगातार हमें फोन कीजिएगा। बस इस बात का ख्याल करके कि एक सप्ताह के अंतराल के बाद ही आप दोबारा फोन करें। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
1: थैंक यू।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: शिवम सिंह,
0: कहाँ से बोल रहे हैं शिवम जी?
1: शहडोल, मध्य प्रदेश।
0: शिवम जी, आप हमारे नए श्रोता हैं शायद,
1: जी
0: पहली बार फोन लगा है आपका।
1: हाँ,
0: बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम शिवम जी, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में। तो क्या कहेंगे आज के विषय पर आप?
1: फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि मेरे पास एक बहुत अच्छी फैमिली है,
0: अच्छा।
1: क्योंकि वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, रहते हैं मेरी पूरी फैमिली एंड डायरिंग माय एल्डर ब्रदर्स, माय पेरेंट्स, सारी चीजें सब लोग। एंड जो क्योंकि लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारी जगह आपको ऐसी चीजें होती हैं कि आपको गाइडेंस की जरूरत होती है,
0: जी जी जी
1: वहाँ पे बहुत अच्छी मेरे जो बड़े भाई लोग हैं और जो मेरे और पेरेंट्स हैं, वो सारे लोग मुझे बहुत अच्छा गाइड और सपोर्ट करते हैं वहाँ पे।
0: क्या बात है
1: सेकेंडली,
0: जी।
1: आई वॉज वेरी थैंकफुल फॉर माई जॉब और जॉब मैं हैविंग और अभी जिस जॉब को मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत अच्छे सीनियर्स मुझे मिले हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे आगे बढ़ने में लाइफ कोचेस भी, एज अ लाइफ कोच भी गाइड करते हैं, एज अ कंपनी कोच भी गाइड करते हैं।
0: क्या बात है। तो शिवम जी, आप बहुत खुश हैं कि एक बहुत अच्छा परिवार आपके पास है जो आपका मार्गदर्शन करता है और सपोर्ट करता है जब कोई कठिन परिस्थिति आती है, और ऐसा ही आपका कार्यक्षेत्र भी है। तो आपको क्या लगता है कि जिंदगी में सुख जो है वो वास्तव में वस्तुओं से होता है, चीज़ों से होता है, या हमारे नज़रिए की बात है सुख?
1: नजरिए का होता है, क्योंकि सबकी लाइफ, सबके देखने का तरीका अलग होता है। किसी को मटेरियल हैप्पीनेस होती है, किसी की मटेरियलिस्टिक होती है, किसी को चीजों में खुशी मिलती है, किसी को फैमिली में खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज में मिलती है। मुझे फैमिली में ज्यादा ज्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज अगर आपके पास चीजें नहीं भी हैं बट आपके पास एक अच्छा परिवार है, कुछ अच्छे लोग हैं जो आपको आपके जिंदगी के उतार चढ़ाव में आपका साथ दें, तो जिंदगी आसान लगती है।
0: बिल्कुल। और नजरिए की बात मैंने इसलिए की कि एक गिलास की हम बात करें कि एक गिलास अगर आधा भरा है तो उसे दो तरह से देखा जा सकता है। कोई कह सकता है कि ये गिलास आधा भरा है और कोई ये भी कह सकता है कि ये गिलास आधा खाली है। तो ये दृष्टिकोण की बात है, है ना? तो हर जीवन में कमी तो होती है। अगर हम सिर्फ कमियों को लेकर शिकायतों से भरते हैं तो फिर बात बनती नहीं, जिंदगी उतनी अच्छी नहीं होती है, गुणवत्ता उसकी ख़राब हो जाती है ना?
1: जी।
0: तो शिवम जी, आपने आज हमसे बात की, हमें फ़ोन किया और अपने विचार इस कार्यक्रम में रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तक भेजते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, जीवन शायद कभी पूरी तरह शिकायतों से खाली नहीं होता, लेकिन यदि मन में शुक्रिया के कुछ दीप जलते रहें, तो अंधेरे उतने घने नहीं लगते हैं। कभी किसी अपने का साथ, कभी किसी अनजान की मुस्कान, कभी सुबह की धूप, तो कभी कठिन समय में मिली छोटी सी उम्मीद। जीवन हर दिन हमें कुछ न कुछ ऐसा देता है जिसके लिए ठहर कर धन्यवाद कहा जा सके, आभार किया जा सके, शुक्रिया कहा जा सके। शिकायतें मन को थका देती हैं, लेकिन कृतज्ञता मन को शांत करती है और यकीनन संतोष का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। इसी सोच और इसी सकारात्मक भावना के साथ अनुमति दीजिए अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। आप मुस्कुराते रहिए, अपनों का साथ महसूस करते रहिए और जीवन में मौजूद छोटी छोटी खुशियों के लिए दिल से कहते रहिए शुक्रिया। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, प्रस्तुति सुनीता सिंह की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। डबल इंजन सरकार जल्द ही अन्य केंद्रीय योजनाओं को निर्बाध रूप से सुलभ कराएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। ये दिन रोगियों की देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान को दर्शाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किश्त जारी करेंगे। इस दौरान 1,25,22,542 हितग्राहियों के बैंक खातों में 1,835,67,29,250 रुपये की राशि अंतरित होगी। प्रदेश में 1 जुलाई से विकसित भारत जी रामजी अधिनियम पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इससे वर्ष भर में 125 दिन का रोजगार मिलेगा, जिससे न सिर्फ ग्रामीण आजीविका बल्कि अधोसंरचनात्मक विकास को भी गति मिलेगी। इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आज भोपाल में आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां विदेशी निवेशकों से संवाद करेंगे। कॉन्क्लेव में फ्रांस के राजदूत, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैश्विक कंपनियों और प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हो रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसका प्रभाव हमारे मन, शरीर और आत्मा पर गहराई से पड़ता है। और भागदौड़ वाली इस जिंदगी में संगीत एक थेरेपी की तरह है, और ये थेरेपी अगर आपके पसंद की हो तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की संगीतमय थेरेपी, वो भी आपकी पसंद की, कार्यक्रम आपकी फरमाइश के इस पहले गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म बेमिसाल से। लता मंगेशकर की आवाज को संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। इंदौर मध्य प्रदेश से विजय, अनिल, नेहा फड़से, सीमा, कमल, पूजा, सुषमा और सुनील। साथ ही औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म बेमिसाल का ये गीत।

जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट, बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री, वैष्णवी चंचल और अर्जुन। आप सभी की पसंद है फिल्म अभिलाषा का गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। इस गीत को लिखा है मजरू ने और संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। लीजिए अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा, आर डी बर्मन का संगीत से सजाया हुआ गीत। फिल्म का नाम है तीसरी कसम और गायक कलाकार हैं अमित कुमार। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया ने।

सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी मनन और तानिया, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक, आप सभी ने फरमाइश की है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में फिल्म धनवान के इस गीत को सुनने की, जिसे लिखा है साहिर ने और संगीतबद्ध किया है हृदयनाथ मंगेशकर ने। लीजिए सुनिए।

नाइट इन लंदन। इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और पसंद आप सभी की। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, बेबी स्वाति, माही, पूजा छुटकी, शरद और पूरा माखीजा परिवार ने।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी,
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जादूगर को सलाम की 12वीं कड़ी।
3: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

0: श्रोताओं, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। श्रोताओ, धारावाहिक की 12वीं कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है उनकी एक कहानी, नसीहतों का दफ्तर का नाट्य रूपांतरण। बाबू अक्षय कुमार पटना के जाने माने वकील थे। बड़े वकीलों में उनकी गिनती हुआ करती थी। बस ये समझा जाए कि राय बहादुरी के खिताब के करीब पहुंच चुके थे। ऐसा नहीं था कि वो कोई खानदानी रईस थे। इनका बचपन बड़ी गरीबी में बीता। इनके संघर्ष और कामयाबी की मिसालें शहर में चर्चा का विषय थीं।
1: अरे बीए में थर्ड डिवीजन से पास हो गए और वो भी 2 साल में, तो कौन सा तीर मार लिया। उन्हें देखो जिन्हें पढ़ने के लिए लालटेन की रोशनी भी नसीब नहीं थी। सड़क पर लगे लैंप शेड की रोशनी में पढ़ा करते थे और कभी कभी तो जुगनू की रोशनी में भी सबक याद किया करते थे। जी हाँ, मैं शहर के मशहूर वकील बाबू अक्षय कुमार की ही बात कर रहा हूँ। और एक आप हैं, सारी सुख सुविधाएं लेते हुए भी कुछ नहीं पढ़ा जाता।
2: उनके घर में तो खाने तक को भी नहीं था।
1: नसीब लेकर कोई माँ के पेट से पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है। श्रीमती जी, अपने लाडले को समझाएं, उसके लिए जिस्म को तपाया जाता है, गलाया जाता है, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आदमी कुछ बन पाता है। बीज जब तक मिट्टी में नहीं मिल जाता, पेड़ नहीं फूटता, पत्ते नहीं लगते, फल नहीं आता।
0: बाबू अक्षय कुमार का शुरुआती सफर तो संघर्षमय रहा ही। वकालत करने के बाद भी सफलता नहीं मिली, लेकिन शीघ्र ही परिश्रम और लगन से वो समय भी आ गया जब वही काला कोट कामधेनु साबित हुआ। कुछ ही समय में अपनी मेहनत और लगन से उन्हें वो दर्जा मिलने लगा। बड़े बड़े जलसों में सभापति बनने का न्योता आने लगा। ये अक्षय कुमार के जीवन का वो समय था जब सारी खुशियां उनके कदम चूम रही थीं।
3: सभी मेहमान आ चुके हैं, मगर अभी तक हमारे खास मेहमान अक्षय बाबू नहीं दिखाई दिए।
4: जी हाँ, उन्हीं का इंतजार हो रहा है।
5: अरे साहब, किसी मुकदमे की तैयारी में उलझे होंगे।
2: हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आज के जलसे की पहली स्पीच तो उन्हीं से ही शुरू होनी है।
5: अरे लीजिए, आ गए वकील साहब, आइए आइए। शैतान का नाम लिया नहीं और शैतान हाजिर।
6: दोस्तों, आज की महफिल

0: में हमारे खास मेहमान हैं, हम सबके हर दिल अजीज, हमारे प्यारे दोस्त और शहर के जाने माने वकील अक्षय कुमार जी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो यहां मंच पे आकर हमारे नौजवानों के लिए दो शब्द कहें और ये बताएं कि कैसे संघर्ष और परिश्रम से उन्होंने जीवन का ये सफर तय किया और इस ऊंचाई तक पहुंचे। अक्षय कुमार जी।
1: दोस्तों, आप सभी और घोष बाबू सम्मान के पात्र हैं जो उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। मैं तो सिर्फ इतना ही समझता हूं कि कुछ लोग भाग्य को बनाते हैं और कुछ लोगों को भाग्य बना देता है। मैं पहले किस्म के लोगों में से हूं। हमारे शहर, समाज और देश की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि हमें भाग्य पर नहीं बल्कि स्वयं के कर्म और कड़े परिश्रम पर विश्वास करना होगा। मैं सभी नौजवानों में यही जज्बा देखना चाहता हूं।
2: वाह वाह, कितना अच्छा बोलते हैं अक्षय बाबू।
3: इनकी शादी हो गई है क्या?
2: अभी नहीं, जीवन की भागदौड़ में शादी करने की फुर्सत ही कहां मिली अभी तक।
3: लेकिन यह सही समय है, अक्षय बाबू को अब विवाह कर लेना चाहिए।
1: समय बीतता रहा, अदालत से कचहरी, कचहरी से घर, घर से महफिल, और देखते ही देखते वो समय भी आ गया जब हर कामयाब इंसान की तरह अक्षय बाबू के जीवन में भी उनके हम सफर का आगमन हुआ। हेमवती बेहद हसीन और हसमुख औरत थी।
4: जाने मन, मैं आपसे कुछ पूछूं, इजाजत है?
1: हाँ हाँ जाने मन, हम भी तो यही चाहते हैं कि कुछ आप अपनी कहें, कुछ हम अपनी कहें।
4: हम चाहते हैं कि आज शाम को हम लोग नुमाइश देखने चलें।
1: अच्छा।
4: शादी हुए हमें इतना समय गुजर गया, देखो ना, हम कहीं घूमने फिरने बाहर गए ही नहीं अब तक।
1: अब बात यह है प्रिय कि काम की व्यस्तताओं में कहीं घूमने फिरने का ख्याल ही नहीं आया। और नुमाइश, नुमाइश में क्या रखा है? कितनी भीड़ भाड़ होगी वहाँ। मेरा तो दम घुटता है ऐसे माहौल में। क्यों ना हम घर में ही कोई आयोजन रख लें, मेरा मतलब है कि मनोरंजन कर लें।
4: ठीक है, मैंने पहली बार आपसे कुछ मांगा, रहने दीजिए।
1: अरे अरे अरे अरे, लगता है आप बुरा मान गई। अरे सुनो तो, चली गई। अब इन्हें कैसे समझाऊं कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए मुझे कितनी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी है। अरे कौड़ियों को दांत से पकड़ना पड़ा है, वो तो मैं बालों में खिजाब भी इसलिए लगाता हूं कि मुझे इनका कुछ ख्याल आ जाता है। मेरी नजर में ये फिजूल खर्ची से ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें मनाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। ठीक है प्रियवर, चलते हैं नुमाइश के लिए, आप तैयार रहना।
4: रहने दीजिए रहने दीजिए, अब हमें कहीं नहीं जाना है। मेरी बहनों को देखो, कितना खुलकर खर्च करती हैं, आए दिन खरीदारी और सैर सपाटे करती हैं। उनके पति तो उन्हें मना नहीं करते, और एक हमारे साहब है।
1: जान तुम मुझे समझ नहीं सकी। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये था कि कल हमें घोष बाबू की पार्टी में तो जाना ही है, फिर क्यों ना कल ही चला जाए। और हाँ, याद आया, वहां आपने भी तो ड्रामे में हिस्सा लिया है ना।
4: क्या मैं नहीं समझ रही हूँ कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये क्यों नहीं कहते कि आप अपने चार पैसे बचाने की फिराक में हैं? साहब, मैं आपकी खातिर ही तो घूमने के लिए कह रही थी, मैं आपके लिए कुछ खरीदना चाहती थी, और उसके लिए मैंने कुछ रुपए रखे हुए हैं।

0: ये तो समझती हैं कि पैसा जैसे पेड़ पर लगता है। हेमू, आज तुम बलाह की खूबसूरत लग रही हो।
1: ये बालों में जुड़ा।

0: किया क्या जाए, इनसे मैं कुछ कह भी तो नहीं सकता। कहीं फिर से बुरा मान गई तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी सब्र से ही काम लेना चाहिए। जी चाहता है प्रिय तुम्हारा हाथ चूम लूं।
1: जाइए भी, जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ। ड्रामे के लिए देर हो रही है। हाँ। अरे सब लोग इंतजार कर रहे होंगे ना। जनाब तारीफ तो ऐसे कर रहे थे जैसे खर्च करने के लिए तपाक से मेरे हाथ में रुपए थमा देंगे, लेकिन मैं भी इनसे एक कदम आगे ही हूँ। साहब को जल्दी ही पता लग जाएगा।
2: वाह वाह, क्या अभिनेत्री हैं। शकुंतला के रोल में जान ही डाल दी।
3: इन्हें तो फिल्मों में अभिनय करना चाहिए।
4: बड़े खुशनसीब हैं, ऐसा नगीना उनकी अंगूठी में जो जड़ा है।
3: लेकिन साहब इतना महंगा नगीना और ऐसे कंजूस की अंगूठी में, वो क्या जाने इसकी कीमत।
5: साहब गोशाल कंपनी से कोई महाशय आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं।
0: ठीक है, अंदर भेजो।
3: अरे साहब ये 200 रुपए का बिल है।
0: बिल? कैसा बिल?
3: कल मेम साहब ने हमारी दुकान से कुछ खरीदारी की थी, उसी का बिल है।
0: ओह हाँ, अच्छा तो कल की चमक दमक, ये बिल उसका खमियाजा है।
6: मन मार कर अक्षय बाबू को सुंदर बीवी के इन अतिरिक्त खर्चों का बोझ उठाना ही पड़ता था। बीवी की खातिरदारी के लिए थोड़ा बहुत खर्चा अपने ऊपर भी करना पड़ता था। हालांकि ये सब उनके उसूलों के सख्त खिलाफ था। आए दिन किसी न किसी अनजाने खर्च का बोझ उनके सिर पर सवार रहता था। एक रोज वकील साहब जब कचहरी से लौटे।
1: सुनिए जी। श्रीमती किचलू आई थी और ये निमंत्रण पत्र दे गई हैं।
0: अच्छा लाओ दिखाओ तो।
1: हाँ ये लीजिए।
0: अच्छा है, निमंत्रण पत्र तो बड़ा महंगा छपाया है। अच्छा, अपने छोटे भाई के बीए में पास होने के शुभ अवसर पर आप सभी को सपरिवार प्रीति भोज में आमंत्रित करता हूं। लीजिए बताइए, ये भला बीए पास करने की खुशी में इतना बड़ा आयोजन करने की क्या जरूरत है। मेरा भाई अगर बीए में पास होता तो मैं तो उसकी पीठ ठोक कर कहता कि शाबाश, खूब मेहनत की। हजारों लोग हर साल बीए पास करते हैं, अजी इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा चलो मान भी लिया जाए, लेकिन लेकिन ये ड्रामा खेलने का भी कार्यक्रम है, ये बात तो मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो पा रही है।
1: क्यों, इससे बेहतर खुशी का और क्या मौका हो सकता है।
0: मेरी जान, डॉक्टर साहब समझदार आदमी है, ये उन्हें क्या सूझी। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि खुशी तो हृदय का तत्व है, उसके लिए ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है।
1: ठीक है, लेकिन मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना।
0: जाना पड़ेगा क्यों, क्या वादा कर लिया है।
1: अब देखिए ना, श्रीमती किचलू कितना आग्रह करके गई हैं।
0: तो मेरी जान तुम एक काम करो, जैसे वो तुम्हारे घर आई ऐसे ही तुम भी कभी उनके घर चली जाना।
1: क्या,
0: इसमें परसों जाने की क्या जरूरत है।
1: अरे जरूरत है भाई, अब आपको ही बता दूं, मुझे नायिका का पार्ट दिया गया है और मैंने उसे मंजूर भी कर लिया है। लगता है साहब ये खबर सुनकर खुश नहीं हुए हैं।
0: फिर वही ड्रामा, मतलब ये हुआ कि ये ड्रामा खेलेंगी और घोषाल एंड कंपनी फिर से कम 200 रुपए की चपत लगाएगी। मामला बेहद गंभीर है, वक्त की नजाकत को समझते हुए इस बात की सख्त जरूरत है कि अभी से रोकथाम कर दी जाए। ये बला फिर से तुमने अपने सर ले ली, अपनी तकलीफ और परेशानी का बिल्कुल ख्याल नहीं किया तुमने, और ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी परेशानी तुम्हारे इस प्रेमी को कितनी परेशान करती है।

0: मेरी जान, इस किस्म के जलसे नैतिक दृष्टि से बहुत आपत्तिजनक होते हैं। इन्हीं मौकों पर दिलों में ईर्ष्या के बीज बोए जाते हैं और यहीं पीठ पीछे बुराई करने की आदत पड़ती है। अरे ऐसे ही जलसों में तानेबाजी और नोकझोंक की नौबत आ जाती है कि फला लेडी हसीन है इसलिए उसकी दूसरी बहनों का फर्ज है कि उससे जलें। मेरी जान, ईश्वर ना करे कि कोई किसी से जले। मुझे तो डर है कि तुम्हारा दाहक सौंदर्य कितने ही दिलों को जलाकर राख कर देगा। इसलिए प्यारी हेमू, मुझे दुख है कि तुमने मुझसे पूछे बगैर ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन मुझे ये विश्वास भी है कि अगर तुम्हें पता होता कि मैं इसे पसंद नहीं करूंगा तो तुम हरगिज इसे स्वीकार नहीं करती।
1: साहब की दलीलें तो सुनिए, मैं सब समझती हूँ, लेकिन मुझे भी कम ना आका जाए। देखिए जी, मैंने तो यही सोचकर मंजूर कर लिया था कि कपड़े तो सब पुराने ही काम आ जाएंगे और ज्यादा सामान की जरूरत भी नहीं होगी। बस कुछ घंटों की तकलीफ जरूर है और एहसान मुफ्त में हो जाएगा। अरे डॉक्टरों को नाराज करना भी तो अच्छी बात नहीं है ना? मगर अब नहीं जाऊंगी, मैं अपनी मजबूरी उन्हें अभी लिखे देती हूँ। सचमुच क्या फायदा बेकार की उलझनों से।
0: कपड़े सब पहले के ही काम आ जाएंगे और कुछ ज्यादा खर्च भी नहीं होगा। चलो, दिल से एक बड़ा बोझ तो उतरा। अगर मुझे पहले मालूम होता कि मामला ऐसा है तो क्यों मैं इतनी माथापच्ची करता। अरे नहीं नहीं हेमू, मेरी जान, मेरी ये मंशा हरगिज नहीं है कि तुम जाओ ही मत। अब देखो ना, जब तुमने निमंत्रण स्वीकार कर ही लिया है तो उससे मुकरना अच्छी बात नहीं मालूम होती। मेरे कहने का मतलब तो सिर्फ इतना था कि जहां तक मुमकिन हो ऐसे जलसों से दूर ही रहना चाहिए।
1: आप फिक्र ना करें, अब नहीं जाऊंगी। तुम्हारी बातें मैंने गांठ बांध ली हैं।
2: दूसरे दिन शाम को अक्षय बाबू बगीचे में अपनी एक खास जगह पर फूलों के खिलने का आनंद उठा रहे थे। अक्सर काम से फुर्सत मिलते ही वो बगीचे में टहलने आया करते थे। तभी एक बूढ़ा उन्हें एक रंगीन और खुशबूदार लिफाफा थमा गया।
0: लिफाफा? देखें तो किसका खत है, क्या लिखा है? मेरे प्यारे अक्षय बाबू,
1: आप इस नाचीज के खत को पढ़कर बहुत हैरत में आएंगे, मगर मुझे आशा है कि आप मुझे माफ जरूर कर देंगे। आपके स्वभाव और आपके रहन सहन के तरीके सुन सुनकर मेरे दिल में आपके लिए प्रेम और आदर का भाव पैदा हो गया है। आपकी सादगी ने मुझे मोहित कर लिया है, लेकिन जब से मैंने आपको देखा है मुद्दतों की सोई।
0: तो जरूर इस परी ने मुझे यहां बैठे देखा होगा। मैं कई दिनों से आईना भी तो नहीं देखा है।
1: तो मौजूद है जिसकी मेरी निगाह में ज्यादा इज्जत है। हालांकि मेरा ख्याल है कि अगर आपको अपने रूप की जरा भी चिंता होती तो शायद मैं बहुत प्रसन्न होती, मगर मैं रूप की भूखी नहीं हूं। मुझे तो सीने में सच्चा दिल रखने वाले एक इंसान की चाहत है और मैंने उसे आप पे देखा है। मेरी आपसे केवल यही प्रार्थना है कि आप कल रात को डॉक्टर किचलू के बंगले पर तशरीफ ले आएं। मैं आपका बहुत एहसान मानूंगी। वहां अशोक के पेड़ के नीचे हरे कपड़े पहने मैं आपके लिए आंखें बिछाए बैठी नजर आऊंगी।
0: तो जरूर इस परी ने मुझे यहां बैठे देखा होगा। मैंने कई दिनों से आईना भी तो नहीं देखा है। ना जाने चेहरा कैसा दिख रहा होगा। क्या करूं? क्यों ना हौस के पानी में अपनी सूरत देखी जाए। नहीं नहीं नहीं, यहां तो चेहरा साफ नजर ही नहीं आ रहा है। फिर तो घर ही चलना पड़ेगा, वहां आईना देखता हूं।

0: ये क्या? हजामत साफ नहीं है और ये कमबख्त साफा भी तो ठीक तरह से नहीं बंधा है, मगर इतना तो है कि मुझे कोई बदसूरत तो नहीं कह सकता। जरूर ये कोई ऊंचे दर्जे की पढ़ी लिखी महिला है, वरना मामूली औरतों की निगाह में तो दौलत और रूप के सिवा कुछ और होता ही नहीं। लेकिन मेरा फूहड़पन शायद ही किसी स्त्री को पसंद आए, मुझे अब इसका ज्यादा ही ख्याल रखना होगा। आज मेरे भाग्य जाके बड़ी मुद्दत के बाद मेरी कद्र करने वाला कोई सच्चा जौहरी नजर आता है। भारतीय स्त्रियां तो शर्म हया की पुतली होती हैं, जब तक अपनी दिल की हलचलों से मजबूर ना हो जाएं, वो ऐसा खत लिखने का साहस ही नहीं कर सकती। इन्हीं ख्यालों में बाबू अक्षय कुमार ने रात काटी, पलक तक नहीं झपकी। दूसरे दिन सवेरे 10 बजे तक बाबू अक्षय कुमार ने शहर की सारी फैशनेबल दुकानों की सैर की। दुकानदार हैरान थे कि साहब यहां का रास्ता कैसे भूल गए। गरज ये कि आज उन्होंने बड़ी बेदर्दी से रुपया खर्च किया और जब घर चले तो फिटन पर बैठने की भी जगह नहीं थी।
1: अरे आज सवेरे से कहां गायब रहे, और ये माथे पर पसीना कैसा?
0: अब हाँ, जिगर में कुछ दर्द था, डॉक्टर चड्ढा के यहाँ चला गया था।
1: तुमने तो मुझसे बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया, जिगर का दर्द एक भयानक रोग है।
0: अरे डॉक्टर साहब ने कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है।
1: इसकी दवा डॉक्टर किचलू के यहाँ बहुत अच्छी मिलती है, मालूम नहीं डॉक्टर चड्ढा बीमारी की तह तक पहुँचे भी है या नहीं।
2: अक्षय कुमार ने हेमवती को चुपती निगाहों से देखा, खाना खाकर अपने कमरे में जा लेटे। शाम को जब वो पार्क, घंटाघर और आनंद बाग की सैर करते हुए फिटन पर जा रहे थे, तो उनके होठों पर लाली और गालों पर जवानी की गुलाबी झलक मौजूद थी। आज उन्हें पहली बार जीवन में अपने रूपवान ना होने पर दुख हो रहा था। आज वो अपनी पतली नाक के बदले अपना खूबसूरत गाउन और वकालत की डिग्री सब कुछ देने के लिए तैयार थे। डॉक्टर किचलू शहर के सबसे बड़े रईसों में से एक थे, पार्टियां देना तो उनका जैसे शौक था। बंगला क्या था, शान और शौकत का जीता जागता नमूना था। दूर तक फैले अशोक के पेड़, सजे धजे फाटक, बरामदे की लंबी मेहराबें, सरू के पेड़ों की कतारें, बल्ब की रोशनी से चकाचौंध बंगला भव्यता का संकेत दे रहा था। मुख्य कक्ष में ओपन थिएटर और उससे सटा बार, अभिप्राय ये कि आधुनिक सुख सुविधाओं से सजा धजा बंगला था।
3: अरे वकील अक्षय कुमार, आज ये कूलर में फूल कैसे लग गए?
4: आइए आइए भाई, आज तो आप एकदम बाके नौजवान लग रहे हैं, क्या बात है
5: भाई। आज वकील साहब को क्या हो गया है, ये चमक दमक माजरा क्या है?
6: जी जनाब, माजरा कैसा, अपने अक्षय बाबू किसी से कम थोड़ी ही ना है। रुपया है, मान सम्मान है, इज्जत है और खूबसूरत बीवी है, क्या नहीं इनके पास।
5: माफ करना, बात काट रहा हूँ, भाभी जी की संगत का असर रंग लाया है। बीवी अगर हसीन हो, जवान हो, ऊपर से अदाकारा हो, तो उसका जोड़ बिठाना कोई मामूली बात है क्या? क्या क्या पापड़ नहीं बेलने पड़ते, क्यों अक्षय बाबू?
0: कैसे कैसे मस्खरे महफिल में जमाए, इनसे फुर्सत मिले तो उन मोहतरमा को ढूंढा जाए। वहां देखूं उस अशोक के पेड़ के नीचे, मगर वो है कहां? आधा घंटा हो गया, चलो अब नाटक भी शुरू होने वाला है, वहीं बैठा जाए।
4: क्या कातिल लताएं हैं,
5: हाय शकुंतला के बेश में तो ये अप्सरा हैं।
4: अजी साहब।

0: अब फलक के चांद और धरती के चांद में कौन ज्यादा हसीन है, कहना थोड़ा मुश्किल है।
1: क्या बख्शे बाबू।
2: ये क्या, ये तो हिम्मती है। इसने तो मुझसे कहा था कि नाटक में नहीं जाएगी। इन्होंने तो मेरी नसीहतों और अपने वादों और यहां तक कि मेरी खुशियों का भी ख्याल नहीं रखा। हे भगवान, यहां मेरा दम घुट रहा है। बाहर चलता हूं, उन मोहतरमा को तलाशता हूं। रात के 12 बजने को आए, उनका कहीं पता नहीं। मैं भी कैसा अहमक हूं, एक औरत के चकमे में आ गया। ना जाने हेमवती भी मेरे बारे में क्या सोचेगी। अरे, वो पेड़ के नीचे, वो सुंदरी। अरे हाँ, वो तो मुझे ही इशारे से बुला रही है। चलता हूं वहां। ऐ रूपवती, तुम्हारी इस कृपा के लिए दिल से मैं तुम्हारा आभारी हूं। तुम्हें देखने के शौक में मेरी आंखें पथरा गई हैं। अगर तुम्हें कुछ देर तक और नहीं मिल पाता तो शायद मेरी जान ही निकल जाती। कल शाम से ही मेरे दिल की जो हालत है उसका जिक्र करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अपने हुस्न के जलवे दिखाइए। ये पर्दा हटा दीजिए, चेहरे से घूंघट हटा दीजिए। ये क्या, अरे अरे अरे हेमवती, तुम ओ, तो ये सब तुम्हारी शरारत थी। बस हेमवती, बस अब मुंह से कुछ मत कहो। मैं खुद से बेहद शर्मिंदा हूं। हाँ हेमू, तुम जीत गई और मैं हार गया, और ये हार मैं कभी भी नहीं भूलूंगा।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कलम के जादूगर की 12वीं कड़ी, नसीहतों का दफ्तर। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे ऋषिकेश शर्मा, गौहर परवेज, शिमाइला, साहिल सैयद, मोहम्मद अखलाक, सतीश कक्कड़ और अशोक शर्मा। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में हुई नव निर्वाचित सरकार के राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। श्री मोदी ने कहा कि डबल इंजन सरकार जल्द ही अन्य केंद्रीय योजनाओं को निर्बाध रूप से सुलभ कराएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। यह दिवस आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। यह दिन रोगियों की देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान 1,25,22,542 हितग्राहियों के बैंक खातों में 1,835,67,29,250 रुपए की राशि अंतरित होगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 21 जून तक प्रदेश में आज से विशेष अभियान हर घर योग चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री

0: मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इस महत्वपूर्ण पहल से जुड़ें और लोगों को भी प्रेरित करें। इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आज भोपाल में आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां विदेशी निवेशकों से संवाद करेंगे। कॉन्क्लेव में फ्रांस के राजदूत, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैश्विक कंपनियों और प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हो रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोता बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की।

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने मन पसंद कार्यक्रम महिला सभा में। आज आपके साथ हूँ मैं दीपलक्ष्मी त्रिपाठी। सभी सखियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, गर्मियों की तेज धूप और उमस भरा मौसम न केवल असहज लगता है बल्कि आपकी सेहत के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। हर साल हजारों लोग हीट स्ट्रोक का शिकार होते हैं, जिनमें से कई को समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर परिणाम भी झेलने पड़ते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ सरल सावधानियों और जागरूकता के साथ आप इस खतरे से खुद को और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रख सकती हैं। तो सबसे पहले सखियों, ये जानने की जरूरत है कि हीट स्ट्रोक और हीट थकावट में अंतर क्या है। शरीर जब अत्यधिक गर्मी से थक जाता है और शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर पाता है, तब यह स्थिति होती है। यदि समय पर इलाज ना किया जाए तो यह हीट स्ट्रोक में बदल सकती है। अत्यधिक पसीना आना, त्वचा का ठंडा और नम हो जाना, कमजोरी और थकावट, चक्कर आना, सिर दर्द होना, धड़कन तेज या धीमी हो जाना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। और हीट स्ट्रोक के लक्षण क्या है सखियों? त्वचा का गर्म और सूखा हो जाना, भ्रम और बेहोशी या दौरे वाली स्थिति हो जाना, धड़कनों का तेज हो जाना। तो आप समझ ही गई होंगी कि इन दोनों में अंतर क्या है। और अब जानते हैं इसके इलाज और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में। व्यक्ति को ठंडी और छायादार जगह पर ले जाएं, शरीर को ठंडे पानी से स्पंज करें, ढीले कपड़े पहनाएं, पानी या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक दें। वहीं अगर हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर को बुलाएं या नजदीकी अस्पताल ले जाएं। शरीर को तुरंत ठंडा करने की कोशिश करें, बर्फ के पैक, ठंडी तौलिया वगैरह इस्तेमाल करें। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए कुछ आदतों को अपनाना बहुत जरूरी है। दोपहर 12 से 4 बजे तक कोशिश करें कि धूप में ना निकले, हल्के ढीले और सूती कपड़े ही पहने, दिन में 8-10 ग्लास पानी जरूर पिए, इलेक्ट्रोलाइट्स, नारियल पानी, शिकंजी हमेशा लेते रहें, बाहर निकलते समय छाता, टोपी या सनग्लासेस का इस्तेमाल करें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। गर्मी के मौसम में थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है सखियों। हीट स्ट्रोक और हीट थकावट को रोकना पूरी तरह संभव है, बस जरूरत है सही जानकारी, सतर्कता और समय पर कार्यवाही की। तो सखियों, बहुत सी जानकारी और भी देंगे आपको आगे कार्यक्रम में, पहले सुन लेते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

क्यों आज 12 मई है, हर साल 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। इसका उद्देश्य पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, फसलों की कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है, क्योंकि कीटों के कारण हर साल दुनिया भर में लगभग 40% फसलों का नुकसान होता है। संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2018 में इस दिन की घोषणा की, जो 2020 के अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष की एक विरासत है। यह दिवस खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, पौष्टिक भोजन प्रदान करने और कृषि व्यापार को सुरक्षित बनाने में पौधों की अहम भूमिका को रेखांकित करता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ पौधे हमारे जीवन, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए कितने आवश्यक हैं।

अब बात करते हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई थी, जो 1 करोड़ घरों को छत पर सोलर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने का एक सरकारी कार्यक्रम है। यह योजना 40% तक के भारी सब्सिडी के साथ 75,000 करोड़ से अधिक के निवेश से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य घरों में ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना और बिजली बिल कम करना है। आवेदन करने के लिए आप pmsuryaghar.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं अपने अगले क्रम मेरी उड़ान की ओर।

0: न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारेंगे हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। इन्हीं इरादों और वादों के साथ शुरुआत करते हैं आज के मेरी उड़ान क्रम का। आज हमारे साथ हैं सपना यादव, का बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: आजकल हम हर जो मूवमेंट होता है, क्षण होता है, उसको सेलिब्रेट करते हैं, वो चाहे जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो या कोई भी अवसर, और कुछ भी सेलिब्रेशन में हमें जरूरत पड़ती है केक की। तो हम महिलाओं के लिए इस केक के बिजनेस में कितना सुनहरा अवसर है। सपना जी, सबसे पहले ये बताइए, केक का बिजनेस शुरू करना है, ये आइडिया आपको कैसे आया?
1: केक का बिजनेस करना है ये मैंने कभी नहीं सोचा था। एक्चुअली कोविड के समय सिचुएशन ऐसी थी कि किसी को कुछ अवेलेबल नहीं था, एटलीस्ट मुझे कुछ अवेलेबल नहीं था। मेरी एनिवर्सरी थी अप्रैल में,
0: हाँ।
1: तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या केक कैसे मिलेगा। बस वहीं से मैंने कुछ घर के सामानों से बनाया केक, फिर उसका स्टेटस रखा। जो दूसरे लोग थे जिन्होंने मेरा स्टेटस देखा, जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे नेबर्स थे, तो उनको भी जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट।
0: कोविड के दौरान आपको कहीं ना कहीं ये एक मोटिवेशन मिला कि आपने घर के लिए बनाया और फिर आपको बाहर से ऑर्डर मिलने लगे। तो अभी आपको कितने ऑर्डर्स मिल जाते हैं केक के?
1: अभी मुझे वीकली मिल जाते हैं 5 से 6, या फिर कभी कभी मुझे एक दिन में 3 या 4 भी बनाने पड़ जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग भी देना पड़ता है और फिर लेट नाइट भी देना पड़ता है। तो ये चीजें मैं फिर ऐसे ऑर्डर्स मिलते हैं, मंथ में 15-20 ऐसे ऑर्डर्स हो जाते।
0: तो सपना जी ये बताइए कि जब आपने पहला केक बनाया, उसका आपका एक्सपीरियंस क्या था?
1: वो तो बहुत खुशी हुई थी मुझे कि मैंने जो मैं देखती थी, कभी सोचा नहीं था कि ये केक्स हम बना सकते हैं। बहुत खुशी हुई तब मैंने बनाया, और मेरे हस्बैंड ने जब देखा तो उन्होंने तारीफ की, तो वो तो एक स्पेशल ही होता है हस्बैंड की तारीफ मिले।
0: जब अपने किसी हुनर की कोई तारीफ करता है तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। सपना जी, सबसे पहले जब आपने सोचा कि आपको केक बनाना है, तो उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ी?
1: देखिए, केक बनाने के लिए तो हमारे घर में जो आटा होता है जिससे हम रोटियां बनाते हैं, हम केक उससे भी बना सकते। किचन में सोडा भी यूज होता है, बेकिंग पाउडर भी होता है, शुगर भी होती है, ये सब बेसिक चीजों से ही केक बनता है। फिर हम इसमें फ्लेवर ऐड करते हैं, वो एसेंस के होते हैं उसके। तो अगर आप सिंपल केक बनाएंगे तो एसेंस की नीड नहीं है, नहीं तो आप घर के ही बेसिक सामान से ही केक बना सकते हो। आपको कोई मैदे की जरूरत नहीं, कोई सूजी की जरूरत नहीं, आप घर के गेहूं के आटे से भी आप केक बना सकते हैं। इवन शक्कर नहीं है तो आप गुड़ भी डालकर केक बना सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए हम गुड़ से भी केक बना सकते हैं। तो कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं। हाँ, हमें एडवांस लेवल पर जाना है,
0: अच्छा,
1: तो हमें चीजों की जरूरत
0: है। इतने सारे ऑर्डर्स आपके पास आते हैं, तो अभी तो आपको बहुत सारे इसमें लगने वाले सामानों की जरूरत पड़ती होगी, तो खुद मार्केट जाकर लाती हैं या ऑनलाइन मंगवाती हैं?
1: नहीं, वो मैं खुद सर्च करती हूँ मार्केट में। जैसे जैसे नई चीजें आती है मैं मार्केट खुद जाकर सर्च करती हूँ, और फिर जैसे मुझे जिस तरह के ऑर्डर्स मिलते हैं, जैसे आजकल बच्चों को थीम केक चाहिए, डोरीमैन केक चाहिए, बार्बी गर्ल थीम, तो ये सब अलग अलग थीम चल रही है आज।
0: इतना बारीक काम है कि इसमें बहुत सारे टाइम की जरूरत
1: पड़ती है। ये वो केक को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें बहुत टाइम लगता है, पर जब उस चीज में आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, बहुत ज्यादा अनुभव हो जाता है उन चीजों को, तो आपके हाथ ऐसे चलते हैं जैसे आप रोटी नहीं बेलते हो फटाफट। जैसे एक लेडी को कितनी आदत हो जाती है रोटी बेलने की, उस तरह से केक आपका बनना। अगर मुझे कोई ऑर्डर देता है 2 घंटे पहले, तो मैं केक रेडी करके दे दूँ।
0: 2 घंटे में अगर एक केक बनाना चाहें तो आराम से बन जाएगा।
1: आराम से
0: जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको अच्छे से संभालते हो और आप केक के लिए आराम से टाइम निकाल लेते हो।
1: ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बोलूंगी कि मुझे घर में रहकर मैं घर भी संभाल रही हूँ, अपने बच्चों को भी देख पा रही हूँ।

0: और मैं ये काम भी कर पा रही हूँ। और अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो भी सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं।
1: एक सवाल और था आपसे, जैसे जो सखियां चाहती हैं, जैसे उनको भी पता है कि वो बहुत अच्छा कुछ कर सकती हैं, उनमें भी हुनर है किसी चीज का, या सपोज वो केक ही बनाती हैं, अच्छा बना सकती हैं, इसकी शुरुआत वो कैसे करें?
0: शुरुआत तो सबसे पहले हमें केक का बेस, जो स्पॉन्ज बोलते हैं जिसको, ड्राई केक बोलते हैं, उसमें आप पहले बनाइए, एक दो बनाइए, चॉकलेट का बनाइए, वनीला बनाइए, ये सब चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं।
1: तो इसके लिए प्रॉपर कहीं ट्रेनिंग की ऐसी कोई जरूरत
0: ऐसी
1: नहीं
0: कोई
1: है?
0: जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल हूँ, जिस मैंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली। ट्रेनिंग भी अगर आप लेते हो और ट्रेनिंग करके छोड़ देते हो, आगे कुछ नहीं करते, पर आपको ट्रेनिंग लेने के बाद भी प्रैक्टिस तो लगती है।
1: प्रैक्टिस की
0: प्रैक्टिस,
1: जरूरत
0: आपके
1: है।
0: हाथ में सफाई आने के लिए आपको खुद को कम से कम 10 केक बनेंगे, तब आप कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं सही बना पा रही।
1: तो जैसे कोई हमारी सखियां हैं घर पर ही शुरू करना चाहती हैं केक का बिजनेस, तो मिनिमम उनको कितने अमाउंट की जरूरत हो?
0: आप मिनिमम 1000 रुपीज इन्वेस्ट करके, क्योंकि जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है उससे आप स्पॉन्ज बना सकते हैं। फिर आपको क्रीम चाहिए, टर्निंग टेबल चाहिए, स्पेचुला चाहिए, नाइफ चाहिए, इसके लिए आप 1000 रुपीज इनफ है। 1000 रुपीज 1500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं
1: और ओवन
0: बिजनेस।
1: भी जरूरत पड़ती होगी?
0: देखिए, ओवन तो मैं खुद अभी कोविड के 2 साल मैंने बनाया, मेरे पास कोई ओवन नहीं था, मेरे पास कोई ऐसी एडवांस कोई मशीन नहीं थी। मैंने अपना केक 2 साल तक, कम मैं बता दूं, हंड्रेड्स ऑफ केक मैंने कढ़ाई और कुकर में ही बनाए।
1: तो बहुत अच्छी बात है सपना जी। और बहुत सी हमारी सखियां होती हैं जो कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनमें एक डर होता है, एक हौसले की शायद कमी होती है,
0: कमी
1: वो आगे बढ़
0: होती
1: नहीं पाती, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
0: सखियों के लिए मेरा मैसेज यही है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, और किसी भी चीज को देखकर घबरा जाना या डर जाना, कोई केक हम मेरे लिए भी पहले मैं देखती थी कैसे बनता होगा, पर कोई स्पेशली लेडीज के लिए तो कोई मुश्किल चीज है ही नहीं, कर सकती हैं वो, बस अपने अंदर के हुनर को पहचाने तो सब कुछ पॉसिबल है।
1: बिल्कुल सही बात कही है कि अपने हुनर को पहचानने की जरूरत है, उसको निखारने की जरूरत है। अगर आप में कोई प्रतिभा है, और जरूर होगी, हर महिला में कोई ना कोई प्रतिभा छुपी होती है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने की और तराशने की। मेरी उड़ान क्रम में सपना जी आप आई, आपने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

सखियों, खूबसूरत से गीत के बाद अब बारी है फूड जोन की। गर्मियों में शरीर को ठंडक देने और लू से बचने के लिए सत्तू यानी कि चने का आटा सबसे बेहतरीन और सस्ता घरेलू उपाय है। यह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है सखियों। तो आइए आज आपको बताते हैं क्लासिक नमकीन सत्तू शरबत के बारे में। यह सबसे आम और झटपट बनने वाली रेसिपी है जो पेट को तुरंत ठंडक देती है। तो इसमें लगने वाली सामग्री को लिख लीजिए सखियों। 2 बड़े चम्मच सत्तू, 1 गिलास ठंडा पानी, 1/2 चम्मच नींबू का रस, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1/2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ पुदीना और धनिया। और सखियों, आप जानते हैं इसे बनाना कैसे है। 1 गिलास में सत्तू और थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह घोल लें ताकि गांठें ना पड़े। फिर बाकी पानी, नींबू, काला नमक, जीरा मिर्च और धनिया मिलाकर ठंडा ठंडा सर्व करें। ये क्लासिक नमकीन सत्तू शरबत आपको बहुत ही पसंद आएगा। और सखियों, आपको बता दें कि सत्तू का सेवन सुबह खाली पेट या दोपहर में करना सबसे अच्छा माना जाता है। तो सखियों, फिर से लेकर चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये गीत।

0: सखियों, सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार की तरह है। जहां यह हमें सीखने और जुड़ने के अवसर देता है, वहीं छोटी सी लापरवाही किसी भी बड़ी मुसीबत को आमंत्रण दे सकती है। ऐसे में महिलाएं सुरक्षित डिजिटल अनुभव के लिए कुछ अनिवार्य कदम उठा सकती हैं। इंटरनेट पर अगर कोई जानकारी ऑनलाइन चली गई तो उसे पूरी तरह मिटाना लगभग असंभव है। इसलिए सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता, फोन नंबर, बच्चों के स्कूल का नाम या वित्तीय विवरण साझा ना करें। आप इन्हें सीधे अपलोड भले ही नहीं करती, पर कई बार अनजाने में किसी पार्सल या अवार्ड को दिखाते समय ये सूचनाएं गलती से पोस्ट हो सकती हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें।
1: महिला सभा कार्यक्रम का प्रसारण अभी किया जा रहा था। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। प्रस्तुत है सुगम संगीत। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुंदरलाल मालवीय और साथियों के गाए मालवी लोकगीत।

प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा है। कलाकार हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में शिखा शर्मा। आप सुनेंगे कुछ भक्ति गीत।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आपने शिखा शर्मा के गाए कुछ भक्ति गीत सुने। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: ना उत्तेजना, ना शोर दिन रात, ना ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
1: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल।
2: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद, सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
4: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दे नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। पेश है फिल्म संगीत। आरंभ कर रहे हैं मोहम्मद रफी के गायक कैफी आजमी के लिखे गीत से। संगीत मदन मोहन का है और फिल्म है हकीकत।

और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले और महेंद्र कपूर के स्वर में। साहिर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है रवि ने, फिल्म है गुमराह।

0: फिल्म गुमराह के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया। नर्सिंग के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले इन पेशेवरों को प्रमाण पत्र पदक और 1,00,000 रुपए नकद दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में हुई पहली कैबिनेट बैठक के फैसलों की सराहना की है। राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू करने और बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन देने का फैसला किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी के खानापारा मैदान में हुए इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। उनके साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें भाजपा असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के नेता शामिल हैं। 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रद्द कर दिया है, क्योंकि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी और एनटीए सभी दस्तावेज उन्हें सौंपेगी। करीब 23,00,000 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी, हालांकि उन्हें फिर से आवेदन या फीस नहीं भरनी होगी। परीक्षा की नई तारीख जल्द ही आधिकारिक तौर पर घोषित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की ओर थीम पर 21 जून तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। हर घर योग के इस अभियान का मकसद हर घर तक योग को पहुंचाना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस अभियान को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया,
1: 21 जून योग दिवस को लेकर के जो यूनेस्को के माध्यम से पूरी दुनिया को योग अपनाओ, निरोगी बनो, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ शरीर, शरीर में परमात्मा की दया से योग के माध्यम से अपार क्षमता है जिसको हम जागृत कर सकते हैं।
0: मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच निवेश और कारोबारी संबंध मजबूत करने के मकसद से आज भोपाल के मिंटो हॉल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो समेत फ्रांस की कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। आईपीएल में कल रात धर्मशाला में खेले गए रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से मात दी। वहीं आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्वाचन के लिए आज पूरे प्रदेश में एक साथ मतदान हो रहा है। भोपाल में जिला न्यायालय परिसर में शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। प्रदेश भर के करीब 88,000 अधिवक्ता 122 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। आंधी बारिश के बाद प्रदेश में एक बार फिर लू ने दस्तक दे दी है। कल रतलाम में तापमान रिकॉर्ड 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और आज उज्जैन, धार, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी में लू का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तक इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में लू का असर रहेगा और भोपाल, इंदौर समेत 49 जिलों में पारा 43 से 44 डिग्री के बीच बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने आज लॉयंस क्लब के भोजन सेवा केंद्र भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। राजगढ़ के पचोर पेट्रोल पंप अग्निकांड के घायलों से मंत्री गौतम टेटवाल ने आज शाजापुर अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर आगरमालवा में व्याख्यान का आयोजन किया गया। नवागत संभागायुक्त ने नर्मदापुरम संभाग का पदभार संभालते ही कमिश्नर कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। जबलपुर के रामसागर तालाब में डूबे 2 युवकों में से एक का शव आज सुबह बरामद हुआ, दूसरे की तलाश जारी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई

0: जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के.ए. सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
3: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
4: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।

0: पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मित्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़ककर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, CBI जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का पहला गीत श्रेया घोषाल और आतिफ असलम की आवाज में। फिल्म है तेरे नाल लव हो गया।

आतिफ असलम और श्रेया घोषाल के गाए इस गीत को सुनवाने की फरमाइश हमें भेजी थी बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने, प्रमिलागंज, आलौट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से। इसी गीत को सुनना चाहते थे संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। अकोला से गांधीबाग के रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर की यही फरमाइश थी। अमरावती महाराष्ट्र के सरोज चौक से

और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म रांझणा से। जावेद अली, कीर्ति सगाथिया और पूजा के गाए इस गीत को संगीत से संवारा है एआर रहमान ने। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां ने आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से फरमाइश भेजी है, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सोना शारदा, दामिनी और उनके परिवार के सभी सदस्य, सतीश मिगलानी, सीमा, शायना, विशाल और मिगलानी परिवार के सभी सदस्यों ने मलॉट कैंप पंजाब से अपनी फरमाइश भेजी है। तो पेश है आप सबकी पसंद का ये गीत।

इरशाद कामिल का लिखा एक और गीत आप सुनेंगे चिन्मयी श्रीप्रदा और आतिफ असलम की आवाज में। इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने। फिल्म है फटा पोस्टर निकला हीरो। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं अनिल कवचाले, नेहा फटसे, सीमा सबीहा, पूजा, नेहा, सुषमा, स्मिता और उनके सभी साथी। इंदौर से ये पत्र आया है पटेल नगर मलौट पंजाब से रमेश कुमार जाजौरिया, गीतारानी जाजौरिया, गगनदीप और बेबी आरजू ने भी अपना फरमाइशी पत्र हमें भेजा है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर की फरमाइश आई है। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता भी अपनी फरमाइश भेज रहे हैं। तो आप सबकी पसंद पर हम सुनवाते हैं आतिफ असलम और चिन्मयी श्रीप्रदा का गाया।

और अब कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं कौसर मुनीर का लिखा गीत विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में। फिल्म है गोरी तेरे प्यार में और इस गीत को आवाज दी है नीति मोहन और कमाल खान ने। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित, कमलेश जयपुरिया, अनुश्री प्रदीप, पिंकी और प्रमिला, लालचंद्र मिश्र और नरेंद्र कुमार राम ने भिलाई और रायगढ़ से ये फरमाइश हमें भेजी है। जबलपुर से जिनेन्द्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन और अरुण चौरसिया की फरमाइश है। प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले ने गौतम नगर जिला नांदेड़ से अपना पत्र भेजा है। भाटापारा दतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा की भी यही पसंद है।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अब सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में हुई पहली कैबिनेट बैठक के फैसलों की सराहना की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी के खानापारा मैदान में हुए इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रद्द कर दिया है, क्योंकि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी और एनटीए सभी दस्तावेज उन्हें सौंपेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की ओर थीम पर 21 जून तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच निवेश और कारोबारी संबंध मजबूत करने के मकसद से आज भोपाल के मिंटो हॉल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्वाचन के लिए आज पूरे प्रदेश में एक साथ मतदान हो रहा है। भोपाल में जिला न्यायालय परिसर में शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। सांध्यकालीन सभा में शाम 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकवाणी, जिसमें गीत संगीत चर्चा और रोजगार सूचनाएं शामिल होंगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम शाम 6:00 प्रसारित किया जाएगा। 7:21 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा कृषि के साथ वानिकी के लाभ विषय पर ली गई भेंटवार्ता। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, साथ ही होंगे बुंदेली समाचार, गीत संगीत और चर्चा शामिल रहेगी। सुर्खियों में कार्यक्रम रात 8:00 प्रसारित किया जाएगा। 8:15 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। रात 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम कहकशा प्रसारित किया जाएगा और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत।

का कार्यक्रम राग रजनी होगा, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे पंडित दिनकर कैंकिनी का ख्याल गायन। राग होगा सावनी बिहार। ये थे सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्स, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:01:30 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

0: ध्यान रखें, और खास तौर पे हमारी सखियां सबका तो स्वास्थ्य, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रख लेती हैं, लेकिन खुद को हम कहीं छोड़ देते हैं पीछे, तो ऐसा ना करें।
1: सबसे पहला ध्यान दीपा ने खींचा है स्वास्थ्य की तरफ पे।
0: जी
1: बहुत अच्छी बात है। और स्वास्थ्य से मुझे याद आया कि जैसे तुमने कहा ना कि भाई महिलाएं जो है वो सबका ध्यान रखती हैं, और जब छुट्टियों में बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं, और फिर जब मेहमान आते हैं तो बच्चे भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो जो महिलाओं की जिम्मेदारी है वो बहुत बढ़ जाती है, खास तौर पर क्योंकि एक तो गर्मी के दिन ऊपर से रसोई का जो काम है वो बहुत बढ़ जाता है।
0: हाय हाय, ये तो पूछो ना, सच में देखो पसीना तो बहुत आता है, ऐसा लगता है कि कब बस ये बन जाए, जो भी व्यंजन बन रहा है ये बन जाए और हम बाहर जाएं। लेकिन ये बात भी है, कहीं बच्चे नानी के घर आए होंगे, कहीं बच्चे दादी के घर आए होंगे, या कहीं बुआ किसी किसी के घर पे आई होगी, या हम कहीं गए होंगे। ये बात तो गर्मियों में, ये मई और ये जून का महीना है, इसमें ये सब चीज़ें चलती हैं, और देखो फिर यादें भी तो वहीं बनती हैं।
1: बिल्कुल,
0: कितनी बातें हम संजोते हैं, कितनी हमारे जब यादों के गलियारे में जाते हैं, हम अपने दिनों में ही जाते हैं अगर चंचल।
1: हालांकि तो, समय बदल रहा है, पहले एक एक पूरे दो दो महीने डेढ़ महीने के लिए हम नानी के घर चले जाया करते थे, आजकल क्योंकि समय बदल रहा है हम लोग भी बहुत सारी बच्चों को एक्टिविटीज के लिए डाल देते हैं, तो समय कम होता है, लेकिन फिर भी लगता है कि छुट्टियां आई हैं बच्चों की, थोड़े बदलाव के लिए क्यों ना कहीं बाहर चला जाए, तो एक हफ्ता 10 दिन का समय निकल कर तो हम छुट्टी मनाने चले ही जाते हैं किसी न किसी रिश्तेदार के घर, या तो फिर किसी जगह पर घूमने चले जाते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं किसी रिश्तेदार के घर, तो वहां जब उनका काम बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो जाते हैं वहां हमें भी थोड़ा हाथ बटाना चाहिए। इस पर हमारी सखियों के क्या अनुभव हैं, क्या उनके ऊपर भी कभी उन्हें लगता है कि काम का बोझ बहुत बढ़ गया है तो झुंझलाहट आती है, या आए मेहमानों के साथ में वो एक यादें बनाने के लिए बहुत खुश होती हैं, उनके अपने अच्छे बुरे खट्टे मीठे सभी तरह के जो भी अनुभव हैं वो हमारे साथ साझा कर सकती हैं।
0: और साथ में ये भी बताइएगा कि आपके घर में बच्चे आए हैं या आपके घर के बच्चे कहीं गए हैं, क्या चल रहा है इन दिनों घर में, खूब सारी जो चहलकदमी चल रही है, या अभी कहीं बच्चे गए हुए हैं तो घर में शांति है, सब तरह की जो भी बातें आप चाहती हैं साझा जरूर करिएगा।
1: और हम जब अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं ना, तो उनकी बातें जब हम सुनते हैं तो उसमें बहुत सारे कहावतें मुहावरे ये सुनने को मिलती हैं, और ये ऐसे मुहावरे या कहावतें जो होती थी ना, 4 शब्दों में 40 लाइनों की कोई बड़ी बात कह जाते थे,
0: सही
1: ऐसे शब्द
0: है।
1: होते हैं,
0: यानी कि 100 सुनार की और 1 लोहार की वाली बात कर रही हैं आप।
1: बिल्कुल, और यही आज का मुहावरा है जिस पर हम बातचीत करने वाले
0: जी
1: हैं।
0: और महिलाओं ने उद्यम के क्षेत्र में
1: जी,
0: बिजनेस के क्षेत्र में बहुत सारा अपना नाम कमाया है पिछले कुछ वक्त में
1: जी।
0: कोरोना के बाद तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि कितनी सारी महिलाएं अब काम कर रही हैं, हम बाहर निकलते हैं ना तो दुकानों पे भी बैठी मिलती हैं, ऑफिस में भी मिल रही हैं, घर का काम तो संभाल ही रही हैं,
1: और
0: व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रही हैं,
1: घर से ही बैठकर वो अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर रही हैं, घर पर बैठकर कोई बैग बना रही है, कुछ खाना बना रही है, कुछ कहते हैं ना घर को सजाने वाली चीजें बना रही है, तो इसी तरह से घर सजाने के साथ

0: खुद को सजाने संवारने की बात अगर की जाए तो इस तरह के व्यवसाय से जुड़ी आज एक महिला की हम बात करेंगे और फेसबुक पर हमारी सखियों ने देख ही लिया है, फिर भी हम नाम बता देते हैं। आज बात होगी विनीता सिंह के बारे में जो कि एक महिला उद्यमी है और इनके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन पहले और विषय बता देते हैं कि किन पर चर्चा होने वाली है।
1: जी, आज बात करने वाले हैं हम डॉक्टर निशा सिक्वेरा से, लू लगने के जो लक्षण होते हैं और बचाव उसे कैसे किया जाए और किस तरह से ध्यान रखा जाए, तो वो हमें बहुत सारी जानकारियाँ देंगी।
0: इसके अलावा दो खास दिन आज हैं, एक है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जिसे हम परिचारिका दिवस भी कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस भी आज है, इनकी बात भी होगी। और पेड़ पौधों को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, इस पर बात होने वाली है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि बातचीत को यहीं रोकें और पहले एक गीत सुन लें।
1: चलो चलते हैं।

0: चंचल, जो गुलमोहर, ये लाल पीले फूल जब सब तरफ फैले होते हैं, कितने
1: हाँ,
0: सुंदर लगते हैं देखने में।
1: और गर्मियों में खासतौर पर गुलमोहर का पेड़ जो है वो हरा भरा होता है, और जो उसका लाल रंग की जो उसकी पत्तियां होती है ना,
0: जी
1: जब हम गुजरते हैं रास्तों से और जो रास्ते पर चादर सी बिछी हुई होती है, सच में ऐसे
0: उस वक्त
1: लगता
0: ऐसा
1: है।
0: लगता है इसके ऊपर चले नहीं, है ना,
1: और वो
0: लेट
1: गर्मी
0: जाए
1: से, हाँ,
0: बस।
1: गर्मी से राहत दे जाती है। तो भाई ये सुकून तभी नसीब होगा ना जब हम इन पेड़ों की, पौधों की सुरक्षा करेंगे, संरक्षण
0: बिल्कुल
1: करेंगे।
0: सही बात है।
1: इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई का जो दिन है इसे अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में घोषित किया है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ। तो ये वैश्विक स्तर पर इस बात के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके ताकि जो भी छोटे पौधे हैं उनकी रक्षा हम करें, क्योंकि छोटे पौधे जो है ना, यही आगे चलकर हमारी भूख समाप्त करने का जरिया बनते हैं। और पर्यावरण की रक्षा अगर हम करेंगे तो आर्थिक विकास को भी इससे बढ़ावा मिलता है।
0: बिल्कुल, और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम सब जानते हैं कि जब पौधे, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो हम लेते हैं, तो लगभग सभी पेड़ों से ये काम होता है। हम जो भोजन खाते हैं उसका भी करीब 80% पेड़ पौधों से ही हमें मिलता
1: जी
0: है, लेकिन हर साल कीट और बीमारियों के कारण लगभग 40% फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिससे सभी के लिए भोजन और फिर पोषण उपलब्ध करने के प्रयासों में भी रुकावटें आने लग जाती हैं।
1: और हम देख रहे हैं कि जब एक पौधा हम रोपते हैं, जब वो बहुत छोटा होता है, तब उसे सबसे ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय उसने अपनी जड़ें नहीं पकड़ी हैं, वो बहुत नाजुक होता है,
0: जी
1: तो उस वक्त उसे देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। चाहे वो हमने खेत में कोई फसल लगाई है या घर पर कोई पौधा छोटा सा रोपा है, लेकिन उस वक्त उसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, एक छोटे बच्चे की तरह उसकी देखभाल की ज़रूरत
0: बिल्कुल,
1: होती
0: जब
1: है।
0: हम घर में भी लगाते हैं तो हर दिन कैसे जा करके देखते हैं, और सिर्फ एक जो लगाता है घर में गमले में पौधा छोटा सा,
1: जी
0: पूरा घर फिर आके पूछता है ये ठीक से तो है ना,
1: हाँ
0: बढ़िया है ना, पानी डाला, सब पूछते हैं एक दूसरे
1: हाँ
0: से, और कितना बिल्कुल एकदम परिवार का एक हिस्सा बन चुका होता है वो गमला या वो पौधा। तो सब सोचिए, जब सब तरफ से लगे हों, या आपके बागीचे में लगे हों, या आप कहीं बाहर भी कहीं पे किसी ऐसी जगह पर जो कोई सार्वजनिक जगह है जहाँ पे
1: जी
0: आप लगा सकते हों, तो ज़रूर लगाना चाहिए पौधों को, पेड़ के।
1: पता है, जब हम गर्मी में कहीं जाते हैं, कहीं बस स्टॉप पर खड़े हैं, किसी बस का या रेल का इंतज़ार कर रहे हैं, और जब वहाँ हमें कोई छांव नहीं मिलती, तो कई बार यहाँ वहाँ जाकर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, कहीं कोई पेड़ हो तो जिसके नीचे खड़े होकर थोड़ा सुस्ता लिया जाए, कहीं छांव मिल जाए हमें। और कई बार हम अपने वाहन से भी अगर जा रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा छांव में सुस्ता लें।
0: सही बात है।
1: और
0: और कभी कभी तो पता है कैसा होता है कि वो रास्ते की निशानी बन जाता है,
1: हाँ
0: भाई तुम आगे वो रास्ते तक जाओगे ना, बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, बस वहां से उल्टा दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना है ना, कई बार
1: लेकिन
0: ऐसा होता है।
1: ये निशानियाँ बनाने के लिए या उस वो छांव लेने के लिए उन पेड़ों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है दीपा, और इसीलिए ये दिन हम मना रहे हैं, ताकि जो छोटे पौधे हैं उनकी सुरक्षा हो सके, और पौधों की सुरक्षा उनके लिए सीमा नियंत्रण और स्वच्छता की तरह होती है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो खतरनाक कीट हैं और उनमें लगने वाली जो भी बीमारियां हैं, उनको रोकने के लिए उनकी जांच करना समय समय पर और उनकी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। ये सुरक्षा कवच का काम करता है, जिनसे हमें भोजन मिलता है और किसानों का रोज़गार भी सुरक्षित रहता है। कई बार हम देखते हैं खेतों में बहुत सारी टिड्डियाँ घुस जाती हैं जो पूरी पूरी फसल को खा जाती हैं।
0: बिल्कुल, मवेशी घुस जाते हैं तो वो तो बर्बाद कर देते हैं, बिल्कुल है ना। और उस वक्त आप सोचो वो जो किसान है जिसने वो लगाया है पौधा, उसके दिल पर क्या बीतती है, और उनको आर्थिक भी बहुत नुकसान हो जाता है।
1: अरे लेकिन इसके अलावा हमारे पर्यावरण को, प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है, ये जो हम देख रहे हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं, या प्रदूषण बढ़ रहा है,
0: जी
1: जब हम गाड़ियां, वाहन बहुत सारे बढ़ रहे हैं, लेकिन वाहनों से जो निकलने वाला कार्बन है उसे पौधे क्योंकि अपनी तरफ खींच लेते हैं और हमें एकदम फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं,
0: सही के बाहर।
1: ताज़ा सांस लेने के लिए वो जो सुविधाएं हैं वो कम हो रही हैं, हम मशीनों पर धीरे धीरे निर्भर होते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम पेड़ लगाएंगे और उनको संरक्षण भी देंगे, तो ये जो समस्याएं हैं इनसे काफ़ी हद तक हम निजात पा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखो एक वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, अंतराल के बाद आते हैं और फिर इसी बारे में और बात करेंगे।

बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे हम एक बार फिल्म से, ये गीत हमने लिया था और पौधों और पत्तों की इस गीत में बात हो रही थी। ये पेड़ जो हैं ये हमें लू से बचाव में बहुत सहायक होते हैं, और इसी विषय पर डॉक्टर निशा सिक्वेरा से जो बातचीत हमने की है अब वो सुनते हैं।

नमस्कार, सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर निशा सिक्वेरा। आज आप सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं एक चिकित्सा विशेषज्ञ हूं और मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों को स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने में सहायता करना। आज मैं हीट स्ट्रोक या लू के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। गर्मियों के दिनों में अपने देश के कई शहरों में तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। इन दिनों दोपहर के समय बाहर बहुत तेज गर्म हवाएं चलती है। इन गर्म हवाओं को ही लू यानी हीट स्ट्रोक कहते हैं। मजबूत इम्यूनिटी वाले लोग इन गर्म हवाओं को सहन कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इन हवाओं को सहन नहीं कर पाते हैं और इनके संपर्क में आते ही बीमार पड़ जाते हैं। अपने देश में हर साल काफ़ी बड़ी तादाद में लोग लू की चपेट में आ जाते हैं। लू लगने के कारण ये गर्म हवाएं जब अपने शरीर के संपर्क में आती हैं तो शरीर का तापमान बढ़ा देती हैं और इस वजह से कई समस्याएं होने लगती है। ज़्यादा देर तक धूप में काम करना और शरीर में पानी की कमी होना लू लगने के प्रमुख कारण हैं। बच्चे और बूढ़े लोग लू की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। अधिकांश मामलों में लोगों को ये जल्दी पता ही नहीं चल पाता है कि उन्हें लू लग गई है। हालांकि इसका स्टीक अंदाज लू के लक्षणों को देखकर लगाया जा सकता है। इसीलिए हर किसी को लू के लक्षणों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। लू लगने के लक्षण: लू लगने पर सिर में तेज दर्द होना, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होने लगती हैं। शुरुआत में इन लक्षणों की तीव्रता काफ़ी कम होती है, लेकिन समय के साथ साथ

0: ये बढ़ते जाते हैं। लू लगने पर अचानक से तेज बुखार होने लगता है और शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। शरीर में गर्मी बढ़ने के बावजूद लू लगने के दौरान शरीर से पसीना नहीं निकलता है। लू लगने पर उल्टी आना और शरीर में तेज दर्द होना आम बात है। उल्टी होने के कारण शरीर में सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है। कमज़ोर इम्यूनिटी वाले या शारीरिक रूप से कमज़ोर लोग लू लगने से बेहोश भी हो जाते हैं। लू लगने पर क्या करें? लू लगने पर मरीज को तुरंत छायादार जगह पर या ठंडी जगह पर लिटाएं। शरीर को ठंडा रखने के लिए शरीर पर ठंडे पानी का पट्टियाँ लगाएं, घर के खिड़की दरवाजे खोल दें और कूलर या एसी चालू कर दें। अगर मरीज लू लगने से बेहोश हो गए हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। लू से बचने के उपाय, ये सच है कि हर साल लू से कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि अगर गर्मी के मौसम में आप ठीक ढंग से अपना ख्याल रखें और कुछ ज़रूरी सावधानियां बरतें तो लू के प्रकोप से बच सकते हैं। आइए लू से बचने के कुछ प्रमुख उपाय मैं बता देती हूँ। गर्मियों के दिनों में हल्का भोजन करें। गर्मियों के दिनों में कभी भी खाली पेट पर घर से बाहर ना निकले। ज़्यादा देर तक धूप में रहना हो तो छाते का इस्तेमाल करें। अधिक मात्रा में पानी पिए। बाहर जाते समय पानी की बोतल साथ में लेकर चलें। हाइड्रेटेड रहें। प्यास ना लगने पर भी पानी, नारियल पानी और जूस पीते रहें। बाहर निकलने के समय पर टोपी, स्कार्फ या छाते का इस्तेमाल, जैसे मैंने बता दिया अभी, उस इस्तेमाल करें। हल्के और जल्दी पचने वाले भोजन करें। प्याज और दही का सेवन बढ़ाएं। आज हीट स्ट्रोक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आप इस गर्मी में खुद को और अपने परिवार को बचाएं, अच्छे से ध्यान रखें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।
1: अभी हमने सुना डॉक्टर निशा सिक्वेरा से लू से बचने के कई तरीके। तो चलिए अब सुनते हैं गीत।

0: इस गीत के बाद फिर से हम अपनी बातचीत लेकर हाजिर हैं, और हमने शुरुआत में कहा था कि दो खास दिवस आज हैं, तो 12 मई का दिन है, आज है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस, और ये स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है एक जो कि हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, और ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर इस पेशे के प्रभाव को मान्यता देना है, और ये जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें पहुँचाई
1: जी
0: है।
1: चंचल, 1953 में अमेरिकी स्वास्थ्य शिक्षा और कल्याण विभाग की जो प्रतिनिधि थी डोरोथी सदरलैंड, उन्होंने नर्स को सम्मानित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्रस्ताव रखा। 1965 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद यानी कि ICN, इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। हालांकि उस समय ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था। फिर 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के साथ 12 मई को इस दिन यानी आज के दिन इस दिवस को मनाने के रूप में चुना गया, जिससे उनकी विरासत और वैश्विक स्तर पर नर्सिंग पेशे का महत्व और भी पुख्ता हो जाता है।
0: भाई, नर्सों का महत्व ये खास तौर पर वो ज़रूर समझते होंगे जब किसी के घर में कुछ ऐसी अवस्था आई हो, जब उनके परिवारजन अस्पताल में भर्ती रहे होंगे, और जब हमें समय नहीं होता कि हम सारा सारा दिन या रात भर अस्पताल में रुक सकें, तो यही परिचारिकाएं होती हैं जो हमारे परिवारजन का और उस रोगी का बड़ी शिद्दत से ध्यान रखती हैं। और इसी बात को लेते हुए हमारे जो श्रोता साथी हैं वो लिख रहे हैं कि 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के अवसर पर नर्सों के निस्वार्थ समर्पण, उनकी कड़ी मेहनत, स्वास्थ्य सेवा में उनके अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए एक समर्पित दिन है।
1: जी, और एक और संदेश है, कहता है कि नर्स चिकित्सा संबंधी एक विषय है जो मरीज के सेवा भाव के दायित्वों का निर्वहन करते हैं, और आज के दिन ही हर साल की तरह इस साल भी वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। ये दिन नर्सों के हित, परशिक्षा और समर्पण को ही समर्पित है।
0: एक अन्य संदेश में यही बात कही गई है कि इस दिन नर्सों को सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है, और उनका जो अग्रणी योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और अन्य संदेश है जिसमें लिखा गया है कि नर्स के प्रति जो उनका महत्व है, उनकी सेवा का जो भाव है, इस विषय को लेकर जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। अगर नर्स ना हो तो जो लोग हॉस्पिटल में अकेले रहते हैं बीमारी में, उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए नर्सों का जो योगदान है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है।
1: जी बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वक्त हो चला है एक संदेश का, एक अंतराल का।

0: अंतराल के बाद आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर आ चुके हैं।
1: बिल्कुल, मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा
0: और मैं दीपा माहेश्वरी।
1: और अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: चलिए।

0: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीज़ें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल

0: खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। हो सकता है आपको आईवी लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े। डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: भाई देखो चंचल, मौसम कोई भी हो, सुंदरता पे तो किसी भी चीज का कोई जोर नहीं चलता है कि बिल्कुल।
2: और भी हर महिला को सजने संवरने का थोड़ा सा शौक तो होता ही है। वैसे आम दिनों में वो ना भी सजें, लेकिन कुछ खास मौका आता है तो थोड़ा सा श्रृंगार तो बनता भी है।
1: बिल्कुल
2: और आज जिस सफल महिला की हम बात कर रहे हैं, जो एक महिला उद्यमी हैं, वो हैं विनीता सिंह। और इन्होंने शुगर कॉस्मेटिक के संस्थापक हैं, उनकी CEO हैं, और देश विदेश की महत्वाकांक्षी उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत है। हालांकि उनकी असाधारण कहानी, मेकअप की जो जीवंत दुनिया है और ये जो फलता फूलता व्यवसाय है, इसमें तो इनकी प्रसिद्धि बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अपने स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही जो अपनी असाधारण प्रतिभा है उसका प्रदर्शन इन्होंने शुरू कर दिया था।
1: जी, और उनकी इसी असाधारण शैक्षणिक उपलब्धि ने उन्हें प्रतिष्ठित IIT मद्रास में प्रवेश दिलवाया, जहां उन्होंने बैडमिंटन के प्रति अपना जुनून दिखाया और पहचान एक बनाई। फिर कई टूर्नामेंट में वो जाती थी और वहां पे जीत भी उन्होंने हासिल की। बाद में IIM अहमदाबाद में उन्होंने शिक्षा तो की ही, दौड़ में भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया
2: क्या बात है।
1: और अपने प्रयासों के रूप में कई सारे उन्होंने कठिन मैराथनों को भी पूरा किया था। तो ये जो उनके अंदर प्रतिस्पर्धा वाली जो भावना थी और
2: जी
1: सीमाओं को पार करने की जो उनकी इच्छा थी, उनके आने वाले दिनों के उद्यमिता गुणों को स्पष्ट दिखाई दे रहा था सभी को कि
2: बिल्कुल,
1: ये
2: मतलब
1: ऐसे तो सीधे सीधे नहीं चलेगी, कुछ तो जरूर करेगी।
2: बिल्कुल वो सीधे दौड़ लगाएगी और जीत भी हासिल करेगी। और निवेश बैंकिंग में एक बड़े पैकेज के साथ उन्होंने उन्हें एक प्रस्ताव मिला, लेकिन बिजनेस का चुनौती भरा माहौल लगातार उन्हें पुकार रहा था। और उनका जो पहला बिजनेस था, ये एक पृष्ठभूमि जांच पर आधारित उद्यम था, लेकिन ये जब उन्होंने किया तो उनको लगा कि कुछ खास सफलता नहीं मिली उन्हें।
1: जी, लेकिन यहाँ उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फिर एक ब्यूटी सब्सक्रिप्शन सेवा की स्थापना की, जिसे कुछ हद तक तो सफलता मिली, लेकिन ये भी जो उनका असली जो जुनून था वहां से कहीं कुछ मेल नहीं खा रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कहीं तो कुछ अभी बाकी है।
2: तो ये जो शुरुआत में असफलताएं उनको मिल रही थी, लेकिन ये सब चीजें थी ना उनके लिए एक सबक की जैसे रही, जिससे जो भी बाजार किस तरह का होता है या अपनी क्षमताएं किस तरह से उनको बाहर निकालनी चाहिए, ये चीजें जानने में उन्हें बड़ी मदद मिली।
1: जी, और बहुत सारे शोध के बाद विनीता ने ये समझा कि जो भारतीय सौंदर्य बाजार है, क्योंकि हम इंडियंस में अलग अलग त्वचा रंग होते हैं और
2: हाँ
1: अलग अलग टाइप्स होते हैं स्किन के, त्वचा के, तो उसके पसंद के अनुरूप उत्पादों की यहाँ कमी है, जो कि किफ़ायती भी हो। और फिर बस क्या था, 2015 में उन्होंने अपने अनुभव और एक दृढ़ दृष्टिकोण के साथ, विनीता ने अपने पति कौशिक मुखर्जी के साथ मिलकर एक कॉस्मेटिक ब्रांड की शुरुआत की।
2: और ये जो उन्होंने अपना ब्रांड बनाया, काफ़ी किफ़ायती दामों पर और बहुत आकर्षक और उच्च गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधन वो लेकर आई, बाजार में उन्होंने पेश किए। और ये जो ब्रांड था, ये भारतीय युवा महिलाओं के लिए उनमें बिल्कुल लोकप्रिय हो गया और डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण ने तेज़ी से इसको अपना ग्राहक बना लिया।
1: जी, कंपनी का एक उत्पाद है चंचल, चटक और अलग अलग रंगों का काजल। ये
2: हाँ
1: बहुत प्रसिद्ध हुआ लड़कियों में खास तौर पे, और देखते देखते शुगर कंपनी के कई उत्पाद ई प्लेटफॉर्म पर प्रसिद्ध होने लगे।
2: और वो ऐसा मानती है कि हर महिला को सुंदर दिखने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार तक सारे सौंदर्य प्रसाधन पहुंच सकने के लिए उनका जो बजट है ना, कई बार वो उनको अलाउ नहीं करता। तो कम बजट में किस तरह से उनको ये सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध करवाए जाए, उनका ब्रांड इसी चीज़ पर काम कर रहा है।
1: और विनीता ने सफल होने के साथ साथ अपनी महिला सशक्तिकरण वाली प्रतिबद्धता का भी ध्यान रखा है। कंपनी में लगभग 75% कर्मचारी महिलाएं ही हैं और उनके नेतृत्व में शुगर कंपनी बदलते रुझान और उपभोक्ताओं की पसंद के अनुरूप लगातार अलग अलग नवाचार करती चली आ रही है।
2: और वनिता ने अपने करियर को एक नया मोड़ तब दिया जब उन्होंने एक भारतीय रियलिटी शो में एक निवेशक और जज के रूप में अपनी भूमिका निभाई, और इस तरह से कहते ना कि वो आगे बढ़ती रहीं और

0: बहुत सुंदर गीत सुनवाया दीपा तुमने, और मुझे लगता है हमारे जो सुनने वाले हैं ना उन्हें भी ये गाना पसंद आया होगा। और अब हम बात करें कुछ मुहावरों की, कुछ कहावतों की, और हमारे जो सुनने वाले हैं भाई वो भी इस पर बहुत सारे कमेंट्स हमें लिखकर भेज रहे हैं। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुहावरे हमारे दैनिक जीवन में विनोद भी कराते हैं और मोटिवेशन भी हमें देते हैं। आम बोलचाल की कुछ बातों के बीच मुहावरे जोड़ देने से उस बातचीत में ताजगी आ जाती है, दम आ जाता है। तमाम मुहावरों में 100 सुनार की एक लोहार की, ये हम अक्सर सुनते हैं। जो किसी ना किसी काम में बहुत सारा प्रयास करते असफल सा लगने लगता है, लेकिन धमाके से उस काम के पूरा होने पर इस बात को अक्सर कहा जाता है।
1: बिल्कुल। एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि ये मुहावरा सुनार के गहने बनाने की शैली और हल्की हथौड़ी के सामने लोहार के खेत या अन्य बड़े औजार बनाने वाले भारी भरकम हथौड़े के उपयोग की तुलना की गई है। मतलब कमजोर या छोटे प्रयासों के मुकाबले सटीक और करारा प्रहार अधिक प्रभावशाली होता है और कारगर साबित होता है। अगर कोई काम नहीं करने के 100 बहाने बना ले, लेकिन जब बॉस सामने आते हैं तब सच सामने आ ही जाता है।
0: क्या बात है, बिल्कुल मिलता जुलता एक और संदेश है। 100 सुनार की एक लोहार की का मतलब होता है कमजोर या छोटे प्रयासों की लंबी श्रृंखला की तुलना में एक शक्तिशाली सटीक प्रयास अधिक प्रभावशाली होता है। ये कहावत गुणवत्ता और मजबूती की मात्रा को बेहतरी से बताती है।
1: जी, और 100 सोनार की एक लोहार की, यह लोकोक्ति मुहावरे हमारे जीवन से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम अक्सर ही बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया करते हैं। उन्हीं में से एक ये मुहावरा अपने प्रयासों के तौर तरीकों के बारे में बताता है कि सुनार आभूषण बनाने के 100 प्रयासों से अच्छा लोहार का एक लेकिन अति उत्तम महत्वपूर्ण प्रयास सफल हो जाता है। उसके एक सटीक प्रयास से सामग्री के टुकड़े हो जाया करते हैं। इस दृष्टिकोण से यह लोकोक्ति इस अर्थ में हमें सटीक प्रहार के तौर तरीकों पर एक सीख देती है।
0: क्या बात है। इसी तरह से एक अन्य संदेश है कि ये मुहावरा हमें बताता है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति या कार्य 100 साधारण लोगों या कार्यों से अधिक श्रेष्ठ होता है। जीवन में हमें अपनी ऊर्जा को बखेरने की बजाय उसे केंद्रित करके बड़ा परिणाम लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बारे में कुछ कहानियाँ भी प्रचलित हैं, और एक प्रसंग इस तरह से भी कुछ आता है कि महाभारत के समय जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध चल रहा था तो सारे कौरव मिलकर पांडवों को पछाड़ रहे थे, और तब भीम ने अपनी गदा उठाई और एक ही साथ बहुत सारे कौरव यानी कि जो 100 कौरव थे उनको धाराशायी कर दिया, और 100 कौरवों के बराबर शक्ति भीम के पास अकेले ही थी। इसलिए उस समय से इस मुहावरे को प्रयोग में लाया जाने लगा, कहा जाने लगा कि 100 सुनार की एक लोहार की। इसी तरह से कुछ कथाएं भी इसको लेकर प्रचलित हैं।
1: तो गीत सुने अबे।
0: जी

0: दीपा, याद है गर्मियों की छुट्टियों के दिन?
1: बिल्कुल याद है। और देखो ना, नानी के घर जाते थे, खूब सारे आम खाते थे, और शाम को फिर हमारे नाना जी लेके जाते थे हमें गार्डन।
0: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। मुझे याद है जब हम गर्मियों की छुट्टियों में ददिहाल जाया करते थे। हमारे पिताजी के चार भाई थे जो कि सब उस वक्त वहाँ जमा हो जाया करते थे, और कुल मिलाकर हम 15 बच्चे थे, जो कि अलग ही मज़ा आता था। हमारी चाचियाँ और मम्मी सब मिलकर रसोई संभालते थे। हम सब बच्चे दादी के ही साथ हमारा आना जाना होता था। हमारा बगीचा भी बहुत बड़ा है, जिसमें दादाजी ने बहुत बड़े बड़े फलदार पेड़ लगा रखे हैं। और अब तो ये सिर्फ यादें ही रह गई हैं, क्योंकि सब भाई बहन बड़े हो गए और सब अपने अपने काम में लग गए हैं। तो सच बात है, ये जो बचपन के दिन होते हैं ना, ये यादें बनकर रह जाते हैं। और जो नानी दादी के घर जाने के, या बुआ मौसी के घर जाने के, और वहाँ इकट्ठे होकर खूब हंगामा करने के, मस्ती करने के, यादें बनाने के जो दिन थे ना, वो अब हमारी खूबसूरत यादों में हैं, सिर्फ एल्बम्स में वो दिन हमारे पास रह गए हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही चंचल। देखो, एक संदेश ये कहता है कि गर्मियों में आना जाना तो लगा ही रहता है बच्चों और परिवार का, कोई कोई नानी के घर, कोई दादी के घर। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही कही आप लोगों ने कि जो मेहमान होते हैं उनको भी हाथ बटाना चाहिए। इतनी गर्मी होती है, अगर वो लोग हाथ नहीं बटाएंगे तो एक बड़े काम का बोझ आ जाएगा। तो बिल्कुल सही कहा आप, अगर जा रहे हैं किसी के घर तो हाथ ज़रूर बटाइए।
0: इसके अलावा बच्चों को भी थोड़ा सा हम व्यस्त रख सकते हैं, उन्हें बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, क्योंकि दोपहर में वो यहाँ वहाँ ना भटकें, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है, गर्मी बहुत तेज़ होती है। और जब हम बच्चों को कहते हैं ना कि दोपहर में थोड़ा सो जाओ, तो वो सोना भी पसंद नहीं करते। तो उन्हें कोई एक्टिविटी करने के लिए आप दे सकते हैं, कुछ भी उन्हें मतलब कशीदाकारी करने को दे दीजिए, उनको सिलाई कढ़ाई सिखा सकते हैं उस समय।
1: वो भी, और अगर वो बैठना नहीं चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं चंचल कि आप, वो कहते हैं ना इंडोर ट्रेजर हंट, जब
0: हाँ
1: उनको ऐसे बड़े बड़े से नाम बता दो
0: हाँ
1: ना तो बच्चे एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ भी एक चीज़

0: को आप छुपा दीजिए कहीं, और फिर उनको बोलना है कि अगले आधे घंटे में हमें ये चीज़ ढूंढ कर देनी है। तो सच में उन्हें इतना मज़ा आता है, सारे के सारे लग जाते हैं। हाँ, छुपाना ऐसी जगह है जहाँ उन्हें तुरंत उनके हाथ में ना वो आए।
1: और घर में अगर कोई ऐसा हो जिसे किस्से कहानियाँ सुनाना बड़े मज़े से आता हो, तो बच्चे उसे घेरे बैठे रहते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे एक मामा थे, जो कोई मतलब पौराणिक कहानियाँ नहीं होती थी, बस वो मनगढ़ंत वो कहानी बनाए सुनाए जाते थे हमें, और वो कहानियाँ उनकी चार चार दिन पाँच पाँच दिन ख़त्म ही नहीं होती थी। हम इंतज़ार करते थे कि ये इसके आगे क्या हुआ होगा, और वो मन से कुछ भी जोड़कर वो कहानी बनाकर सुनाते थे। तो इस तरह से बच्चों को आप व्यस्त रख सकते हैं। और या फिर जब महिलाएं किचन में काम कर रही होती हैं, तो कोई छोटे मोटे काम बच्चों को दीजिए, तो उन्हें घर में काम में हाथ कैसे बटाया जाता है इसकी आदत भी होगी,
0: वो
1: और
0: जो
1: महिलाओं को
0: पुरानी
1: मदद भी
0: छुरी जो
1: मिलेगी।
0: होती है ना घर में, पुरानी छुरी जिसमें ज़्यादा तेज़ धार नहीं होती, वो हम उनको दे सकते हैं। उनको भिंडी काटने के लिए दीजिए,
1: जी
0: आलू काटने के लिए दीजिए, बहुत मज़ा आता है उनको। वो आड़े टेढ़े तिरछे तरीके से काटते हैं, लेकिन जब हम उनको बना के उनको बताते हैं ना, देखो ये
1: जी
0: आपकी कटी हुई सब्जी है, तो बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, हमने काटी, वो सब
1: जी
0: बताते हैं, ये वाले देखो, ये वाला शेप का मेरा है, ये उसका है, इस तरह से बड़े खेल खेलते हैं वो लोग।
1: आप छत का छिड़काव करने को उन्हें कहिए, आंगन में छिड़काव करने कहिए, कूलर में पानी भरने को कहिए, तो छोटे मोटे काम बता सकते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ हरियाणा में 1 जून से बच्चों की छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं, और इन छुट्टियों का हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि हमें जाना होता है अपने नाना और मामा के घर पर।
0: हाँ बिल्कुल। और एक और संदेश कह रहा है कि भाई बच्चों की छुट्टियों में तो सच में हम सब माताओं पर तो बड़े भारी पड़ जाते हैं ये दिन। और अभी हमारे बच्चों की छुट्टियां शुरू नहीं हुई हैं, मई के अंत में होने वाली है। रसोई और गर्मी का दोनों का जो है ये जुड़ाव बिल्कुल ऐसा है, उससे उसे तो हम अलग कर ही नहीं सकते, और हम सभी महिलाओं को इसकी कुछ ज़्यादा ही हमें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ये लगता है कि गर्मी से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप बेशक बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बच्चों को बना के
1: जी
0: खिलाती होंगी। और ऐसे ही अगर सब महिलाएं सोचने लगें तो फिर क्या ही बात है। तो देखो, उनके बच्चों के जो आप बात कर रही थी ना कि बच्चों से आप कुछ उनसे खाने की तैयारी करा सकते
1: जी
0: हैं, किचन गार्डन भी लगवा सकते
1: हाँ
0: हैं, उनके हाथ की उगी हुई जब चीज़ें होंगी ना, तो बड़े वो भी बड़े चाव से देखते हैं कि कैसे
1: और
0: बड़ा हो
1: इसी
0: रहा है।
1: तरह से वो पौधों का संरक्षण करना भी सीख जाएंगे। जब वो खुद पौधा लगाएंगे तो उसे किस तरह से बचाना है, वो बढ़ते हुए हर दिन देखेंगे उसको, तो उन्हें भी एक अलग आनंद का अनुभव होगा। और गानों में भी कहीं ना कहीं आनंद होता है, तो सुन ले गाना।
0: चलिए।

0: कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा और बस इतना ही समय है कि सखियों से ले लें हम इजाजत।
1: आप सभी को दीपा माहेश्वरी
0: और चंचल वर्मा का
1: नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं, मैं उनका परिचय कराती हूँ, लेकिन उनके बारे में मैं ये कहूँगी कि वो फिल्म लाइन में स्क्रीन पर एक बहुत ही बुरे इंसान हैं, बहुत बहुत बुरे इंसान हैं। लेकिन देखिए कितनी खुशनुमा हंसी है उनकी। मेरे सामने बैठे हैं बहुत ही उम्दा इंसान हैं और उनका नाम है सदाशिव अमरापुरकर। सदाशिव जी, मैं खुद अपनी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से और विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की तरफ से आपका यहाँ स्टूडियो में स्वागत करती हूँ और उन सब की तरफ से आपको कहती हूँ कि नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार।
0: और अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
1: अच्छा।
0: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
1: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
0: तो आप अपने बचपन की ही याद ताज़ा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
1: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर
0: जी,
1: ना वो शहर है ना वो देहात था। तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारी पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना।

0: हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे, लेकिन शिक्षा जरूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50% हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में,
1: शरारतों में,
0: हर चीज में गुजारते थे और हर मौसम का मजा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियाँ खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
1: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
0: सब कुछ होता था सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, तो छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहाँ लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई थी। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ, और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा यह इंसान, यह आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी, उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं, और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गाँव ने मेरे ऊपर किया है।
1: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द गिर्द जाते रहे हैं?
0: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांद बीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांद बीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी उस जमाने के रास्ते वहां पर है
1: जी।
0: और क्रिएटिव है
1: जी।
0: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
1: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
0: जी,
1: है ना सदाशिव जी। इसी बात पे आपकी पसंद का कोई एक गीत हम क्यों ना सुन लें?
0: जी जी जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये।
0: हाँ, और उसके बोल है मेरे दिल में है एक बात।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई, और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो हमारा वर्ग है उनको लेकर, कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले। और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाज़ारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखें, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
1: और जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
0: जी।
1: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे और इसकी कॉम्पिटिशन थी और उस ज़माने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
0: जी।
1: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
0: उस समय।
1: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
0: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
1: नहीं। नाटक करता रहा
0: जी,
1: धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आई, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते

0: रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
1: जी।
0: हम मतलब हवा में दौड़ते थे।
1: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे।
0: जी जी जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफ़ी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-20 25-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
1: जी।
0: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी हैं सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी
1: जी।
0: प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग।
1: तो वो पलट के नहीं देखती थी
0: उस वक्त, उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया
1: जी।
0: हमारे अंदर हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी।
1: तो आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
0: जी।

0: चलिया।
1: लेकिन आप आगे ये बताइए ना कि थिएटर की जो बात है वो वहां से आपकी शुरुआत हो गई
2: जी।
1: और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुखबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
2: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूँगा, प्रोफेसर बनूँगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूँगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था, इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
1: जी।
2: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था, तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो मैं, मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूँ तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए और थिएटर करने लगा। तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
1: वाह।
2: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
1: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
2: जी, और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
2: नहीं नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
1: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
2: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी नया होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे,
1: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे जी, होता जी, है हेलो फरमाइश।
2: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाएं, किसी होटल में चाय पीने जाएं, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो ले।
1: लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है, तो लेकिन आपने

0: तो दी वो नौकरी
1: जी, ले छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
0: पुरानी
1: बहुत पुरानी,
0: गुरुदत्त और
1: गुरुदत्त जी
0: जी।
1: की। और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
0: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत बहुत अच्छा लगा?
1: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
0: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा। वो
1: जी
0: प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
1: जी जी
0: जी।

0: पूना पहुंच गए, पूना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, लेकिन पूना से बंबई की तरफ कब आए और कैसे आना हुआ था?
1: नहीं, पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कंपटीशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्ने विकाई चेत। वो नाटक उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को। और नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक जो परीक्षक थे उनका नाम था भिकुपई आंगले, उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, आज भी हैं
0: जी,
1: उन्होंने कहा कि आप आइए। और मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं, सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूँगा लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपके एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी उनका नाम शांताबाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है।
0: उन्होंने मेरी अनंत जोक कर रहे
1: जी,
0: हैं
1: जी, जी। उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं, मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, बड़ा नर्वस हुआ। फिर दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया, बोले
0: उसी रोल के लिए
1: नहीं,
0: हाँ।
1: हमारे पास एक नाटक है, जयवंत दलवी ने लिखा है, नाम है बैरिस्टर,
0: वाह, हाँ।
1: विजया मेहता जी डायरेक्ट करने वाली है, आप अच्छे एक्टर हो तो चलो हम विजया जी के पास जाते हैं। मुझे उनके घर ले गए लेकिन वो मिली नहीं, फिर दूसरे दिन हमको गोवा हिंदू एसोसिएशन के ऑफिस में मिली और उन्होंने मुझे कह दिया कि देखो सदाशिव, मैंने इस रोल के लिए पहले ही चुन लिया है एक्टर को, और विक्रम गोखले वो काम करने वाला है, तो इस बार हम कुछ नहीं कर सकते। हम फिर मैं वापस आया और दो अच्छे नाटक मेरे हाथ से चले गए, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी, दिल में एक आवाज़ बज रही थी, आँखों में एक सपना था कि कुछ कोई बात नहीं और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फ़ोन मुझे आया, दुर्वांची जुड़ी ये एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आइए
0: जी।
1: मैं तीसरी बार बम्बई आया, तीसरी बार मुंबई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया था।
0: अरे वाह।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में मेहमान सितारे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने।
1: और नीचे छोटी छोटी दुकानें थी और वहाँ गाने बज रहे थे, आपके बरस भेज बंदिनी का गाना जो आज भी मुझे याद है।
0: अच्छा, इसे सुनेंगे हम अभी?
1: जी
0: जरूर सुनेंगे।

0: उसके बाद मैं ऊपर गया, दारवकर जी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बिठाया, वो बातें करने लगे और वो उनसे कहने लगे कि मैंने जो आपको कहा था वो नगर में रहता है वो आदमी सदाशिव, उनको लेकर आओ ना, आप किसी जवान लड़के को लाएंगे तो कैसा होगा, वो तो प्रोफेसर का रोल है। तो उन्होंने कहा कि सर ये वही है सदाशिव अमरा प्रकर जी। तो वो दो मिनट तक मुझे घूरते रहे, बोले आपने वो मास्टर का रोल किया था उस नाटक में और आप तो बूढ़े लग रहे थे उसमें और आप तो इतने जवान हैं, ये कैसे हुआ। तो मैंने मन में कहा ये दाद है या क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं वही हूँ। अरे बाप रे, फिर उन्होंने जो मेरी तारीफ की है, बहुत तारीफ की। फिर मुझे कहा कि आप ही इस रोल के लिए फिट हैं, बराबर हैं, आप ये स्क्रिप्ट, उस वक्त वो परदेशी थे, उनका ही वो स्क्रिप्ट था, अभी मुझे उस नाटक का नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ मैंने, मुझे याद आया, सत्यम शिवम सुंदरम
1: जी।
0: और मैं स्क्रिप्ट लेकर घर आया, गावाया, याद करने लगा, प्रोफेसर के डायलॉग याद करने लगा। एक महीने के बाद मुहूर्त पे मैं वापस गया तो दारवेकर जी मुझे देखकर कहने लगे आइए आइए बैठिए, लेकिन इस वक्त वो मेरे से बात करने से झिझक रहे थे। और लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि देखो भाई, हमने आपको वो रोल तो दिया था, लेकिन अभी भी एक सीनियर प्रोफेसर कमलाकर सोनटक के, जो औरंगाबाद से, वो जो है उनकी एक्टिंग की स्कूल है वहाँ से इस्तीफा देकर आए हैं और वो अब ये रोल करेंगे। अब ये तीसरी बात जब मेरे साथ हादसा हुआ तो मैंने कहा देखो भाई, उसके पहले घर में मेरी हमेशा पिताजी से झगड़े चलते थे, बोलते थे ये नाटक नाटक छोड़ दे, ये अपना लाइफ नहीं है। और मैं कहता था नहीं, मुझे नाटक ही करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ।
1: तो आप करते भी नहीं थे उस समय कुछ?
0: कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि नाटक के अलावा मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इस बार जब फाइनली मुझे पिताजी ने बुलाया, तो पिताजी को मैं मिलने गया, तो पिताजी ने कहा अगर तेरे जीवन में यही ट्रेजेडी लिखी है तो जाओ करो। और मैं आया था, बैग भरकर आया था, रिहर्सल करने आया था, दोबारा मैं नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? बोले क्या करे, उनका नाम बड़ा है, ये है वो है, उनको लेते हैं। मैंने कहा नहीं, इसमें कोई और रोल हो तो मुझे दे दो। और मैं उसमें एक डबल रोल करता था, एक गुंडे का रोल करता था एक, और एक लड़के का रोल करता था, वो दो रोल मैंने, और इस तरह मेरी व्यावसायिक नाटक में पहली बार एंट्री हुई
1: जी।
0: उसके बाद मैंने केंकरे जी के साथ काम किया और मेरे हाथ में एक नाटक था, मेरे दोस्त ने लिखा हुआ यात्रिक, वो यात्रिक नाटक मैं छबिलदास में करना चाहता था और इसी वजह से मेरी INT इंडियन नेशनल थिएटर में पहचान हुई और उनकी तरफ से

0: मैंने पहली बार डायरेक्शन की यात्रिक की
1: जी।
0: उसके बाद मैंने छिन्न नाटक किया जिसमें स्मिता पाटिल ने काम किया था, आशा लता ने काम किया था, और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया। तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए हैं, हैंड्सअप नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी, और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्ध सत्य
1: जी।
0: और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई, वो मेरा हैंड्सअप नाटक देखने आए, और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था, और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा, देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, 3 दिन का काम है, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी,
1: अर्ध सत्य का रामा शेट्टी।
0: और मैं नर्वस हो गया, मैंने कहा क्या यार, इतनी बढ़िया एक्टिंग मैंने की इंस्पेक्टर की, और ये कौन से शेट्टी फिट्टी का रोल दे रहे, 2.5-3 सीन का है, हमें पसंद नहीं यार। तेंदुलकर जी को पूछा, मैंने कहा ये क्या रोल है, बोले छोटा है अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, 2-2.5 सीन थे, लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था
1: जी।
0: और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था। मैंने कहा चलो एक एक्सपीरियंस होगा। 2-2.5 दिन काम किया, उसको भूल गया, मेरा नाटक चलता था,
1: भूल भी गया
0: क्योंकि बाद में 6 महीने में मैं भूल गया कि मैंने किसी फिल्म में काम भी किया,
1: क्योंकि आपके अर्धसत्य के रामा शेट्टी को लोग आज भी याद करते हैं
0: जी, जी।
1: और मैं तो कहूं कि एक विलन के लिए एक नया चेहरा आपने उस समय दिया, और कुछ विलन की तरफ देखने का लोगों का नजरिया भी उसी भूमिका से बदल गया और आप भूल गए।
0: जी जी, मैं सचमुच मैं भूल गया, क्योंकि मैं इतना नाटक में व्यस्त था कि मुझे मालूम भी नहीं था। और उसके बाद मैं नाटक ख़त्म हुआ, मैं कुछ काम के लिए गांव गया, और उस वक्त मुझे वहां पे फ़ोन आया कि आपका पिक्चर का प्रीमियर है, आप आइए, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने पिताजी को कहा कि मेरे प्रीमियर शो है, मैंने एक फिल्म में काम किया है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, अच्छा अभी फिल्म भी करने लगे, वहाँ भी नाचने लगे, कमर हिलाने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, अच्छा रोल है। नहीं नहीं बोले, अभी इधर ही रहो, उधर जाने की ज़रूरत नहीं, अभी कोई आपका मतलब नाटक बिटक नहीं है। मैं वहीं रह गया,
1: प्रीमियर में नहीं गया,
0: प्रीमियर में नहीं जा सका। बात यह हुई कि बड़ा अफसोस लगता था और उदासी छाई हुई थी, और उस वक्त मैंने फिर गुरुदत्त की एक फिल्म देखी, कागज़ के फूल, और उसमें का वो जो गाना है वो मुझे आज भी बहुत याद आता है।

0: हूँ।
1: वाकई रामा शेट्टी को लोग नहीं भूल पाए हैं आज भी। और उसके बाद जो है आपकी कई फिल्में आई, जैसे आखिरी रास्ता में जो आपने पॉलिटिशियन चतुर्वेदी का रोल किया, वो भी मुझे वो पूरा सीन ऐसा देख के लगता था कि अभी जाके इस आदमी का गला घूम दूं, ये जयाप्रदा कुछ नहीं कर पा रही है, हम जाके कुछ इसका कर डालें। और मैं समझती हूँ कि यही आपका सक्सेस है, यही एक बहुत बड़ा।
0: हाँ, वो उस फिल्म में एक बहुत मजा हुई थी कि अमिताभ बच्चन जी उसमें थे, जयप्रदा थी, श्रीदेवी थी, और उसके डायरेक्टर थे के भाग्य राजा, जो वहाँ के बहुत बड़े डायरेक्टर और एक्टर भी थे, हीरो भी हैं। और उनको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी। तो कैसे, मतलब उनसे बातचीत कैसे।

0: श्रोताओं नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं, हमारी ये सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: खास खबरें, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और AI संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ आज भारत की ओर देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 के अवसर पर सैन्य नर्सिंग सेवा की अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल लिसाम्मा पीवी ने सैन्य नर्सिंग सेवा के अधिकारियों को बधाई दी। मेजर लिसाम्मा ने अथक परिश्रम करते हुए निरंतर सेवा करने और अत्यंत करुणा और सहानुभूति के साथ रोगियों की देखभाल करने के लिए उनकी सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की ओर थीम पर 21 जून तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्वाचन के लिए आज पूरे प्रदेश में एक साथ मतदान हो रहा है। भोपाल में जिला न्यायालय परिसर में शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तक इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में लू का असर रहेगा और भोपाल, इंदौर समेत 49 जिलों में पारा 43 से 44 डिग्री के बीच बना रहेगा। और IPL मैच शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवा वाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

हर मुश्किल आसान हो जाती है जब इरादों में जान होती है। वक्त चाहे कितना भी सख्त हो, हौसला अगर पक्का हो तो रास्ता भी अपना बनता है, क्योंकि जो अपनी सोच बदल देता है वो अपनी दुनिया बदल देता है। दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में, जहाँ आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सान्या आचार्य। दोस्तों, गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, आशा करते हैं कि आप इस भीषण गर्मी में अपना ध्यान रख रहे होंगे। पानी पीजिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि धूप में बाहर ना जाएं, भीषण गर्मी से बचें और अपना ध्यान रखें। दोस्तों, आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के बारे में। चर्चा करेंगे नई दिशा, वैश्विक आतंकवाद की स्थिति, नक्सलवाद में गिरावट और विकास की नई राह पर, और साथ ही साथ हरित आदतें कैसे हम युवाओं की नई पहचान बन रही हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का पहला गीत धुरंधर से।

दोस्तों धुरंधर से अभी आपने ये गीत सुना, संगीतकार शाश्वत सचदेव और रोशन और गीतकार इरशाद कामिल और साहिल लुधियानवी। आप सभी सुन रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सान्या आचार्य। दोस्तों पौधे पृथ्वी पर जीवन का आधार हैं। हम जो हवा लेते हैं उसका 80% ऑक्सीजन पौधों से आता है और हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का 90% हिस्सा वनस्पतियों पर निर्भर करता है। पौधों के इसी महत्व को समझते हुए और उनके स्वास्थ्य के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल आज ही के दिन यानी कि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि पौधों का स्वास्थ्य सीधे तौर पर मानव स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और पर्यावरण की स्थिरता से जुड़ा है। बात करें चुनौतियों की तो जलवायु परिवर्तन, बीमारियां, जैव विविधता में बदलाव से ये सब चुनौतियां हम सभी देख रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण आज एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, इसीलिए आज के दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हर साल इसकी कोई ना कोई थीम होती है और इस साल की थीम है पादप स्वास्थ्य, सुरक्षित व्यापार और डिजिटल नवाचार, प्लांट हेल्थ, सेफ ट्रेड एंड डिजिटल इनोवेशन। एक छोटी सी कविता से इस थीम को और बेहतर समझा जा सकता है। जड़ सुरक्षित तो जग सुरक्षित, हवा की खुशबू मिट्टी का मान, पौधों में बसती है सबकी जान, पर आज खामोश खड़ी है हरियाली, बीमारियों ने चुराई है इसकी लाली, जो बीच सरहद पार से आते हैं संग अपने अनचाहे दुश्मन लाते हैं। सुरक्षित व्यापार का अब संकल्प ले हम, फसलों की आंखों की आंखों में ना हो नम, अब हाथ थामेंगे नवाचार और विज्ञान का, रास्ता खुलेगा तरक्की और मुस्कान का, डिजिटल नजर से सब फसलें पहचानी जाएंगी, बीमारी आने से पहले ही हार मान जाएगी, सिर्फ एक दिन नहीं ये हर पल का है वादा, पेड़ लगाएंगे हम जरूरत से भी ज्यादा, पेड़ लगाएंगे हम जरूरत से भी ज्यादा। दोस्तों 2026 का ये पैगाम याद रखना है कि पादप स्वास्थ्य रहेगा तो ही हम अपना जीवन सफल बनाएंगे। पौधे बोल नहीं सकते लेकिन उनकी खामोशी में ही हमारा भविष्य छिपा है। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि एक वादा है कि हम अपनी धरती को हरा भरा रखेंगे, क्योंकि अगर जड़ सुरक्षित तो जग सुरक्षित। इसी के साथ आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का अगला गीत केदारनाथ से अरिजीत सिंह और निकिता गानी की आवाजों में।

आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, जिसका शीर्षक है नई दिशा, वैश्विक आतंकवाद की स्थिति, नक्सलवाद में गिरावट और विकास की नई राह, और उन प्रयासों की जो हमारे आदिवासी और दूर दराज क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। भारत में सकारात्मक बदलाव, नक्सलवाद में गिरावट। अब अगर हम भारत की ओर देखें तो एक बहुत ही सकारात्मक तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। एक समय था जब नक्सलवाद देश के कई हिस्सों में गंभीर चुनौती बना हुआ था। ये बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे वर्षों की रणनीति, सुरक्षा बलों की कड़ी मेहनत और सरकार की विकास उन्मुख नीतियां हैं। आत्मसमर्पण हिंसा से विश्वास की ओर,

इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू है आत्मसमर्पण। हजारों नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया है। सरकार ने उन्हें पुनर्वास, रोजगार और सम्मानजनक जीवन का अवसर दिया है। ये दर्शाता है कि जब अवसर और विश्वास मिलता है तो बदलाव संभव है। विकास की नई किरण। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब तेजी से विकास हो रहा है। नई सड़कों और पुलों का निर्माण हो रहा है, जिससे गांव शहर की दूरी कम हो रही है। स्कूल और अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही हैं। युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम और रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। इन सभी प्रयासों से इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर लगातार सुधर रहा है। पुनर्वास और सशक्तिकरण का एक नई शुरुआत। सरकार की पुनर्वास योजनाओं के तहत पूर्व नक्सलियों को घर और जमीन दी जा रही है, उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इससे न केवल उनका जीवन बदल रहा है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक माहौल बन रहा है। आम नागरिक की भूमिका। साथियों, किसी भी समाज में स्थायी शांति केवल सरकार या सुरक्षा बलों के प्रयासों से नहीं आती, उसमें आम नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। हमें चाहिए कि हम अफवाहों से दूर रहें, अपने आसपास जागरूकता फैलाएं, युवाओं को शिक्षा और सकारात्मक गतिविधियों से की ओर प्रेरित करें। आज की चर्चा ये स्पष्ट है कि जहां एक और दुनिया के कुछ हिस्सों में आतंकवाद अभी भी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है, वहीं भारत में नक्सलवाद जैसी समस्याओं पर काबू पाया जा रहा है। ये बदलाव हमें उम्मीद देता है कि सही दिशा, मजबूत इच्छा शक्ति और सामूहिक प्रयासों से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और विकसित समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लक्ष्य से।

दोस्तों, शंकर महादेवन की आवाज़ में भी आपने गीत सुना लक्ष्य से। और अब हम बात करने वाले हैं हरित आदतें। जब युवा इन आदतों को अपनाते हैं तो वे समाज के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उभरते हैं। आज की युवा पीढ़ी यह समझती है कि क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव उनके भविष्य पर पड़ेगा। इसीलिए वो सिर्फ ये सारी चीज़ें पढ़ते नहीं हैं बल्कि अपने जीवन में उपयोग भी करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इको फ्रेंडली चीज़ों का इस्तेमाल करना, सुरक्षित भोजन, प्राकृतिक खेती और आहार का, ये सब युवा ध्यान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, युवाओं ने अपनी कूल दिखने की परिभाषा को बदल दिया है। प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह पेपर स्ट्रॉ, स्टील स्ट्रॉ का उपयोग करते हैं। कपड़े के बने बैग्स का यूज़ करना, शहर में मिट्टी के घरों को बढ़ावा देना, ये सब युवा सोशल मीडिया से देखते हैं। और आजकल सस्टेनेबल लिविंग एक ट्रेंड भी बन चुका है, काफी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये डिजिटल क्रांति हरित आदतों को घर घर तक पहुंचा रही है। हरित आदतें युवाओं की एक ऐसी नई पहचान है जो ये दर्शाती है कि वे आने वाली पीढ़ी के प्रति कितने गंभीर हैं। जब एक युवा हाथ में कपड़े का बैग लेकर निकलता है या पौधारोपण की पहल करता है तो वह केवल पर्यावरण नहीं बचा रहा होता बल्कि एक नए समृद्ध और सुरक्षित भविष्य की नींव रख रहा होता है। छोटे बदलाव ही आगे जाके एक बड़े बदलाव लेकर आएंगे। हमारी आदतें ही हमारा भविष्य तय करेंगी। अब वक्त हो चला है महत्वपूर्ण रोजगार सूचना का। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने असिस्टेंट लोको पायलट के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। पद की संख्या है 11127। आवेदन देने की अंतिम तिथि है 14 जून 2026। अधिक जानकारी आप rrbapply.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं या ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर भी। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: कवि श्री राग तेलंग।
9: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्व होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
5: पुलिस?
3: मिस सीमा
5: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है।

0: रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों, लेकिन मैं
0: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
0: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो।

मीडियो में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। पहले आपको सुनवा रहे हैं फिल्म उम्मीद का ये गीत, मोहम्मद रफी की आवाज में, गीतकार शकील बदायनी, संगीतकार रवि।

संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो में गाओ।

अभी आपने फिल्म मेकअप सिड का ये गीत सुना शंकर महादेवन की आवाज में, संगीतकार थे शंकर एहसान लॉय। इससे पहले जो गीत आपको सुनवाया था उसे हमने लिया था फिल्म अजनबी से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन। और इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6 बजे सुनिएगा एनसी ईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग लोक संगीत। 6:30 पर कलाकार होंगे रविकांत जैन। रात 9:30 पर फोन इन कार्यक्रम होगा, प्रस्तुति सावनी राजू की होगी। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन सुनिएगा रात 10:30 पर। सुर्खियों में रात 8 बजे भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे। फिल्म संगीत 8:15 पर। सुगम संगीत शाम 6:45 पर, कलाकार होंगे श्रीधर नागराज। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है।

0: पूरे मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 16वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस अदालत में 37 मंत्रालयों और विभागों से संबंधित 985 लंबित पेंशन शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देशभर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और AI संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व के अपेक्षाओं के साथ आज भारत की ओर देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की ओर थीम पर 21 जून तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। और IPL में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडिया में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6 बजे हैं। अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
0: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए, और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
0: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला।

0: ये भी जानिए में साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
1: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
0: जी,
1: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी, आपसे शुरुआत करते हैं।
0: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं, सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
1: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
0: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
1: जी,
0: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
1: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
0: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
1: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
0: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
1: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
0: जी।
1: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: क्या कहते हैं?
1: थर्मल लैग।
0: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है।
1: जी,
0: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
1: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
0: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
0: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
1: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें, और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिएं। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
0: जी।
1: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
0: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने
1: जी।
0: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो
1: जी।
0: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
1: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है, और धूप का चश्मा जरूर पहने, क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
0: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
1: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, आग बरसाती धूप।
1: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे?
3: हाँ।
4: अच्छा,
3: तो फिर चलते हैं जल्दी।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आओ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो, देखो मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा, भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलूं देखूं। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया, यहीं पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन मोहन, क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं, मैं उठाता हूँ। हाँ ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ चलिए चलिए।
2: आ गया डॉक्टर साहब का घर, इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
1: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
2: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
3: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
2: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
3: ओहो अच्छा, इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई, और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए, ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब।
3: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
3: लाओ अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
2: हाँ जी,
3: ऐसे। लाओ अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
2: जी।
3: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है।
2: जी।
3: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
3: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
1: जी,
3: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक

0: अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
0: भाई, तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
2: डॉक्टर साहब, कैसे बच सकते हैं इससे?
0: भाई, सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
0: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए।
2: जी।
1: और अगर लू लग जाए तो?
2: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
0: भाई, लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए।
1: जी।
0: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
1: मोहन को होश आ गया। डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
0: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
2: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
1: जी।
2: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
1: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
0: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
2: गर्म हवा से रहे हम दूर,
3: ठंडक में खेले भरपूर।
2: ठंडक में खेले भरपूर।
0: आग बरसाती धूप।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
5: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
4: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
6: इन्हें हमारा सलाम।
4: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परम वीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। नमस्कार साथियों।
7: साथियों नमस्कार।
4: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
7: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
4: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
7: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक्का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
4: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
7: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को

0: को भारी पराजय का सामना करना पड़ा
1: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: उनके शौर्य को देखकर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
1: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
0: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहाँ के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था।

0: यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
1: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक एल्बर्ट एक्का के पास।
0: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
1: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
0: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं।
1: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
0: लांस नायक अल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
1: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
0: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
1: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
0: फिर क्या था, लांस नायक अल्बर्ट एक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
1: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। अल्बर्ट एक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक अल्बर्ट एक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
0: लेकिन इस युद्ध में अल्बर्ट एक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
1: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
0: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल

0: नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम।
1: परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
2: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
1: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत कलाकार है रविकांता जैन। आइए सुनते हैं इनके गाए बुंदेली लोकगीत।

रविकांता जैन के स्वर में श्रोताओं अब सुनिए ये करम गीत।

अब सुनिए इनका गाया ये देवी गीत।

अभी आपने रविकांता जैन के स्वर में ये देवी गीत सुना। इसके साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। कलाकार हैं श्रीधर नागराज। श्रोताओं आइए सुनते हैं इनके स्वर में ये गीत।

अब सुनिए इन्हीं की गाई ये गजल।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्रीधर नागराज के गाए गीत। मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है, 7 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं को जिम्मेदार राष्ट्र बताने वाले देशों को इस बात पर विचार करना होगा कि आतंकवादी ढांचे की रक्षा के प्रयासों का समर्थन उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई से 5 देशों की यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात से करेंगे शुरुआत। ऊर्जा सहयोग और व्यापार पर होगी चर्चा। लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त कल होगी जारी। 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में ट्रांसफर होंगे 1,835 करोड़ से ज्यादा रूपए। भोपाल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी समेत कई क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर हुई चर्चा। और कुछ ही देर में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होंगे सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई के बीच संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। यात्रा की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात से होगी। इस यात्रा के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया।
1: पहला पड़ाव प्रधानमंत्री का संयुक्त अरब अमीरात का होगा और इस दौरे के दौरान ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी, जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश जैसे कि नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है कैसे मजबूत किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री के दौरे का एक मुख्य आधार है।
0: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर करेंगे। बैठक में शामिल विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे और वैश्विक व क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव से लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश की 1,25,00,000 से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जाएगी। मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच निवेश और कारोबारी संबंध मजबूत करने के मकसद से आज भोपाल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप और भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो समेत फ्रांस की कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई है और अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। करीब 23 लाख छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। हालांकि इन छात्रों को न नया आवेदन करना होगा और न ही दोबारा फीस भरनी होगी, बल्कि पहले दी गई फीस भी वापस की जाएगी। नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बताया,
2: इसको जांच करने की जिम्मेदारी कि 30 क्वेश्चन थे कि 45 थे कि 50 थे कि 60 थे, यह काम सीबीआई करेगी, पूरी फोरेंसिक्स लेके करेगी और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई होगी। जो शिकायत आई थी उसमें अगर 1 इंच की भी, 1 आयोटा की भी सच्चाई है तो हम उसके ऊपर लेके कार्रवाई किए हैं। अब किस हद तक है, कितना हद तक है, उसको करने में समय लगेगा। हम जितना डिले करेंगे उतना यह समस्या बढ़ेगी। उतना अगर हमको री एग्जाम करना है तो वो निर्णय आज हम ले रहे हैं तो हम जल्दी कर पाएंगे।
0: अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी के खानापारा मैदान में हुए इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की ओर थीम पर 21 जून तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। हर घर योग के इस अभियान का मकसद हर घर तक योग को पहुंचाना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। साइबर अपराधों और बैंकिंग धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत संदिग्ध लोगों का डेटा एआई सिस्टम को दिया जाएगा जो उन बैंक खातों को पकड़ेगा जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम इधर उधर करने के लिए करते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में धार भोजशाला प्रकरण की अंतिम सुनवाई आज पूरी हो गई। करीब दो घंटे की बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की 98 दिनों की सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि वैज्ञानिक रूप से अभी तक यह सिद्ध नहीं हुआ है कि यह स्थल मंदिर है या मस्जिद। वहीं हिंदू पक्ष ने सर्वे और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर भोजशाला को वाग्देवी मंदिर बताते हुए पूर्ण अधिकार की मांग की है। इस साल प्रदेश में गेहूं का उत्पादन 365 लाख मैट्रिक टन तक पहुंच गया है जो देश के कुल उत्पादन का 18% है। भारत से होने वाले कुल गेहूं निर्यात में प्रदेश की हिस्सेदारी 35 से 40% है और शरबती व ड्यूरम गेहूं की मांग अमेरिका, जर्मनी, इटली और दुबई जैसे देशों में बनी हुई है। प्रदेश में इस बार गेहूं खरीदी का लक्ष्य 100 लाख मैट्रिक टन रखा गया है। प्रदेश में सरकारी भवनों की छतों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने के लिए शासकीय संस्थाओं और रेस्को विकासक इकाइयों के बीच विद्युत क्रय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। रेस्को पद्धति के तहत सरकारी विभागों को बिना किसी निवेश के 3.78 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी और पहले दिन से बचत शुरू हो जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर खंडपीठ के न्यायमूर्ति डीडी बंसल आज अपने सरकारी आवास से 3 किलोमीटर साइकिल चलाकर अदालत पहुंचे। उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो सभी को साइकिल चलाकर पेट्रोल डीजल की बचत करनी चाहिए। देवास जिले में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मोरूखेड़ी ग्राम पंचायत में जल संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया गया है। पहाड़ी पर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 350 कंटूर ट्रेंच बनाए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि इससे हर साल करीब

13 लाख लीटर बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सकेगा। एनसीईआरटी और सीबीएसई ने मिलकर कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। गर्मी की छुट्टियों में शिक्षकों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा और स्कूल खुलने के बाद पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कक्षा 9 से 12 तक के लिए भी एआई की पाठ्यपुस्तकें तैयार की जा रही हैं। आईपीएल में अब से कुछ देर बाद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों के 11-11 मैच में 14-14 पॉइंट्स हैं। आज जीतने वाली टीम सीधे पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना, झाबुआ और बैतूल में जिला कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई का आयोजन हुआ। कलेक्टर ने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं से के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। आगरमालवा में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण कार्य में नलखेड़ा ग्रामीण के सर्किल 20 ने तय समय से पहले 100% काम पूरा किया। खंडवा में प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने अधिकारियों को ईंधन बचाने के लिए काफिले में केवल जरूरी वाहन रखने के निर्देश दिए। देवास में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत हरिद्वार ऋषिकेश तीर्थ यात्रा 20 जून को रवाना होगी। जिले को 196 सीटों का कोटा मिला है। श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क में जन्मी मादा चीता के चारों शावक मृत पाए गए। सुबह मॉनिटरिंग टीम को डेन साइट के पास शव मिले। शहडोल में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर, माफ कीजिए, सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनवे बारे सभी किसान भैया बहनों से प्रभा बहन की राम राम। किसान भैया हरो, कछु आज हम कहवे बारे हैं, तना ध्यान से सुनियो कि पेंशन सबको चाहिए, सबको जो अधिकार, और जब पूढ़ो तन होए तो हो जाऊ तो बेकार। सो भैया हम को बेकार नहीं कह रहे हैं, मनो हम पेंशन की बात पे से खबर करा रहे हैं कि जब बूढ़े हो जाते हैं तो अपने पेंशन की जरूरत पड़त है। और किसान भैया बहनों, अटल पेंशन योजना लेवे की सलाह से जो हम बात कर रहे हैं, ये से सुई दई जात है। देखो सबके घरों की अलग अलग कहानी है, अलग अलग किस्सा है। हमारी भग्गो फुआ की अलग कहानी किस्सा है, और हमारे जो कक्का हैं वे उनकी अलग कहानी किस्सा है। मनो सियानपन की मिलती जुलती सबकी एक ऐसी किस्सा हो जाता है। कैसी? कि बेटे बहुएं रख रहे आओ भगत के साथ, देखो परखो हर तरफ पेंशन जिनके हाथ। तो जिनके हाथ में पेंशन रहते हैं उनके घरों की किस्सा कहानी अलग हो जाऊ थे, और जिनके घरों में सियानों के पास दो पैसा नहीं रहे

हैं उनकी किस्सा कहानी अलग हो जाऊत है। तो भैया देखो ये मैं कोई को बुराई मानवी की बात बिल्कुल नहीं है, हम तो तनक ऐसी बात या कर रहे हैं के भारत सरकार की तरफाऊँ से विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के जो कामगार भैया बहने हैं खेती किसानी करत हों चाहे वो और कोई काम मजदूरी करत हों, तो जब उनके लाने अटल पेंशन योजना शुरू करी गई है और जो एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है, एक उद्देश्य जो है कि जब 60 वर्ष की उम्र हो जावे के बाद लोगों है एक निश्चित और गारंटीकृत पेंशन देने लगत है। अब आ जाए की बात किसान भैया रो अपनी भग्गो फुआ झोन्ना सुमटकाउत बाजार मोहल्ला की तरफाऊँ से थकी हारी सी चली आ रही थी। झोन्ना तो इतो भरो तो कि हम कितो बताएं, मनो बिहारी थकी सी भरो भराओ झोन्ना उनने टिपटी पे धार दो और उतई से तनक मना के झकर मकर ये तरपाऊँ वो तरपाऊँ देखो और अपनी बटुआ में से नोटों की गड्डी निकारी और गिनन लगी चुपचाप। अब वे जान नहीं पाई कि हमने उन्हें देख लो, हाँ वे तो मंगन हती अपने रुपया गिनवे में और उंगलियों से हिसाब लगावे में लगी थी कि जवाई के हमने उनकी चश्मा की डंडी ऊपर के कर दई, वे तो हड़बड़ा गई और सबरे रुपया झट से गिने गिनाए सोई और बिना गिने सोई एड़े बेड़े कैसा भाई समेट के जल्दी से वही बटुआ में धर लाए जे में से निकारे थे। सो हमने कही फुआ भाई कया हो गो अकवकाओ ने हमें आए प्रभा बहन। सो उनने मोरो हाथ पकड़ो और मुस्कुरा दई ऊँसाई खे मानो आँखों से तो उन्हें मन नहीं मन हमने देखो उनकी आँखें बड़ी ऐसी गुस्सा से में हती। सो उन्हें गुस्सा आई रही हुए कि कौन आ टपक पर हो मोरे पैसा के नत में। सो हमने पूछ लई कि कहाँ से चली आ रही हूँ भग्गो फुआ। सो कहने लगी बैंक से आ रहे थे और फिर बाजार से सौदा सामान सुई लेने तो सो सौदा तो ठीक आई है लई के नहीं लई तनक सी मानो सौदा को हिसाब में गड़बड़ी सी लगी मुहे। सो मैं सौदा छोड़ के उतई और दूसरों सामान भर लाए आई जो नहीं तो आए मैं पैसा गिन रही थी। सो हमने कही फुआ भाई तुम तो मुत के रुपये लाए हो का कछु अन्न पानी बेच दो का चना पिसी बिक गए का। सो कहन लगी हाँ प्रभा बहन जे तो पैसा मोरे वृद्धा पेंशन योजना के आए साल भरे में एक बेरा निकाल ले उठे बीच बीच पुचर पुचर कौन निकारे और कौन काम में आ जाते खट्टे तो ना तर गिन लेते। सो हमने कही फुआ भाई वृद्धावस्था पेंशन में तो तना कमाई पैसा मिला था मनो उम्दा है ना से तो हाँ सही मानो तुम तो अपने बेटा बहू से अटल पेंशन योजना को लाभ लेवे की बात करो। सो भग्गो फुआ कहने लगी कि हम को बताओ तुम तो हमें खुलवा ले हैं पेंशन जे में हमें को मिलन लगे। सो हमने कही भग्गो फुआ हमें तो हंसी आ गई उनकी पेंशन की बात सुन के। हमने कही फुआ तुम्हारी उम्र तो हो गई 60 साल से ऊपर की, अब जब अटल पेंशन योजना को खातो उनको खुल सका थे जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष लो की होवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 मई 2015 को कलकत्ता में जा योजना को शुभारंभ करो तो और जा योजना 18 से 40 वर्ष के आयु के बीच में रहवे बारे कोई भी भारतीय नागरिक के लाने खुली है जिनके पास अपनो बैंक को खातो होवे और ना तर फिर डाकघर में बचत खातो होवे वे जा योजना को फार्म भर सकते हैं और अपने आप खाता को चलावे को सोई यानी वही मोड पर कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक खाते में से पैसा पेंशन योजना में चलो जावे। और जे कोई इनकम टैक्स जमा न करत होवे यानी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आउत होवे तो बेजा योजना को फायदा ले सकते हैं फुए भाई। तो हमने कही सो वे कहने लगे कि तुम्हारी जानकारी में तो ऐसी है हम तो जानते ही नहीं थे। हम कि मानो फुआ भाई तुम्हें पूरी जानकारी लेनी चाहिए अटल पेंशन योजना की ऐसे कि जे जो कोई नई भाई आए 40 साल लो के और तुमरो आबो जाबो रहे थे गांव बस्ती में सब कहूँ सबाई कोई के बुलावे चलावे में जा उठो तनक बैठबो उठबो रहे थे आबो जाबो तो तुम कोई कोई को समझा सका तुम्हारी बात तो सबाई कोई मानत है तो भाई अपने घरों में जिन लोगों की आमदनी बंधी नौकरी धंधा पानी की बात है जिनके पास मान लो कम पैसा है और जिनकी बंद हो धंधा नहीं है उन्हें आप समझा सकती हो जाए योजना भी महीना में या फिर 3 महीना में या 6 महीना में किस्त बंदी पैसा जमा करके अपनी पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं आप तो सभी बता सकती हो आप खुद ही सियानपन में हो तो आप अपनी बातें बता
सकती हूँ, उन्हें समझा सकती हूँ, है नहीं। और

0: पेंशन की बात ऐसी है फूआ भाई कि 1,000 2,000 3,000 4,000 और 5,000 लो पेंशन पा सका थे ये मैं माने जितो जे ने गोरडारो उतई गुरी रो हो जाते काम। सो 60 वर्ष की उम्र के तोड़ तई बात से यदि जमा करवे बारे की मृत्यु सुई हो जावे तो पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति को पेंशन मिला थे और यदि कजाक दोनों ही न रहे तो उनके नाम निको सोई भाई खट्टी बाकी रकम जितनी रहा थे वह पूरी मिल जाऊ थे। सो सबसे बड़ी बात सरकार की गारंटी योजना है अटल पेंशन योजना, ये में फायदा जरूर एक उठाए वैसे आप बता उतरे हो तो समझ लो के किसान भैया हारे चेत जे हैं जोन जोन के बंधी मजदूरी नहीं आ इकट्ठो पैसा नहीं आउते आए और के आगे उन्हें पेंशन की कोनो व्यवस्था नहीं आ तो बेजा अटल पेंशन योजना से बहुत उमदा फायदा ले सकते हैं। फूआ भाई सो वे कह लगी के हाँ जा तो सही बात है मैं तो अपनी बहू बेटा को कह दें कि भैया ले लो तुम्हारा पेंशन और फायदा उठाओ और अपने बुढ़ापे के उमदा बनाओ। कैसे के देखो कही तो ऐसी गई है जो देखो गीत में गा के बता रहे हैं भवानी प्रसाद भैया।
1: मान ले करो

0: हाँ तो किसान भैया यारो, देखो अपन ने जो मात पिता की सेवा करवे की बात को जो गीत सुनो, और एक हुंकार है हते अपने भवानी प्रसाद अहिरवार भैया, और अब अपन कछु चर्चा सुन ले चौपाल में कैसे के। अब देखो ऐसी गर्मी पड़ रही, तपना पड़ रही है, सो लू से फसलें बचावे के लाने जो जानकारी दे रहे हैं श्री एपी सुमन जी, तो अपन जो चर्चा सुन लइए।
1: किसान बहनों भाइयों, गर्मी का समय है। जिस प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य की और अपने स्वयं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हमारी फसलों की भी रक्षा बहुत जरूरी है। चलिए, लू से हमारी फसलों का बचाव कैसे करें, आज जानते हैं हमारे बीच में उपस्थित श्री एपी सुमन जी से। सुमन जी, हम अपने इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद यादव जी।
1: लू से बचाने के लिए फसलों में क्या-क्या प्रयास किए जाने चाहिए?
2: बहुत से उपाय हैं, जैसे शेल्टर बेल्ट लगाना, खेत में मल्चिंग करना,
1: जी
2: सिंचाई समय पर करना,
1: जी
2: कटाई एवं छटाई समय पर करना,
1: जी
2: ड्रिप इरिगेशन के द्वारा भी हम फसल और पानी दोनों को बचा सकते हैं।
1: जी
2: इसी प्रकार से अभी एक नया यंत्र आया है, रेनगन, जिससे सिंचाई करने पर भी आप अपना चारों तरफ का वातावरण भी अच्छा कर सकते हैं।
1: जी
2: और इसी प्रकार से जैविक खादों का उपयोग करेंगे, जल क्षमता धारण बढ़ जाएगी।
1: जी
2: इसी प्रकार से है कि कुछ किस्में इसके लिए निश्चित होती हैं, जो गर्मी में बोई जाने वाली फसलें हैं, और अच्छा ह्यूमस तैयार करें अपने खेत में, ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद डालें, कंपोस्ट की खाद डालें,
1: जी
2: और दोनों तरफ से, ऊपर से और नीचे से, जमीन में क्रैक्स ना होने दें। साथ में वो जो बड़े पेड़ हैं उनको बचाने के लिए भी नेट हाउस बना करके रखें।
1: जी
2: आप अगर नेट हाउस तैयार करते हैं तो आपको निश्चित ही उससे जो लू लग रही है और लू से जो नुकसान होने वाला है पौधों को, उससे आप बचाया जा सकता है।
1: सुमन जी, ये तो आपने कई तरीके बताए हैं लू से बचने के लिए। क्यों ना हम एक एक करके आपके सारे तरीकों पर विस्तार से चर्चा करें, ताकि किसान भाइयों के इससे सहायता मिले। पहले बात करते हैं, आपने बताया था शेल्टर बेल्ट, तो इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं।
2: जी, जैसे अपन खेत में जो फसल लगाते हैं तो
1: जी
2: उसके पश्चिम तरफ बड़े पेड़ों को जरूर लगाएं। उससे होगा क्या कि जो गर्मियों में गर्म हवा आती है
1: जी
2: उससे फसलों की रक्षा हो सकती है।
1: मतलब सीधे सीधे जो गर्म थपेड़े आते हैं
2: हाँ,
1: खेत में
2: उससे
1: उनका
2: आप बचा
1: बचाव,
2: सकते हैं,
1: सीधे ना आके वो इन पेड़ों से टकरा के
2: टकरा
1: आने से उनकी
2: करके
1: गति कम हो
2: कम
1: जाए।
2: हो जाएगी।
1: अगली बात आपने की थी मल्चिंग की।
2: जी
1: मल्चिंग तो सामान्यतः हमारे किसान भाई करते हैं, पर इसके बारे में और हमें बताएं।
2: जी मल्चिंग एक बहुत अच्छा साधन है। अगर हम अपने सिंचाई को कम से कम करना पड़े और ज़्यादा देर तक हमारा जो खेत है उसमें नमी बनी रहे,
1: जी
2: तो इसके लिए जो हमारा घास फूस कचरा अच्छा जो है पड़ा हुआ है या पत्ते हैं, उससे हम फसल जैसे ही आपकी बाहर निकलती है उससे आप ढक दें तो फसल को नुकसान नहीं होगा और जो नमी है आपकी वह संचित बनी रहेगी,
1: जी
2: और ये ज्यादा देर तक नमी अगर खेत में रहेगी तो सिंचाई का खर्च भी कम होगा।
1: जी सिंचाई का खर्च भी कम होगा, साथ साथ मान लीजिए मल्चिंग के साथ साथ यदि हमारे किसान भाई की सिंचाई करें, तो आपने बताया था सिंचाई से भी लू से बचाव हो सकता है,
2: हाँ
1: तो
2: बिल्कुल
1: ये कैसे
2: बिल्कुल,
1: हो सकता
2: ये
1: है?
2: बिल्कुल है कि जैसे कि आपको सिंचाई मान लो 30 दिन में रहता है करने का,
1: जी
2: अगर आप इसको 15 दिन में कर दें तो निश्चित ही मतलब जो वहाँ का वातावरण है खेत का, वो खेत का वातावरण एक बना रहता है जो कि उस फसल के लिए ऑप्टिमम होता है। इसलिए सिंचाई को जल्दी करना मतलब बिफोर 15 दिन में करना, जो 1 महीने में है वो 15 दिन में करना चाहिए। और इसी प्रकार से हमारी एक फव्वारा सिंचाई है, स्प्रिंकलर सिंचाई, जिससे कम पानी में अधिक क्षेत्र, और जो फव्वारा सिंचाई से है वो पूरा का पूरा इलाका जो आपका जो आजू बाजू का खेत का भी है वहां का भी टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इससे फव्वारा सिंचाई से भी आप मतलब कम पानी में अधिक सिंचाई कर सकते हैं। इससे जो सिंचाई करने का तरीका है वो क्या होता है कि रूट लेवल तक ही पानी पहुंचता है पौधों के लिए, और ज्यादा एवोपरेशन लॉस भी इससे नहीं होता है, और समय समय पर पौधे को पानी मिलता रहता है। इस प्रकार से हम अपने फसलों की लू से बचाव कर सकते हैं।
1: इसमें आपने बताया था कि कटाई छटाई करके भी लू से बचाव हो सकता है, ये कैसे?
2: जी, बड़े पौधे जो होते हैं जैसे आपका नींबू है, बिही है, हाँ। इन बड़े पौधों में अगर आप सही समय पर कटाई छटाई कर दें तो निश्चित है कि उनके जो पत्ते नए निकलते हैं वह लू को सहने की क्षमता उसमें ज़्यादा होती है। अच्छा। और कम पत्ते रहते हैं और ज़्यादा पेड़ रहते हैं तो उससे लू का जो प्रभाव है वह कम हो जाता है।
1: अब ड्रिप इरिगेशन से हम या टपक सिंचाई पद्धति से लू से बचाव कैसे कर सकते हैं?
2: इसका भी बहुत अच्छा उपयोग है। जैसे कि आप टमाटर लगा रहे हैं या बड़े बड़े पौधे लगे हुए आपके पास में, तो उसमें आप उसी जड़ के पास में पानी देना और बूंद बूंद करके पानी देना, तो उससे क्या होगा, कम पानी में आपका बगीचा ज़्यादा देर तक ज़्यादा कवर हो सकता है, जिससे कि पानी की बचत होगी और साथ में पौधे को पानी पहुँचेगा। तो इसमें उसी जगह पे छेद कर दिया जाता है थाला बना करके या उस पौधे की जड़ के पास में, तो उसमें पानी पहुंच जाता है और पानी पहुंच करके उस पौधे को भी लू से बचाता है।
1: रेन गन के बारे में बताएं, रेन गन आपने बताया कि इससे चारों ओर फवारा करने से
2: जी
1: लू से बचाओ।
2: अब गर्मियों में सूर्यमुखी की खेती करने पे स्प्रिंकलर की जो रहती है वो थोड़ी सी हाइट कम होती है,
1: हाँ।
2: हाइट कम होती है तो उसमें ये चलने में दिक्कत होती है। अगर आप रेन गन का उपयोग करेंगे उसमें तो इसकी हाइट थोड़ी बड़ी होती है स्प्रिंकलर से, तो वो पूरे चारों तरफ आपके उस पर पानी फेंकता है और एक बार में ही एक एकड़ कम से कम सिंचाई हो जाती है। यह बहुत अच्छा यंत्र है और किसान भाइयों के लिए यह लेना चाहिए, जो भी सूरजमुखी या बड़ी फसलों की खेती कर रहे हैं उनके लिए यह अनुदान पर अभी उपलब्ध भी है, किसान भाई चाहें तो इसको ले सकते हैं।
1: हम यदि जैविक खादों का उपयोग करें तो उसमें क्या फर्क पड़ता है लू में और लू से बचाव में?
2: जी, जिस प्रकार से मैंने आपको मल्चिंग के बारे में बताया था उसी प्रकार से अगर हम नाडेप द्वारा तैयार किया हुआ खाद या गोबर की खाद या केचुआ की खाद का उपयोग करें तो निश्चित है कि हमारे खेत में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। ह्यूमस एक ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि अपने खेत में पानी को सोखता है और पानी को उसमें रखता है खेत में, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है।
1: अच्छा,
2: वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने से निश्चित है कि सिंचाई का समय बढ़ जाता है और पानी का उपयोग कम उपयोग में भी हम अच्छी फसल ले सकते हैं। ह्यूमस से फसल भी अच्छी होती है और हमारा नमी भी सुरक्षित होती है।
1: अच्छा, ये नमी बने रहने के कारण लू इसमें
2: नहीं लगती है। जी,
1: अब इसमें आपने बताया था कि अगर हम प्रजातियों का चयन कुछ इस प्रकार करें जो कि लू को सहन कर सके,
2: जी
1: ऐसी कौन सी प्रजातियां हैं और किस तरह से इसको कर सकते?
2: इसमें मैंने देखा हमारे यहाँ ये अच्छी टॉलरेंस वैरायटी है जिसमें कि अगर लू भी चल रही है तो उस समय भी वह अपने आप को बचा सकती है। तो गेहूं के लिए सबसे अच्छी वैरायटी उसका हम अभी उपयोग कर रहे हैं और हमारे किसान भाई भी इसमें लगातार मतलब कई सालों से इसका उपयोग कर रहे हैं और उसे अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। जो लोग भी हमारे यहाँ पर एक प्रचलन चला हुआ है जो मटर के बाद में गेहूं की खेती करते हैं,
1: हाँ।
2: उसमें इसके लिए बड़ा सुटेबल पाया गया है और लोग इसी का उपयोग करते हैं, अच्छी फसल आती है और साथ में इससे लू से भी बचाव इसका हो जाता है।
1: नेट हाउस के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं ताकि इससे लाभ मिल सके हमारे किसान भाई।
2: जी, किसान भाइयों को यह है कि जो पौधे बहुत ही सुकुमार होते हैं उनके लिए अगर हम एक नेट आती है मार्केट में नीली टाइप की हरी हरी, वह नेट अपन नेट का एक घर टाइप का बना लेते हैं और वहाँ पर उनकी सुरक्षा मतलब वायुमंडल के टेम्परेचर से निश्चित है कि उसमें 5 से 10 डिग्री

0: धार प्रभाव ना हो और नमी मिट्टी में या भूमि में
1: बनी
0: बनी
1: रहे,
0: रहे, तो इससे लू नहीं लग
1: नहीं लग
0: सकती।
1: सकती है।
0: अंत में आपसे चलते चलते इतना पूछना चाहेंगे कि सिंचाई की बात जो आपने की थी, सिंचाई के दौरान कौन सी सावधानी बरतें जिससे कि उल्टा प्रभाव ना पड़े सिंचाई का?
1: अगर आप शाम के समय इसको सिंचाई करें
0: जी
1: तो निश्चित है कि आपका रात भर जो खेत है वो ठंडा रहेगा, और उसमें क्योंकि जो लू चलती है वो रात में भी इसका असर डालती है।
0: जी
1: पूरा ज्यादा से ज्यादा समय आपके खेत का टेम्परेचर कम रहे, और इससे मतलब आपकी फसल उत्पादन जो होगा वो बहुत अच्छा होगा।
0: मतलब भरी धूप में सिंचाई ना करें,
1: जी
0: सुबह या शाम को ये कर सकते
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: तो आपने ये जानकारी दी है, बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगी हमारे किसान बहन भाइयों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ, तो किसान भैया, लू से फसलों को बचावे के लाने जानकारी दी श्री एपी सुमन जी ने, और इनसे बतखाव करो अपने विपिन यादव भैया ने।
3: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहां एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
2: हाँ, तो किसान भैया, अब एक बीरा और हमारा मन हो रहा हो कि आप औरों को मनोरंजन कराएं, और मनोरंजन सुई ऐसो कि समय के हिसाब से देखत भाई, इतनी गर्मी, इतनी तपना पड़ रही है, तो ये में अपने पानी बूंद बूंद बचावे की कितनी जरूरत है। सो आप और सुनो।

0: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
1: हाँ तो किसान भैया हरो, देखो अब बारी है हमारी अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस 12 मई की। सो हम जाके वो चाहत हैं कि पेड़ लगा के जग महकाएं, पर्यावरण को सोई बचाएं, चारों तरफ हरियाली लाएं, धरती को हम स्वर्ग बनाएं और पेड़ों से हम सब सुख पाएं, भूजल स्तर को सोई बढ़ाएं और आओ प्रकृति को हम बचाएं, हरो भरो हम जीवन पाएं। सो भैया संयुक्त राष्ट्र की तरफाऊँ से हर सालीना 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाओ जाऊ थे। एक मुख्य उद्देश्य पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा को, महत्व को समझने, जागरूकता बढ़ाने और जो भूख को खत्म करवे बारे, गरीबी को कम करवे बारे और जैव विविधता को बढ़ावे के बारे और पर्यावरण की रक्षा करवे बारे, जिन पेड़ पौधे हैं इनको रक्षा करवे के लाने अपन मदद कर सकें। सो हम आई भगव फुआ की बात हम फिर से बता रहे आप औरों के, बात आई अधूरी रह गई थी, अटल पेंशन योजना बताऊँ लगे उन्हें। सो आप औरों से बता दी, मनु बाद में हमने पूछी उनसे कि काय फुआ भाई, इतो भरो झोड़ना काय किलाने लाएंगे हो, क्या है ये, मैं कह रही हूँ कि बाजार में सौदा में हिसाब में गड़बड़ी सी भाई, सो सौदा सामान छोड़ के आ गई, बाद में ला हो तो जो का लाए हो झोड़ना भरोसो है। सो भी चट्ट से बोल पड़ी कि ये मैं तो पेड़ पौधों के लाने, बागवानी के लाने उमदा देसी खतौरा आए लाए हैं, जैविक खतौरा जैसे पौधों की उमदा बढ़वार होते है और कछु दवाई सुई लाए हैं जिनमें कोई कोई कीट ऐसे रहते हैं और कुछ बीमारी ऐसी जो बागा लग पावे पेड़ों में तो वह दूर ही नहीं होती। सो हम तनक ऐसी

दवाई सुई लाए हैं पौधों की सुरक्षा हो सके जे में। सो हमने कहा हिफुआ भाई तुम तो देसी खतौरा की बात कर रही हो जो तो जैव विविधता की सुई सुरक्षा करात है देसी खतौरा और पर्यावरण की सुई सुरक्षा करात है और सस्तो सुई परत अपने किसान भाइयों के लाने। सो कही जाए तो आर्थिक सुरक्षा सुई करात है और किसान भाइयों के दो पैसा की जो बचत होत है और पेड़ पौधे जो अपने अच्छे उमदा हरे आए रहते अच्छे करने वाले रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। सो जा सुई बात है हैं तो आप तो बहुत ही काम की चीज़ लाए हो। सो हम सुई आप औरों से किसान भाइयों से बताओ चाहते हैं कि भैया देखो जब जुन 12 मई को मनावे बारो अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस है नहीं जो ये से मनाओ जाते हैं सन 2022 से जो मनावो शुरू भाव है तो जो ये से मनाओ जाते हैं कि अगर पौधों को स्वास्थ्य उमदा रहे है तो पर्यावरण बनो रहे और पर्यावरण अपन औरों के लाने यानी मानव जीवन के लाने कितो जरूरी है। सभी कोई जाना था कैसे अपने पर्यावरण में हवा भाई हैं और धरती की सुरक्षा भाई जल की सुरक्षा भाई सब ही कछु की अपन देखते हैं जे सब प्रदूषण से रहित रहना चाहिए तब तो अपना पर्यावरण उमदा है सो अपनी स्वास्थ्य उमदा रहे है तो अपन पौधों के स्वास्थ्य के संगे संगे अपने स्वास्थ्य की भी बात कर सकते हैं। और भैया देखो पौधों की सुरक्षा के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करवे के लाने खेती पाती को काम अगर अपन करत हैं तो कछु जाने तो यहाँ से दे कीटनाशकों हैं उड़ रहे हैं बिल्कुल हैं तनक सो हलवो डुलवो नहीं चाहें। अरे दो चार पेड़ अगर मान लो अपने खेत में कछु और दूसरे दीगर चीज़ों के उग आए हैं तो तनक उन्हें हाथ से सुई हटा के दूर कर सकते हैं। मानो बिना ज़रूरत के कीटनाशक नहीं डालने चाहिए और अपन देखत के दुनिया में हर साल पौधों की कीटों और बीमारियों के कारण 40% तक खाद्य फसलें नष्ट हो जाऊत हैं तो ये किलाने अपन ये तो उपाय कर नहीं पा रहे। मान लीजिए मैं अपने जो पेड़ पौधा हैं जो फसलें हैं वे बीमारी से बचें और भैया जीवन के लाने तो इतनी ज़रूरी है जो पौधा कैसे के अपन चाहे पेड़ हुए चाहे पौधा हुए सभी की हरियाली से कह लो के 98% लो ऑक्सीजन अपन इन्हीं से लेते हैं। और भोजन की बात करें तो 80% भोजन से ही अपन अपने पौधे पेड़ ही पौधों से लेते हैं तो पौधों है तो अपन ही बचा नहीं है और इकोसिस्टम से ही यही से चलत है। देखो जो शाकाहारी जो जानवर हैं चाहे अपनी गैया हुए चाहे भैंसिया हुए चाहे अपने बैल हुए ये सब घास खाऊ थे हैं और उनके जो मलमूत्र हैं उनसे अपनी जैविक खाद तैयार होत फिर अपन जैविक खाद लेते हैं सो खेतों में डाल देते कछु जाने कैचुआ खाद सुई डाल देते तो जे का है ये से बढ़त चलो जाते अपनो इकोसिस्टम अपनी धरती उमदा पुलखर बनी रहत सो में उपजाऊपन बढ़ाते है। तो ये जे सब इतनी बातें हैं सो इनके मारे तो हम जाई के हैं कि भैया सब कोई है तो अपनो काम काज उमदा करें खेती पाती को। और अब चलो चलत चलत एक और तनक अपन लोकगीत सुन लें।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र। इस समय रात्रि के 8 बजने वाले हैं। कार्यक्रम में सुर्खियों में हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

0: सोनू सूद और आज हम वैश्विक अनिश्चितता के दौर में राष्ट्रीय हित और आर्थिक पर चर्चा करेंगे और इस अहम विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार सोनू, आपको और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन।
0: शरद जी से पहले कि हम चर्चा शुरू करें, हम एक अंश सुनेंगे प्रधानमंत्री के संबोधन का जिसमें उन्होंने बताया है कि अस्थिर परिस्थितियों के दौर से हम काफी समय से गुजर रहे हैं और अभी ऐसा समय है जब जन भागीदारी के द्वारा एक नागरिक के तौर पर कर्तव्य निभाते हुए छोटे छोटे संकल्प लेकर ही हम इस स्थिति से पार पा सकते हैं। आइए सुनते हैं।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है, पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के लोगों, देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमें भारत के नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी होगी। जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे।
0: क्या कहेंगे आप, अभी जो स्थिति है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने बताया कि काफी समय से एक के बाद एक क्राइसिस आ रहे हैं जिससे भारत ने बहुत मजबूती के साथ हमने उनका सामना किया है, अभी जो स्थिति है, अभी जो पश्चिम एशिया का संकट है, उससे किस तरह के स्पेसिफिक चैलेंजेस उत्पन्न हुए हैं हमारे देश के लिए?
1: देखिये, हम सब जानते हैं कि भारत क्रूड ऑयल के लिए, अगर मैं उदाहरण के तौर पर लूं, तो 87% के करीब भारत का क्रूड ऑयल विदेश से आता है और इन सब का भुगतान पेट्रोडॉलर्स, तो ज्यादातर लोगों ने सुना होगा कि ये इसका क्रूड ऑयल का ज्यादातर जो व्यापार है वो पेट्रोडॉलर्स में किया जाता है। तो पेट्रोडॉलर्स की जब हम बात करते हैं सोनू, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो विदेशी मुद्रा भंडार सीधा सीधा प्रभावित होता है। इस समय जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो $700 बिलियन से नीचे आ चुका है। तो प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य क्या, उसके पीछे का आप अर्थशास्त्र जब लोग समझने की कोशिश करते हैं, और मैं समझता हूँ यही आकाशवाणी प्रसार भारती का दायित्व है जो इस समय पूरा आकाशवाणी निभा रहा है कि लोगों के लिए इसको सरल भाषा में समझाया जाए कि प्रधानमंत्री जी ने अगर ऐसा कहा तो उसके पीछे क्या अर्थशास्त्र था। अब वो जहां पर बोल रहे थे, पहले उन्होंने हैदराबाद से बोला, फिर वडोदरा से भी बोला, तो वो इस वक्तव्य में ये तो है नहीं कि पूरी पीछे वो इकोनॉमिक्स समझाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी की बात को अक्षरशः लेने का उसके पीछे अर्थशास्त्र समझना होगा। वो ये है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिर रहा है और ये जो खाड़ी में, वेस्ट एशिया में, कभी हाँ कभी ना, कभी लगता है कि ट्रूस हो जाएगा, वहां पर शांति वार्ता सफल हो जाएगी, प्रस्ताव स्वीकार हो जाएगा, अगले दिन फिर लगता है कि नहीं होगा। शुक्रवार को ऐसा लगा कि ये मामला अब सुलट जाएगा क्योंकि 14 सूत्री एक प्रस्ताव भेजा गया अमेरिका के पास ईरान द्वारा, और जब पता लगा कि इसको अमेरिका ने ठुकरा दिया तो क्रूड ऑयल की कीमतें जो $100 से नीचे आ गई थी पिछले वीकेंड से पहले जी। वो एक दफे फिर सोमवार जैसी सुबह हुई, फिर वो 105 पहुंच गई, तो ये ऐसा लगने लगा कि जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। और अगर ये चलता रहा तो जिस प्रकार

0: रुपए पर दबाव बन रहा है, जिस प्रकार से विदेशी मुद्रा का हमें भुगतान करना पड़ रहा है, तो उनको लगा कि भाई लोग अगर इसमें अपना योगदान दें, 140-145 करोड़ की जनता है, लोग इसमें अगर अपना योगदान देते हैं
1: जी
0: तो इस समस्या का हम काफी हद तक समाधान पा सकते हैं। और इसके पीछे जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है।
1: आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या क्या ये छोटे छोटे उपाय सुझाए, छोटे छोटे संकल्प लेने के लिए नागरिकों को प्रेरित किया, ताकि जैसे आपने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है हमारा उसको कम से कम व्यय किया जाए।
2: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें, जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरते, तेल की खपत कम करें खाने के तेल, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा।
1: बहुत ही गूढ़ बातें हैं और ये कोई नई बात नहीं है, ये सारी बातें पहले भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं। पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में जो उन्होंने मिशन लाइफ सुझाया था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसमें भी ये सब बातें थी। और वोकल फॉर लोकल जो सरकार का हमेशा से एक मूल मंत्र रहा है, उसके तहत अगर हम देखें तो उन्होंने जो कहा है कि डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस में वेडिंग्स करिए, ये बात भी वो पहले कर चुके हैं, लेकिन अब उन बातों का जो एक कहें कि महत्व था वो बहुत बड़े वे में अभी सामने आ रहा है स्थिति में।
0: जी हाँ, प्रधानमंत्री जी तो देखिए शुरू से ही स्वदेशी के ऊपर जोर दे रहे हैं, आत्मनिर्भरता के ऊपर, स्वदेशी के ऊपर, और छोटी छोटी बातों में कहते हैं। पर इस बार उसमें एक और आयाम सोनू जुड़ा, वो आयाम था विदेशी मुद्रा भंडार का। आप देखें, जैसा मैंने आपको कहा, इन सभी चीजों में जो आपको कॉमन थ्रेड, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो विदेशी मुद्रा भंडार को सेव करना था, जहां जहां हम बचत कर सकते हैं, जो गैर जरूरी चीज है। और अगर मैं सोनू आपकी इजाजत से टॉप तीन आइटम जो हम इंपोर्ट करते हैं, मुझे लगता है आकाशवाणी के श्रोताओं को ये जानकर बहुत बड़ी उनकी जानकारी में इजाफा होगा कि सबसे ऊपर क्रूड ऑयल है, $140 बिलियन का हमने वित्त वर्ष 25-26 में आयात किया, लगभग $140 बिलियन का। दूसरे नंबर का क्या था, आपको हैरानी होगी सुनके, कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स थे। भारत में बहुत बड़ी मात्रा में मोबाइल फोन बन रहे हैं, उनके छोटे छोटे कलपुर्जे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है, लगभग 115 से 120 बिलियन का। ये दूसरे नंबर का आइटम था। और हैरानी की बात है कि तीसरा आइटम सोना था, जो कि $72 बिलियन पिछले साल 25-26 में हमारे यहाँ, इससे पिछले साल 58 था, उससे पिछले साल 45 था, लगातार इसका आयात हमारे यहाँ बढ़ रहा है। तो हमारा इंपोर्ट बिल, जिसको हम कहते हैं आयात का जो पूरा खर्च है
1: जी,
0: उसके बढ़ते हुए क्वांटम को देख के, उसके बढ़ती हुई संख्या को देख के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि ये तो अगर लोग अगर थोड़ा थोड़ा योगदान दें तो तभी ये बचत हो सकती है। क्योंकि ये किस लिए आता है, लोगों के इस्तेमाल के लिए सब चीजें आती है, क्रूड ऑयल आता है, उसको लोग इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आते हैं, चलिए ठीक है वो बी टू बी होता है, कुछ लोग मोबाइल फोन बना के उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। सोना तो ऐसी चीज है जो कि 60-70% सोना जो हम आयात कर रहे हैं, और ये भी मैं बताना चाहूंगा सोनू के 99% सोना भारत का आयात किया जाता है, तो उसमें 60-70% तो ज्वेलरी मेकिंग में यूज होता है, बाकी का निवेश में जाता है। तो ये ऐसी चीज है जिसके बिना लोग गुजारा कर सकते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल के बिना हम गुजारा नहीं कर सकते। हम शायद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हम मंगाते हैं क्योंकि हमारा उस पर निर्यात भी निर्भर है, उससे विदेशी मुद्रा आती भी है, परंतु सोना तो ऐसी चीज है। तभी उन्होंने सोने के लिए अलग से कहा, जो उन्होंने एक साल की बात कही कि एक साल तक लोग सोना ना खरीदे। और मैं देखिए ये कहना चाहूंगा, क्योंकि सोना भारत में भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है, सोना हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारे हमारे सोशल फैब्रिक से जुड़ा हुआ है, तो उसमें आप सोने को रिसाइकल करिए ना। एक अनऑफिशियल एस्टिमेट आया कि भारत में 30,000 टन सोना भारतीय घरों में है, तो जो आपके पास पुराने फैशन के हार पड़े हैं, कंगन पड़े हैं, चेन पड़ी है, अंगूठी पड़ी है, और अगर आप ज्वेलरी पहनना चाहते हैं, शादी ब्याह का मौका है, फंक्शन है, कहीं देना चाहते हैं, तो उस सोने को आप लाइए टेबल पे। एक बड़ी ज्वेलरी कंपनी ने अभी किसी फेमस क्रिकेटर को हायर किया सिर्फ यही कहने के लिए कि आप पुराना सोना अपना लाइए और बनवाइए, क्योंकि नया आप सोना के रेट भी बहुत बढ़ चुके हैं, खरीदना भी महंगा पड़ता है, लोग पीछे शिकायत भी कर रहे थे कि सोना हमारी पहुंच से बाहर हो गया, तो उसको रिसाइकिल किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोना पहनना छोड़ दे। प्रधानमंत्री जी ने ये बिल्कुल, कल कुछ लोगों ने इस बात को थोड़ा सा गलत परसीव किया कि क्या सोना पहनना छोड़ दें, सोने का इस्तेमाल

0: सोना खरीदने को मना किया, उन्होंने सोना पहनने को या सोना रिसाइकल करने को उन्हें मना नहीं किया।
1: बिल्कुल शरद जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। अभी 70 दिनों से अधिक हो गए हैं वेस्ट एशिया क्राइसिस को शुरू हुए और हमने देखा है कि बाकी जो विकासशील देश है और विकसित देश है हर जगह पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है, कहीं 50%, कहीं उससे भी ज्यादा, बहुत अवेलेबिलिटी पर भी असर हुआ है। भारत ने अभी तक जिस तरह से इस इकोनॉमिक क्राइसिस से डील किया है, आप कैसे तुलना करेंगे? और दूसरा प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये देखते हुए कि शायद ये क्राइसिस लंबा चल सकता है, जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, आपको लगता है जो सरकार ने ये अपील की है ये एक इंक्लूसिव अपील है सबको साथ में लेते हुए और बहुत दूरदर्शिता से भरी हुई एक स्टेप है?
0: बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर आप अमेरिका को स्वयं देखें जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा तेल का वहां पर उत्पादन होता है, उनके स्वयं अपने देश में कीमतें डबल हो चुकी है। वहां पर उसको गैस बोला जाता है, हम लोग पेट्रोल डीजल बोलते हैं, वो लोग गैसोलीन बोलते हैं। हम लीटर में नापते हैं, वो लोग उसको गैलन में नापते हैं। भारत सरकार ने, मुझे लगता है भारत की जो अच्छी आर्थिक परिस्थिति पिछले कुछ सालों में रही उस दम पर भारत इसको झेल पाया। परंतु प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि इसका दबाव भारत सरकार पर, भारत के कोष पर पड़ रहा है। हम और आप जाके पेट्रोल और डीजल जब हम भरवाते हैं या हम एक नॉर्मल गैस का सिलेंडर खरीदते हैं, हमें एहसास नहीं होता, हमें लगता है सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसे ही नजर आता है सब कुछ ठीक ठाक है। परंतु इसके पीछे, जैसा मैंने कहा कि इसके पीछे जो अर्थशास्त्र है कि इस पे जो फिस्कल लोड, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, जो हमारे ऊपर राजकोषीय भार पड़ रहा है, वो भार धीरे धीरे धीरे धीरे करके कठिन होता जा रहा है। और एक अनुमान के अनुसार 30,000 करोड़ रुपए प्रति माह सोनू, ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, जो सरकारी क्षेत्र के संस्थान है, इनको लगभग 1,000 करोड़ रुपए पर डे का लॉस हो रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो कब तक ये लॉस झेल पाएंगे? आखिर अगर क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार ऊपर बनी रही तो मुझे लग रहा है कि कभी ना कभी ये कठिन निर्णय लेना पड़ेगा। और इससे पहले कि ये निर्णय लेना पड़े, प्रधानमंत्री जी ने एक घर के बड़े के नाते, देश के नेता होने के नाते, उन्होंने लोगों को एक सुझाव कहिए, अपील कहिए, उसको दरख्वास्त कहिए, रिक्वेस्ट कहिए, जो मर्जी आप कहिए, लोगों को करिए कि अगर बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, हर व्यक्ति योगदान देगा, अगर सरकार कह सकती है सबका साथ सबका विश्वास, तो आई थिंक लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हम भी। और मैं तो ऐसा मानता हूं, सोनू, के युद्ध की जब परिस्थिति होती है ना, तो हर व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से सिपाही बन जाता है। तो मुझे लग रहा है कि हर व्यक्ति, चाहे हम लोग गन उठाए तो नहीं, युद्ध के मोर्चे पर हमारा कोई इसमें रोल नहीं है, ना हमारा देश लड़ रहा है, पर हम इस तरीके से देश में एक आर्थिक युद्ध जो हमारे ऊपर जबरदस्ती ऐसा लगता है थोपा गया है, उससे हमें हर व्यक्ति अपना अपना योगदान एक सिपाही बन के दे सकता है।
1: और इसमें अगर सरकार को एक कदम उठाना पड़ता है जैसे बाकी सब देशों ने उठाया है, अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ती है, वित्तीय जो हमारी स्वास्थ्य है हमारे देश का उसको बरकरार रखने के लिए, तो उसको भी जैसा आपने समझाया एक अर्थशास्त्री के तौर पर उसे गहराई से समझना चाहिए।
0: बिल्कुल, मुझे लगता है, देखिए जो अर्थशास्त्र है, मुझे लगता है उसमें ना कोई राजनीति है, उसमें कुछ नहीं है, वो तो एक सिंपल इकोनॉमिक्स है कि अगर देश के ऊपर भार पड़ रहा है तो लोगों पर भार पड़ रहा है, लोगों पर भार पड़ रहा है तो देश पर लाभ पड़ रहा है, इन लोगों को मिला के ही देश बनता है। तो मुझे लग रहा है अगर कल को ये कठिन निर्णय लेना भी पड़ता है तो लोग अब इसको बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, कुछ आवाजें तो देखिए सोनू हमेशा ही ऐसी होती हैं जिनको कि कोई भी निर्णय पसंद नहीं आता, अच्छा निर्णय भी पसंद नहीं आता, तो ये बड़ा नहीं कि तो मैं बात अलग है।
1: इनफैक्ट आप आवाजों की बात कर रहे हैं शरद जी, तो IMF की प्रमुख ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि उनको ये लगता है कि सरकार को, भारतीय सरकार को अब एक स्टेप लेना चाहिए, नहीं तो वो हमारी फिस्कल हेल्थ के लिए लॉन्ग रन में ठीक हितकारी नहीं होगा।
0: क्योंकि IMF में बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे हैं और जब वो गणना करते हैं, जब वो आकलन करते हैं, तो उनको दिखाई दे, मैंने तो आपको स्वयं ही कहा कि अगर जो थोड़ा भी अर्थशास्त्र को समझता है वो व्यक्ति तो तुरंत कहेगा, बल्कि वो हैरान होगा कि अभी तक भारत सरकार ने कैसे इसको बर्दाश्त कर रखा है। और प्रधानमंत्री जी ने, आपने ध्यान दिया होगा, अगर उनके आप पूरा वक्तव्य जब सुनेंगे हम, तो उन्होंने कहा कि इससे देश पर दबाव पड़ रहा है और उन्होंने कहा कि देश इससे अछूता नहीं है। मुझे लगता है लोगों के लिए ये संकेत काफी है। अब देखिए प्रधानमंत्री जी आके लोगों को डराएंगे तो नहीं कि हम, अब प्रधानमंत्री जी आके आंकड़े देने लगे कि इतने दिन हमारा विदेशी मुद्रा भंडार चलेगा, कल को फिर हमारा आगे क्या होगा, इस प्रकार की वो कभी भी बात नहीं करेंगे। ये तो आपको बेसिक इकोनॉमिक्स समझनी होगी कि जब कोई चीज पीछे से महंगी आ रही है और हमारे यहाँ उसका उत्पादन नहीं होता है, मात्र 13% क्रूड हमारे देश में होता है, 87% हम बाहर से मंगाते हैं और विदेशी मुद्रा भंडार तो ज्यादातर डॉलर में काम होता है, कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं वो खाली डॉलर से नहीं बनते हैं, उसमें जो रिजर्व बैंक के पास सोना है वो भी होता है 880 टन के आसपास, और इसमें IMF की स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होती है, इसको SDR बोला जाता है। तो अगर ये धीरे धीरे इसी प्रकार इरोड होता रहा, ये धीरे धीरे जाता रहा, तो एक समय ऐसा आ सकता है जब हमें, आपको याद होगा 1990-91 में भारत को एक समय ऐसा था जब अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, क्यों? क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा समाप्त हो गई थी। तो उस ओर अगर प्रधानमंत्री जी को लगा कि देश चल पड़ा है, तो इसमें लोगों को अब आगे आना चाहिए और लोगों को इसको स्पोर्टिंगली लेना चाहिए और लोगों को अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा, मैंने तो कहा बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे 5 लीटर तेल कम भरवाने से क्या देश का विदेशी मुद्रा भंडार बच जाएगा? जी हाँ बच जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति अगर ऐसा सोचेगा तो 140 करोड़ की हमारी आबादी तो कमाल करके दिखा सकती है। सोनू,
1: शरद जी, अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय में राष्ट्रीय हित के लिए आर्थिक संयम और हरेक नागरिक का योगदान कितना आवश्यक है, उस पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सुर्खियों में
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए।
4: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 8:15 हुए, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम तकदीर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ में। शब्द रचना वर्मा मलिक की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म है जानी दुश्मन।

नितिन मुकेश और विठल भाई पटेल के स्वर में सुनिए ये गीत। संगीतकार हैं राजेश रोशन और फिल्म का नाम है दरिया दिल।

अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है वक्त की आवाज, गीतकार इंदिवर, संगीतकार बप्पी लहरी।

अब आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा गीत। फिल्म है लाल दुपट्टा मलमल का।

0: हेलो, फोन इन कार्यक्रम विविध भारती जबलपुर।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, नाम बताएं।
1: मेरा नाम लतीफ अहमद रैना, कश्मीर से।
0: लतीफ जी, कश्मीर से बोल रहे हैं?
1: हाँ, कश्मीर से।
0: कश्मीर सुनकर ही हम लोग को थोड़ा सा यहाँ ठंडक लगने लगी।
1: शुक्रिया मैडम।
0: कश्मीर में कहाँ रहते हैं?
1: कश्मीर सोनामर्ग।
0: ओके, अच्छा, इस वक्त आप बताएं हमारे श्रोताओं को कि आप क्या क्या अपने कश्मीर में, जहां आप बैठे हैं वहां से क्या क्या देख पा रहे हैं।
1: यहाँ पे आजकल पर्यटक बहुत सारे आते हैं, आज यहाँ बहुत रश लगा है।
0: आपके
1: हाँ,
0: घर के
1: बहुत।
0: पास क्या क्या है?
1: यहाँ अखरोट के बूटे हैं।
0: ओ
1: हाँ, केसर है यहाँ पे, बहुत सारा यहाँ पे वैरायटी है।
0: और पहाड़ों पर बर्फ
1: बादाम
0: है
1: है,
0: कि नहीं है?
1: खजूर है,
0: अच्छा,
1: खजूर खजूर यहाँ आते हैं बाहर से।
0: बाहर से आते हैं अखरोट और केसर,
1: हाँ,
0: वहीं होते हैं?
1: वहाँ यहाँ ड्राई फ्रूट बनते हैं।
0: ओ अच्छा, आप
1: हाँ
0: खाते हैं ड्राई फ्रूट्स?
1: हाँ खाता हूँ।
0: अच्छा लतीफ भाई, आपके घर में कौन कौन है?
1: मम्मी पापा और मेरे सिस्टर और ब्रदर दो,
0: और आप क्या करते हैं?
1: बस ये खेती बाड़ी करते हैं,
0: तो खेत में क्या लगा है खेती बाड़ी में?
1: बस मक्का और धान।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: मक्का और धान, फिर बेचते कहाँ है मक्का और धान?
1: बस ये आजकल लगाते हैं यहाँ पे धान।
0: गर्मी में लगाते होंगे,
1: हाँ,
0: सर्दियों में तो बर्फ है तो कुछ सवाल ही नहीं।
1: नहीं सही सही बात।
0: लतीफ भाई, कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: आज मुझे सुनाइए गाना, हम तुम्हारे हैं सनम।
0: यही वाला गीत, टाइटल सॉन्ग
1: हाँ, टाइटल सॉन्ग।
0: सुनवाते हैं फिर रात 9:30 से 10 बजे के बीच, सुनिए ठीक है?
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

श्रोताओं, ये था कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, जिसे आपने सुना आपकी अपनी रेडियो दोस्त सावनी राजू के साथ। गीतों के लिए हमें लाइब्रेरी से सहयोग दिया राजेश मरकाम ने, इस कार्यक्रम के तकनीकी सहयोगी शेखर गोल्हानी, कार्यक्रम के संयोजक श्यामलाल टहलानी। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा फोन इन कार्यक्रम फोन करेंगे। सुने आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया सावनी राजू ने। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है।

मीडियम व्यू पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद विलायत खान का सितार पर बजाया राग बिहाग।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे उस्ताद विलायत खान का सितार पर बजाया राग बिहाग। इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब पेश खिदमत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम मन भवन। स्वीकार करें अपने अजीज दिनेश का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओ, हम हाजिर हैं आपके पसंदीदा फिल्मी नगमों के साथ। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों के गाए इस गीत से। शब्दकार हैं शकील बदायूनी, तर्ज बनाई है नौशाद ने। पसंद करने वाले श्रोता हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल कमा खत्री, मोहम्मद अल तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। गौरी नगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या, करिश्मा कामले। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सब्बा शेरे। गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी प्रांजल, अवधेश प्रीति, नवनीत राय। बलिया से ओम प्रकाश, उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय।

0: विपुल
1: मोहम्मद रफी की आवाज में लीजिए, सुनिए फिल्म गोदान का ये नगमा। गीत लिखा है अनजान ने, संगीत से सवारा है पंडित रविशंकर ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सब। यंग रेडियो लिसनर्स जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन, अरुण चौरसिया। बर्गीनगर जबलपुर से रविंद्र गदरे, सुभाष गदरे, दिगंबर गदरे, राजेश गदरे, शिवम शुभांग, सृष्टि गदरे। प्रणाम सिटी खंडवा से शिवांश कुमार खंडाले, सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले, संदीप कुमार खंडाले, माधुरी खंडाले, पिंटू कुमार, जयश्री खंडाले। कुंदानगर खरगोन से ध्रुवास सोनावड़े, सुनीता सोनावड़े, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा और शुभम सोनावड़े।
0: त्रिपुरा के पटुआ सरी थे डोले मनुआ कि यारा में उठ तहिलो। अरे पुरवा के झोंकवा में

0: Ra.
1: आशा भोसले की आवाज़ में सुनिए फिल्म ज्वेल थीप का ये नगमा, बोल शैलेंद्र के हैं, तर्ज बनाई है SD बर्मन ने। सुनना चाहते हैं गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या करिश्मा कामले, कंवर कॉलोनी बड़वास से मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी, मीनू राज श्रीमाली, शिवाजी चौक राजीम, छत्तीसगढ़ से आदित्य कुमार, कृष अंजुलता, पिंडरा से दीपक कुमार, रोशन बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता दिशा और लबी श्रीवास्तव, नर्मदा कॉलोनी मंडला से सिया शरण, ज्योतिषी पुष्पा, ज्योतिषी गोल्डी, लक्की रोली, श्वेता और परु, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साधना शायना शर्मा और निवान शर्मा।

जब जब फूल खिले, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शब्दकार आनंद बख्शी, संगीत से सवारा है कल्याण जी। आनंद जी ने इस गीत के लिए अनुरोध करने वाले हमारे श्रोता हैं।

लता मंगेशकर को सुनिए। फिल्म है वो कौन थी, शब्द रचना राजा मेहदी अली खां की, तर्ज बनाई है मदन मोहन ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर विरक जैतेग विरक मीका विरक गाओ फरासी से राजकुमार डूडी सरजीत सिंह डूडी प्रमोद कुमार डूडी सौरभ डूडी। ग्राम लोहारी जिला खंडवा से राजेश कुमार धंजे राहुल धंजे विशाल कुमार धंजे शीला धंजे गायत्री धंजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य रानी वैद्य महिमा वैद्य नीतू वैद्य। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन प्रभा देवी सेन लक्की विक्की नानू रविंद्र सेन खुशी रौनक सेन। उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर राही श्रीमती सरिता गवाड़कर प्रिंस एकांश गवाड़कर। बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाड़कर श्वेता सुमित गवाड़कर। ध्वनि बदलापुर मुंबई से सिद्धांत लवाड़कर प्रणीता गवाड़कर। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी लीला फतेह चंदानी संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मन और तान्या।

श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में राजा मेहदी अली खां का लिखा गीत। तर्ज बनाई है मदन मोहन ने। अनुरोध आप सबका, जतुका किशनपुर से आलम दिलकश शबाना नाज, रिजवान राही इमरान राजा, आलम शेख शबाना आलम चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैसर मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम नाज प्रवीण, हर्रई जागीर से अब्बास खान, संगदिल अयान जीशान रिहान मिनाज पिंकी रिंकी अनी, छत्तीसगढ़ बेमेतरा से श्रीमती पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भव्या सुषमा सारथी, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामिनी वर्मा, गोरखपुर जबलपुर से प्रेमनाथ मिश्रा, कल्याणी मिश्रा, रिया मिश्रा, शलभ रक्षा वैष्णवी, रुद्रांश मिश्रा, आशीष चौबे, ऋचा चौबे, शानवी चौबे, बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सब्बा शेरे, सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से प्रवीण डोम, सरफुद्दीन डोम, वली डोम, डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा, बेलदार अकरम उल्लाह आसमा, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीत निहारिका और वंश बत्ता।

0: श्रोता, इस गीत को सुनने के लिए मैं खत भेजा था बीर सिंहपुर पाली उमरिया से संतोष कुमार राव, भारती राव बेलाबाई सिंह, विकास सिंह, पन्ना कटकहा से प्रताप सेन, सविता सेन, प्रशांत, नेहा, कृष्णा, पुरानी टोली जशपुर छत्तीसगढ़ से परमानंद, मालती, सोनाली, मयंक, गड़िया मजेस्तु से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष कुंदन, करीना कुमारी, पूजा आरती और सुनीता देवी ने। इसके साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है, 11 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जाँच के लिए

0: शेष सीबीआईटी में विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. NEET UG 2026 exam was conducted by the National Testing Agency, or NTA, on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group, SOG, has so